FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026।

ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब 80 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्चस्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम

0: आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102 व 103.6 MHz मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। आइए प्रातःकालीन के इस पवित्र बेला में ईश्वर की उपासना, भक्ति और प्रार्थना में लीन हो जाएं। भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना के माध्यम से

ये जीवन जब भी मिले प्रभु की दया दृष्टि और चरण मिले, ना भटकूं मैं यहाँ वहाँ प्रभु आपकी शरण मिले।

नाग नथैया बंसी बजैया माधव मदन मुरारी राधा के तुम श्याम सांवरे मीरा के गिरधारी हम तेरी शरण में आए आए कुंज बिहारी।

राम से बड़ा कोई सत्य नहीं और हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं। सबसे अधिक राम के प्यारे सब भक्तों के सुदृढ़ सहारे।

सच्ची श्रद्धा भाव से आराधना की है नाथ, सुख हो या दुख प्रभु देना हर पल साथ।

जिसका कोई नहीं आकार, वही करता सब कुछ साकार। भाव भक्ति से कर लो वंदन, तभी करें वो हमारी याचना को स्वीकार।

आज की अर्चना को सुशोभित करने वाले पुष्प स्वर थे हरिओम शरण अनुराधा पौड़वाल, नितिन मुकेश, अनूप जलोटा और महेंद्र कपूर के। जहां भक्तिमय माहौल मन को प्रसन्न कर देता है, वहां आस्था और भक्ति भाव मन को शांत कर देता है, मन को संतोष पहुंचाता है। इसी के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना को देते हैं विराम।

अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। FM 102.3 MHz MHz मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर आप बने हुए हैं आकाशवाणी गोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान, मुख्य स्वर ए हरिहरण का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्रीराम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्रीराम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण सुन रहे थे। स्वर था ए हरिहरण का, संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। लीजिए चिंतन के अंतर्गत सुनिए दुख की निवृत्ति। वार्ताकार हैं श्री राम गोपाल।
1: दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए आत्म साक्षात्कार आवश्यक है। आत्मा अजर और अमर है, वह अनंत ज्ञान की शक्ति और आनंद का भंडार है। जहाँ ज्ञान है वहीं शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहीं आनंद है। किंतु मनुष्य अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूले हुए रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे दुख प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका कुछ खो गया हो। उस खोई हुई वस्तु और अपने स्वरूप की उसे निरंतर खोज रहती है। वह अनजाने में इधर से उधर एक विषय से दूसरे विषय पर दौड़ता रहता है। क्षणिक आनंद देने वाली सांसारिक वस्तुओं से उसकी तृप्ति होती ही नहीं है, क्योंकि उसका अपना स्वरूप इन विषयों में नहीं है। जब तक उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक उसमें यह अपूर्णता की अनुभूति बनी रहेगी और सच्चे आनंद की खोज जारी रहेगी। ठीक वैसे ही कस्तूरी कुंडल बसे

0: मृग ढूंढे वन माहे। उसकी यह खोज आत्म साक्षात्कार से ही पूर्ण होगी। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता प्राप्त करने के लिए हृदय में मैत्री, करुणा और मुदिता के भाव उत्पन्न किए जाने चाहिए, अथवा निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री है, और किसी के दुख को देखकर दुखी होना करुणा है। किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना और फिर उसे प्रोत्साहित करना मुदिता है। मनुष्य के हृदय में ज्यों ज्यों ये उत्तम भाव जगते हैं, त्यों त्यों उसमें ईर्ष्या और द्वेष की कमी होती जाती है। यदि थोड़ी देर के लिए मनुष्य सच्ची सेवा में लग जाता है तो उसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। किसी भूखे को भोजन कराते समय, किसी जलते हुए या डूबते हुए व्यक्ति को बचाते समय, किसी व्याधि से पीड़ित की शुश्रूषा करते समय कुछ देर के लिए तन्मयता स्थापित हो जाती है। उसमें से मैं और पर का भाव तिरोहित हो जाता है, और मैं और तू के भेदों के परे जो उसका सात्विक शुद्ध स्वरूप है उससे उसका साक्षात्कार हो जाता है। जो व्यक्ति जितने बड़े क्षेत्र के साथ जितनी अधिक तन्मयता प्राप्त कर सकेगा उसे उतना ही अधिक परमानंद की प्राप्ति हो सकेगी। किंतु किसी की सेवा करने में यह भाव नहीं होना चाहिए कि मैं उसका कोई उपकार कर रहा हूँ, बल्कि यह भाव होना चाहिए कि उसकी बड़ी कृपा है जो मेरी सेवा को स्वीकार कर रहा है। सेवा केवल मनुष्य की ही नहीं, जीव मात्र की जा सकती है। क्षुद्र से क्षुद्र कीट पतंग, पशु पक्षी भी हमारी इस सेवा की श्रेणी में सम्मिलित होने चाहिए। भौतिक जीवन की क्षुद्र वासनाओं से बचते हुए, कलाओं की साधना करते हुए और सेवा करते हुए व्यक्ति को जो अनुभूति होती है उससे वह आध्यात्मिक जगत में एकाग्र हो जाता है। प्रकृति के निर्णय से भी शांत रस का उद्दीपन होता है, और व्यक्ति अपने अहम को भूलकर कुछ समय के लिए यदि तन्मय हो जाए तो उसे सौंदर्य के प्रत्यक्ष स्वरूप का आत्म साक्षात्कार हो जाता है, और वह दुख से निवृत्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है।
1: दुख की निवृत्ति चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थे श्री राम गोपाल। संयोजन था हिमांशु नामा का।

समय है कार्यक्रम विवरण का। लीजिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें। स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम आपकी सेहत सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा ग्लूकोमा, काला पानी, निदान और उपचार। विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर सुभाष गुप्ता। प्रातःकालीन सूचनाओं से जुड़ा कार्यक्रम नमस्कार कोटा सुबह 7:00 आप सुनेंगे। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुबह 9:30 पर सुनेंगी। इसके अंतर्गत चर्चा होगी अनुशासन बनाम स्वतंत्रता विषय पर। गर्मियों में कैसे रख रही हैं अपना और परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान, स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित इस विषय पर आप जानकारी सुनिएगा। और जानकारी में गर्मियों में ORS का महत्व विषय पर आप जानेंगे। फिल्म संगीत में पुरानी फिल्मों से सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे। सुबह 9:10 पर फिल्म संगीत होगा। अपराह्न 3:10 पर दिल्ली केंद्र से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी सुनिएगा।

होगा कुविचार और दुर्भावनाओं से बचें विषय पर। हमारा देश में आप जानेंगे बलिराज का किला के बारे में। नॉलेज कॉर्नर में सिक्किम दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के बारे में। साथ ही साप्ताहिक करंट अफेयर्स, रोजगार सूचनाएं और खेल गतिविधियां तो होंगी ही। ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल, जो प्रतिदिन 7 बजे होता है। इसके अंतर्गत चर्चा होगी फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर। आकाशवाणी गांव में के अंतर्गत जामुनिया तहसील लाड़पुरा के किसानों और ग्रामवासियों से बातचीत पर आधारित क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आप सुनेंगे। जानकारी में पीएम ग्रामीण आवास योजना के बारे में आप जानेंगे, साथ ही मौसम की जानकारी और कल के कार्यक्रमों के बारे में भी बताया जाएगा। राजस्थानी लोक संगीत माटी के स्वर 7:30 पर आप सुनेंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा 6:05 पर। चित्रपट संगीत रात्रि 8 बजे, हेलो आकाशवाणी रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे।

और हम आपको एक बार फिर से बता दें, आज प्रातः 8:15 पर आपकी सेहत कार्यक्रम आप सुनेंगे। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा ग्लूकोमा, काला पानी, निदान और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुभाष गुप्ता। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.3.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 kHz पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

एफएम 102.3 दशमलव छः मेगाहर्ट्स, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर। नव उषा काल आया है, आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल सबको भाया है। जहां जानकारियां हो भरपूर, विचार हो खास, नए पुराने गीतों का पिटारा, साथ ही सूचनाओं का चटकारा, हम लेकर उपस्थित हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

सुप्रभात, शुभ दिवस, नमस्कार कोटा, आपका स्वागत, अभिनंदन। आज आपके साथ शशि सोनी की आवाज़। कर दिया है हमने कार्यक्रम नमस्कार कोटा का आगाज़।

तो कार्यक्रम में क्या होगा आज का प्रेरक विचार? सरलता। सरलता का अर्थ है जीवन व्यवहार और विचारों में सहजता, स्पष्टता और निष्कपटता होना। यह दिखावे से मुक्त, ईमानदार और विचारों की सादगी को दर्शाता है, जहां व्यक्ति जो है वैसा ही प्रकट होता है। यह अज्ञानता नहीं बल्कि ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद उनका प्रदर्शन न करने का सहज स्वभाव है। निष्कपटता, जो बिना किसी चाल या कपट के सहज व्यवहार करे। सहजता यानी दिखावे या बनावट से दूर रहना, जो है उसे स्वीकारना। और स्पष्टता यानी उलझनों और जटिलताओं से

मुक्त मन। आंतरिक स्थिति यह बाहरी पहनावे से नहीं बल्कि मन की पवित्रता और विचारों में सीधापन से जुड़ी है। सरलता को निष्कपटता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मानसिक शांति और जीवन का आनंद पाने के लिए आवश्यक है। सरलता का अर्थ है एक सरल चित्त, एक मन जो भटका हुआ नहीं रहता, एक मन जो जैसा है वैसा दिखे। सरलता और सहजता मनुष्य को मानवता के शीर्ष की ओर आगे लेकर जाता है। सरल व्यक्ति हमेशा ही सुलझा हुआ और शांत होता है, जो सभी को महत्व देना जानता है। ये संपूर्ण संसार समझौता है कि हम सभी संसार के मोह में जकड़े हुए हैं। मनुष्य जीवन ही दुखों का सागर है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रकृति जीवन को जन्म देती है, दुखों का सागर हम उसे बनाते हैं। एक जीव जब जन्म लेता है तब उसमें ना काम होता है, ना क्रोध, ना अहंकार, ना लोभ और ना ईर्ष्या। इन शत्रुओं को जगाते हैं हम स्वयं और इन्हीं से घिर जाते हैं। प्रकृति के विपरीत सरल नहीं रहते, अधिक बलवान होने के लिए प्रतिस्पर्धा में जुट जाते हैं, जबकि सुख का प्रथम आधार है सरलता।

0: हवाओं से लिख।
1: संगठन की शक्ति के लिए सिर्फ संगठन पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आवश्यक है संतुलन। परिवार, समाज, राष्ट्र, सभी के लिए संगठन आवश्यक है और यह तभी होगा जब संतुलन होगा। शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज। प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों के बीच मतभेदों को भुलाकर विविधता का सम्मान करते हुए शांति, सहिष्णुता, समावेशन, समझ और एकजुटता के साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। जीवन भर के समुदायों में शांति, सामंजस्य और एकजुटता को बढ़ावा देना ही इसका

उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया। शांति में एक साथ रहने का अर्थ है मतभेदों को स्वीकार करना और दूसरों को सुनना, सुनने, सम्मान करने और सराहना करने की क्षमता रखना। इस दिवस का यही महत्व है, असहिष्णुता, भेदभाव और कट्टरता को कम करने और एक सतत दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को एकजुट करना। यह दिन व्यक्तिगत स्तर पर करुणा और क्षमा को बढ़ावा देने के साथ साथ समुदायों के बीच सुलह को प्रोत्साहित करता है, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देता है, सहिष्णुता और सम्मान को प्रोत्साहित करता है, संवाद, पारस्परिक समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन करता है। विभिन्न देश, संगठन, समुदाय, शैक्षिक कार्यक्रमों, अंतर सांस्कृतिक आयोजनों, सामुदायिक संवादों और संघर्ष समाधान, सामाजिक सामंजस्य के उद्देश्य से की गई पहलों के साथ इस दिन को मनाया जाता है।

जीवन को रोशन करता है ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश जीवन के अंधकार, अज्ञानता, भय, भ्रम को दूर करने और उसे सही राह दिखाता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास करता है बल्कि समाज में सकारात्मकता और खुशी फैलाता है, जिससे जीवन अर्थपूर्ण और रोशन हो जाता है। यह जीवन के कष्टों और अज्ञानता को दूर करता है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य का प्रकाश अंधेरे को मिटाता है। ज्ञान सही और गलत में अंतर करने की समझ विकसित करता है, जिससे सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। सच्चा ज्ञान व्यक्ति के भीतर की चेतना को जागृत करता है, जिससे व्यक्ति शांत और सुखी बनता है। ज्ञान आधारित समाज में प्रगति, नवाचार और जीवन स्तर में सुधार होता है। ज्ञान व्यक्ति को विनम्र और सेवाभावी बनाता है, जिससे न केवल उनका स्वयं का जीवन बल्कि दूसरों का जीवन भी रोशन होता है।

आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी है। प्रतिवर्ष 16 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना है। यह यूनेस्को द्वारा समर्थित एक वैश्विक पहल है, जो 1960 में भौतिक विज्ञानी थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ मनाती है। पहली बार 2018 में इसे आयोजित किया गया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति में प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। और महत्व की बात करें तो यह दिवस चिकित्सा, लेजर सर्जरी, संचार फाइबर ऑप्टिक्स, ऊर्जा, सौर ऊर्जा और सतत विकास में प्रकाश के अनुप्रयोगों का जश्न मनाता है। 1960 में थियोडोर मैमन द्वारा पहले लेजर के सफल संचालन की याद में, जो आधुनिक संचार और चिकित्सा में एक क्रांतिकारी खोज थी, एक सतत भविष्य के लिए प्रकाश विषय पर केंद्रित किया जाता है। प्रकाश केवल देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक 21वीं सदी का केंद्रीय स्रोत है, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह दिवस शिक्षा और तकनीकी प्रगति के माध्यम से शांति और सहयोग को बढ़ावा देने का भी आह्वान करता है।

विशेष बात यह है कि अगले साल से नीट परीक्षा में ओएमआर शीट बंद कर दी जाएगी, इसकी जगह कंप्यूटर बेस्ड कर ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा रद्द होने के बाद पूर्व की फीस लौटाई जाएगी। नीट की नई परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। नई परीक्षा के लिए कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं रहेगी। परीक्षार्थियों से पसंद के शहर पूछकर केंद्र आवंटित होंगे। राज्यों में परीक्षा केंद्र तक परिवहन की व्यवस्था होगी। परीक्षा में ओएमआर शीट भरने में विद्यार्थियों को काफी समय लग जाता है, तो निर्णय लिया गया है कि ओएमआर शीट भरने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट मिलेंगे। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक रहेगा। बात करें मौसम की तो दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन को लेकर मौसम विभाग के नए पूर्वानुमान के अनुसार इस बार मानसून 1 जून की सामान्य तिथि से 5 दिन पहले 26 मई को केरल तट पर पहुंच सकता है। अगले 7 दिन तक राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व अन्य जगहों पर गर्मी के कड़े तेवर रहेंगे। यहां सामान्य लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रह सकती है।

और लीजिए कुछ सूचनाएं आप तक पहुंचा दें। नीट यूजी की 3 मई की परीक्षा रद्द करने के बाद अब सरकार ने नई परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया है। अगली परीक्षा 21 जून को होगी, जिसके लिए 14 जून तक विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र मिल जाएंगे।

और लीजिए बिजली बंद की सूचना हम आपको दे दें, सुबह 8:30 से सुबह 10:30 तक श्रीनाथ नगर वृंदावन विहार बजाज नगर मेपल पार्क और आसपास का क्षेत्र शाम 4:30 से शाम 6:30 तक जसवंत नगर और आसपास के क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा। संकल्प किसी विषय पर दृढ़ निश्चय लेने को कहते हैं। इसमें मन की सारी ऊर्जा एक निश्चित दिशा अर्थात लक्ष्य की दिशा में प्रेषित होने लगती है और सफलता मिलती है। इसके लिए गहरी लगन, उत्सुकता और उल्लास होना चाहिए। जब विफलता हाथ लगती है तो उसका कारण केवल मेहनत की कमी नहीं होती, मेहनत को प्रेरित करने वाला तत्व संकल्प शक्ति है। मन में ठान लिया कि हमें जीतना है तो जीत के लिए जी जान से तैयारी शुरू हो जाती है। यूं तो जीवन को महान बनाने के लिए मनुष्य निरंतर प्रयत्नशील रहता है, परंतु वे लोग सफल हो जाते हैं जिनके पास श्रम को पूर्ण, व्यवस्थित और संचालित करने की संकल्प शक्ति होती है। संकल्प जीवन की सजीवता का बोध कराता है। यह वह शक्ति है जो मनुष्य की जीवन शैली को सुनिश्चित करती है। कर्म क्षेत्र पर मनुष्य अपने बुद्धि विवेक से कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य व्यवहार करता है, परंतु सफलता या विफलता उसके द्वारा किए गए कर्म के प्रति संकल्प का परिणाम होता है। आज के भौतिकवादी युग में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जिनसे उत्तरोत्तर हो रहे मानवीय मूल्यों का के ह्रास का पता चलता है, पर वह भी मनुष्य द्वारा किए गए संकल्पों का ही परिणाम है। संकल्प शक्ति की गति बहुत तीव्र है। विज्ञान के पास इससे बराबरी करने वाली गति का कोई अन्य साधन नहीं है। यह शक्ति अति प्रबल है और इसका व्यक्तित्व भी कुशाग्र बुद्धि, चिंतन, व्यवहारिकता और प्रभा मंडल से निर्मित होता है। ऐसा व्यक्तित्व सरलता से सफल हो जाता है। संकल्प का बीज कर्म का बीज है जो आत्मा के अंदर पूरे जीवन क्रम को समेटे हुए सुसुप्तावस्था में पड़ा रहता है। यह समय अनुसार मनुष्य के जीवन को दिशा प्रदान करता है। प्रयास करने के बाद भी बार बार हार जाना कोई दुख की बात नहीं है, पर संकल्प से हार जाना दुख के साथ समस्याओं को आमंत्रित करता है। सृजन से समृद्धि तक पहुंचने के लिए किसी भी कार्य में संकल्प के साथ उत्साह, विश्वास और पुरुषार्थ का आंतरिक वर्चस्व होना चाहिए, तब इसका परिणाम भी स्थायित्व लिए होता है। मनुष्य का विकास और भविष्य उसके स्वयं के विचारों पर निर्भर है। मनुष्य जैसा सोचता है और जैसा आचरण करता है कालांतर में वह वैसा ही हो जाता है। जैसे विचार होंगे उसी तरह के कर्म करेंगे और उसी तरह की परिस्थितियां बन जाएंगी। कहा जा सकता है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि वह उसका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है। किसी कार्य में प्राण, मन और समग्र शक्ति के साथ जुट जाना ही संकल्प शक्ति है। आपका कोई भी उद्देश्य क्यों ना हो, अपनी संकल्प शक्ति द्वारा पूर्ण हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा शक्ति केंद्र मौजूद है जो उसे उसकी इच्छानुसार उच्च शिखर पर पहुंचा सकता है। मनुष्य

कि समस्त शक्ति एक लक्ष्य की ओर लगती है, तो फिर सफलता प्राप्ति में संदेह नहीं रह जाता। व्यक्ति को अपनी शक्ति को पहचानना आवश्यक है, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। समय आने पर मात्र पश्चाताप ही बचता है। संकल्प शक्ति के लिए आवश्यक है लगन, कर्मण्यता और आत्मविश्वास। जो व्यक्ति किसी की प्रतीक्षा न कर स्वयं पुरुषार्थ में संलग्न होते हैं, वे अपनी संकल्प शक्ति के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते रहते हैं। स्वयं को असमर्थ, अशक्त और असहाय नहीं समझना चाहिए। शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं संकल्प में होता है। संकल्प शक्ति से अल्प स्थानों में भी मनुष्य अधिकतम विकास कर सकता है। सतत परिश्रम और लक्ष्य से ही भाग्य बनता है। इच्छा एक प्रबल शक्ति है। संकल्प की मजबूती धैर्य और साहस से मनुष्य जीतता है। सफलता का मूल मनुष्य की इच्छा शक्ति से में सम्मिलित रहता है। मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी इच्छा शक्ति है। अगर इच्छा नहीं है तो कर्म नहीं है, और इच्छा है तो कर्मों का होना अनिवार्य है। सभी इच्छाएं संकल्प की सीमा का स्पर्श नहीं कर पाती, क्योंकि उनमें पूर्ति का बल नहीं होता। किंतु इच्छाएं बुरे विचार और भावना द्वारा जब परिष्कृत हो जाती है तो संकल्प बन जाती है। अनेक संकल्प विकल्प इस जगत में विद्यमान है, किंतु उनका लाभ तब मिल पाता है जब वह विशेष मनोयोग पूर्वक किसी एक इच्छा की ओर प्रवृत्त होता है। संकल्प के अभाव में शक्ति का कोई महत्व नहीं है, किंतु शक्ति के अभाव में संकल्प भी पूरे नहीं होते। संकल्प के साथ शक्ति का संयुक्त होना एक कला है। लीजिए, आपको सुनवा देते हैं एक और गीत।

सकारात्मकता एक दृष्टिकोण है जो जीवन को बेहतर बनाने और चुनौतियों का सामना करने में सहायता करता है। हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करना और सकारात्मक तरीके से सोचना, खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना, मुश्किल समय में भी धैर्य बनाए रखना और हार न मानना, यही सकारात्मकता है। सकारात्मकता से तनाव और चिंता कम होगी, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर और मजबूत बनेगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, दूसरों के साथ संबंध बेहतर और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सकारात्मकता एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को बेहतर बना सकती है। इसे अपनाने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाला व्यवहार करना चाहिए। तो बने रहिए सकारात्मक। और हम आपको बता दें, कार्यक्रम का संयोजन था तेजराम मीणा का, प्रस्तुति थी राजेश महावर की। अनुमति दीजिए शशि सोनी को। नमस्कार कोटा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा, FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। हंसते मुस्कुराते रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत। आज आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से।

श्री 420 इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। युगल स्वर थे मन्ना डे और लता मंगेशकर के। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आपकी सेहत कार्यक्रम प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा ग्लूकोमा, काला पानी, निदान और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुभाष गुप्ता। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहें तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2941, एसटीडी कोड 0744। समय याद रखिएगा, आज प्रातः 8:15 से 9:00 तक।

0: बात छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था काला पानी। शब्दों से गढ़ा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत एसडी बर्मन का।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में पुरानी फिल्मों से। लीजिए अब सुनिए फिल्म ममता का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत रोशन का।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज प्रातः 8:15 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत में विषय होगा ग्लूकोमा, काला पानी, निदान और उपचार। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर सुभाष गुप्ता। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहें तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2941-142, एसटीडी कोड 0744। तो याद रखिएगा, आज प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। फिल्म संगीत में आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से मुगल ए आजम। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाज है लता मंगेशकर की, शब्दों से गढ़ा है शकील बदियानी ने और संगीत है नौशाद का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फिल्म संगीत में आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से। फिल्म तीन देवियां का गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार और साथियों के स्वर में। मजरूर सुल्तानपुरी के लिखे गीत को एस डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया है।

श्रोताओं, हम आपको बता दें आज प्रातः 8:15 पर आपकी सेहत कार्यक्रम में विषय होगा ग्लूकोमा, काला पानी, निदान और उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुभाष गुप्ता। विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहें तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2941 142, एसटीडी कोड 0744। तो समय याद रखिएगा आज प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। और लीजिए फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। एसएच बिहारी का लिखा ये गीत है, संगीत ओपी नैयर का।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे पुरानी फिल्मों से एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। प्रातः के 8 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ

0: ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में

0: कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग एक साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्रिये फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है, सरकार ने इस दिशा में

0: कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मानसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा। फोन नंबर 9351412449।
4: अब लेसिक लेजर से पाए चश्मे से आजादी, विश्व की सबसे आधुनिकतम अमेरिकन सिग्नेचर फेको मशीन द्वारा बिना इंजेक्शन, बिना टांके और बिना पट्टी बांधे मोतियाबिंद ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण,
3: आंख के पर्दे की सभी बीमारियों की जांच एवं ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध। लेसिक लेजर सर्जरी, फेकिंग लेंस इम्प्लांटेशन, डिजिटल फंडस कैमरा से आंखों के पर्दों की जांच एवं एंजियोग्राफी, जापानी ग्रिल लेजर मशीन से मधुमेह रोगियों के पर्दे की सिकाई,
4: जटिल भेंगापन एवं कालापानी जांच और ऑपरेशन सुविधा।
3: सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा।
2: आप सुन रहे हैं आपकी सेहत कार्यक्रम। हमारी आंखें दुनिया को देखने का माध्यम है, इनकी देखभाल और सुरक्षा करना हमारे लिए आवश्यक है। ग्लूकोमा, जिसे काला मोतिया भी कहा जाता है, आंखों की गंभीर बीमारी है और समय पर इलाज मिलना आवश्यक है। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज का हमारा विषय है ग्लूकोमा, काला पानी, निदान और उपचार। इस विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुभाष गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ सुवीआई हॉस्पिटल से। नमस्कार डॉक्टर साहब।
5: नमस्कार सभी श्रोताओं को, सुप्रभात एवं नमस्कार।
2: कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है सर जी। और जैसा कि हमारा आज का विषय है ग्लूकोमा, तो श्रोताओं, इस विषय से संबंधित जो भी जानकारी आप हमसे चाहते हैं, डॉक्टर साहब से चाहते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2941142, एसटीडी कोड 0744। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि ग्लूकोमा क्या है।
5: बिल्कुल, ग्लूकोमा एक आंख की एक बीमारी है जिसको साधारण भाषा में काला पानी भी बोलते हैं
2: जी।
5: इसमें जो आंख की जो दृष्टि तंत्रिका होती है, जो आंखों की देखने की नस होती है, उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं
2: जी।
5: जब धीरे धीरे कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो धुंधला जो विजन है, जो नजर है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो अंधापन तक भी इसमें नजर कम हो सकती है। ये ज्यादातर आंख का जो प्रेशर होता है, जिसको इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं, उसके बढ़ने से ये ज्यादातर होता है बीमारी काला पानी। तो इसीलिए इसका जो भी है, अगर इसको समय पर इलाज नहीं किया गया तो काफी नुकसान हो सकता है आईज में। तो इसको, इसके लिए ये जरूरी है कि नियमित जांच कराई जाए आंखों की
2: जी। तो ग्लूकोमा क्यों होता है, क्या कारण है इसके?
5: ग्लूकोमा एक

0: अभी आपको अपन एक फुटबॉल से कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल को अपना आकार बनाए रखने के लिए उसमें एक हवा या प्रेशर की जरूरत होती है अंदर, इसी तरह से आंख को भी अपना आकार, आंख भी एक गोलाकार होती है गेंद की तरह, तो उसको अपना आकार बनाए रखने के लिए एक विशिष्ट दबाव की जरूरत होती है जिसको हम इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं। अब ये प्रेशर आंख में निर्मित होता है एक तरल पदार्थ से जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये एक्वस ह्यूमर निरंतर आंख में बनता भी रहता है और एक जाली नुमा जो उत्तक होता है उससे ये निकलता निकास होता रहता है इसका, तो प्रेशर जो है आइस का मेंटेन रहता है इस वजह से। अगर इस जो एक्वस ह्यूमर है इसके भाव में कहीं भी, इसके संचालन में कहीं भी अगर रुकावट आती है या इसका, तो ये आंख का प्रेशर बढ़ जाता है और इसी को हम काला पानी बोलते हैं, इसी वजह से काला पानी होता है
1: जी। तो ग्लूकोमा के प्रकार भी होते हैं, कितने प्रकार होते हैं?
0: मुख्यतः ग्लूकोमा दो प्रकार का होता है और ये एक तो होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा और दूसरा होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें जो जहां से ये निकास होता है इसका एक्वस ह्यूमर जो तरल पदार्थ होता है आंख के अंदर, वो जो उसको उस जगह को बोलते हैं एंगल, और उसके अंदर ट्रबिकुलर मेशवर्क होता है, वो छल्ली नुमा ये जो उत्तक होता है जहां से इसका निकास होता है, तो इसमें जो एंगल होता है वो चौड़ा मतलब ओपन होता है, इसलिए इसको हम ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। इस ओपन एंगल ग्लूकोमा में जो होता है बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और नजर धीरे धीरे कम होती जाती है और इसमें मरीज को पता ही नहीं लगता है कि उसको काला पानी भी है। जब बहुत ही एंड स्टेज पे या काफी आगे तक काला पानी पहुंच जाता है, जो दृष्टि तंत्रिका है उसमें नष्ट कोशिकाएं नष्ट होती जाती हैं, तब जाके मरीज को पता लगता है और तब जो दृष्टि क्षेत्र होता है अपना नजर का जो दायरा होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा इसका जांच, काले पानी की जांच साल में एक बार तो अवश्य 40 साल के बाद कराते रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया दूसरा प्रकार होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इस प्रकार के ग्लूकोमा में जो आंख का जो एंगल होता है वो संकीर्ण होता है, मतलब सकरा हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर का है वो निकास बिल्कुल कई बार बंद हो जाता है। इससे क्या होता है कि जब निकास पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है आंख का, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है एकदम से। अगर एकदम से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा आंख का तो उसमें आंख लाल होना, आंख में बहुत तेज दर्द होना, आंख के चार ये बल्ब के चारों ओर रंगीन घेरे दिखाई देना, सरदर्द होना, आपको कभी कभी उल्टी या फिर जी मचलाना, इस तरह की प्रॉब्लम ही हो सकती है। इसका इलाज, ये एक तरह की इमरजेंसी होती है आईज में और इसका तुरंत उपचार बहुत जरूरी है
1: जी।
0: ये दोनों मुख्य प्रकार के ग्लूकोमा दो तौर के होते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। एक अलग प्रकार का ग्लूकोमा और है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा। ये उन केसेस में होता है जैसे कभी किसी की सर्जरी हुई आंख की, उसके बाद ग्लूकोमा होता है ना, उसको सेकेंडरी ग्लूकोमा बोलते हैं, या फिर कुछ चोट लगी है आंख में, चोट की वजह से भी कई बार ग्लूकोमा हो जाता है आंख में, तो वो ये सब सेकेंडरी ग्लूकोमा के अंदर आते हैं। और एक अन्य प्रकार का ग्लूकोमा और होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा। ये स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा जो होता है ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें जो मरीज क्या होता है, कई बार एलर्जी जैसे आइस की एलर्जी होती है और स्किन की एलर्जी भी होती है, उसके अंदर आइस की एलर्जी में दो ड्रॉप डालने की दी जाती है, इनको हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये स्टेरॉइड अगर मरीज ज्यादा बिना परामर्श के डालता रहेगा आंख में और तो इससे भी कई बार ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमेशा हम यही कहते हैं कि बिना चिकित्सक की सलाह से कोई दवा आंख में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उन दवा कुछ दवा ऐसी भी होती हैं जिससे काला पानी आंख में आ सकता है और वो पता भी नहीं पड़ेगा मरीज को कि उसको काला पानी हो गया है, और जब पता पड़ेगा तब काफी नुकसान हो चुका होता है। तो ये एक स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा बोलते हैं इसको, जो स्टेरॉइड नामक दवाई से होता है उनको हम स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा बोलते हैं। तो ये सब जो प्रकार है ये इस तरह के चार पांच ग्लूकोमा होते हैं।
1: श्रोताओं, आपकी सेहत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आज का हमारा विषय है ग्लूकोमा, काला पानी, निदान और उपचार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुभाष गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ। विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 2941142, एसटीडी कोड 0744 जी। तो प्रकार जानने के बाद हम जानना चाहेंगे कि जो ग्लूकोमा है ये किसको हो सकता है?
0: ग्लूकोमा हर उम्र के लोगों को हो सकता है। एक ग्लूकोमा जन्मजात ग्लूकोमा ही होता है, मतलब पैदा होते ही बच्चे ग्लूकोमा के साथ ही होता है, वो भी एक जन्मजात ग्लूकोमा होता है। जन्मजात से लेकर छोटे बच्चों में, वयस्क टॉडलर्स में और जो यंग एज होते हैं उनके अंदर और सभी एज में ये पाया जाता है। पर ज्यादातर ये जो है ग्लूकोमा 40 साल के ऊपर के लोगों में पाया जाता है 90% केसेस में। 10% केसेस में ये जल्दी जन्मजात या यंग लोगों में भी हो सकता है ग्लूकोमा। और अगर आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक है तो आपको खतरा बढ़ जाता है ग्लूकोमा का। दूसरी बात, अगर आपके परिवार में किसी को ग्लूकोमा है तो आपका आपको ग्लूकोमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़

अभी तक संभव नहीं है इस बीमारी को। इसका आप बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं तुलना ब्लड प्रेशर, जैसे ब्लड प्रेशर किसी मरीज को ब्लड प्रेशर है तो उसको जिंदगी भर के लिए दवाइयां लेनी पड़ती है तभी उसका रक्तचाप नियंत्रित रहता है, इसी तरह से अगर हम आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको लाइफ टाइम के लिए दवाइयां डालनी पड़ती हैं 90% केसेस में ताकि उसका प्रेशर कंट्रोल रहे। अगर आपने प्रेशर कंट्रोल होने के बाद में दवाई बंद कर दी तो प्रेशर वापस बढ़ जाएगा और वो नुकसान होना वापस शुरू हो जाएगा, इसीलिए

0: प्रेशर कंट्रोल रहे। अगर आपने प्रेशर कंट्रोल होने के बाद में दवाई बंद कर दी तो प्रेशर वापस बढ़ जाएगा और वो नुकसान होना वापस शुरू हो जाएगा। इसीलिए काले पानी में ये भी बहुत जरूरी है कि हम उपचार सही से लेते रहें, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से जैसा उन्होंने बोला है उसी हिसाब से दवाइयाँ डालते रहें आँख में और नियमित जाँच भी कराते रहें आँखों की। ये बहुत जरूरी है इसके अंदर, ग्लूकोमा के अंदर।
1: जी बहुत धन्यवाद आपने फोन किया जी डॉक्टर साहब।
0: हम ग्लूकोमा के निदान के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम इसका प्रेशर ही चेक करते हैं आईज का कि भी कितना प्रेशर है आईज का, और उसके बाद में प्रेशर जांच करने के बाद फंडोस्कोपी, ऑप्टिक डिस्क में कितना नुकसान हो चुका है। जैसे मैंने बताया इसके अंदर ऑप्टिक डिस्क में जो कोशिकाएं वो नष्ट होती जाती हैं तो हम क्लिनिकली उसको देखते हैं ऑप्टिक डिस्क को कि क्या कितना नुकसान उसके अंदर हो रखा है। और दूसरा इसके अंदर विशेष बात होती है कि ऑप्टिक अपना जो नजर का दायरा होता है अपने जो सामने जो अपने को क्षेत्र दृष्टि क्षेत्र जो होता है इसको भी मापना जरूरी होता है क्योंकि ग्लूकोमा के अंदर जो दृष्टि हीनता आती है वो नजर का दायरा धीरे धीरे संकीर्ण होता जाता है, सिकुड़ता जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको बिल्कुल बीच का एक पाइप से जैसे देख रहे हो उतना ही दिख पाता है, वो एडवांस स्टेज ग्लूकोमा के अंदर। तो वो दृष्टि क्षेत्र नापना बहुत इसमें जरूरी होता है।
1: अब हम बात करें ग्लूकोमा के इलाज की, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो,
2: मैं आरपी शर्मा किशन कोटा से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका।
2: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार।
1: पूछिए अपना सवाल।
2: मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि ग्लूकोमा में जो प्रेशर बढ़ने का बताते हैं 20 तक प्रेशर नॉर्मल बोलते हैं और 20 से ज्यादा होता है तो ग्लूकोमा की शिकायत आ जाती है।
0: बिल्कुल,
2: तो ये बढ़ने का ही कहा गया है, ये प्रेशर घटता भी होगा तो घटने भी कोई लिमिट है क्या? नंबर एक सवाल है। और दूसरा ये है कि हम मतलब ग्लूकोमा नॉर्मली आंखों के लिए हम करते हैं पर ग्लूकोमा के लिए क्या विशेष सावधानी रखे हैं? मतलब हमारी दिनचर्या ये सब आपके इसमें आएगा ताकि हमें यह मालूम हो सके कि भाई हम नियमित जांच के अलावा भी कुछ आंख के लिए करें ताकि ये जो काला पानी जो एक नाम से ही डर लगता है
0: बिल्कुल,
2: निजात मिल सके।
1: जी
0: जी महोदय, सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा कि काला पानी
1: जी क्या प्रश्न था आपका पहला,
0: एक बार दोबारा बोले पहला वाला।
2: पहला प्रश्न था कि हम आँख का प्रेशर बढ़ने पर ही काला पानी का शिकायत बोलते हैं तो ये प्रेशर जो मेंटेन होता है ये फीड ब्लीड मतलब बनता और बनता उससे प्रेशर मेंटेन होता है आँख के अंदर।
0: हाँ बिल्कुल,
2: ये बढ़ने की तरफ भी होता है क्या? क्या कभी ऐसा भी चांस आता
1: है? जी सुनिए आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब।
0: जैसा आपने बताया कि वो 20-21 जो प्रेशर है उससे ज्यादा ग्लूकोमा होता है, पर ये एक्चुअली ये सही नहीं है। ये हर व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग रेंज हो सकती है। किसी के लिए 24 प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है, किसी के लिए 18 प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है, पर एक जो एक तरह की एक लिमिट जो है वो आप सही कह रहे हैं, वो 20-21 है। 20-21 से अगर ज़्यादा है तो उसको काला पानी बोलते हैं। अब आपने बोला कि अगर ये लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट आप ये समझ सकते हैं कि 10 से नीचे नहीं जाना चाहिए प्रेशर, तो क्योंकि उसको शेप मेंटेन करने के लिए जरूरी। जैसे मैंने बताया था अपने इस कार्यक्रम में पहले कि आइस को अपना शेप मेंटेन करने के लिए एक विशिष्ट दबाव की आवश्यकता होती है, तो वो दबाव बना रहना जरूरी है। तो आप एक मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 10 से नीचे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है।
1: क्या लो भी होता है?
0: हाँ, लो हो जाता है कई बार
1: जी।
2: तो ऐसे केसेस भी आपके मतलब क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में आए हैं?
0: बिल्कुल आते हैं सर ऐसा केसेस, पर बहुत कम, बहुत रेयर।
2: ये थोड़ा मन में सवाल हुआ कि भाई लो की
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल बात नहीं होती, तो मैंने कहा आपके माध्यम से मैं करूँ और श्रोताओं को मालूम पड़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मैं भी चिंता की बात है
1: जी। बहुत धन्यवाद।
0: दूसरा सवाल आपका था कि क्या क्या करना चाहिए इसके लिए, बचने के लिए इससे, है ना? तो सबसे पहली बात तो इससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, सबसे आवश्यक जो बात है वो है कि आपको नेत्र जांच जो हमेशा हर साल में एक बार तो जरूर करानी है। नेत्र सामान्य जांच के साथ साथ इंट्राऑक्युलर प्रेशर भी आपको चेक कराते रहना चाहिए। अगर आप कहीं भी नेत्र जांच करा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपका इंट्राऑक्युलर प्रेशर, जिसको आंख का प्रेशर हम कह रहे हैं, वो उसकी भी जांच हो
1: जी।
0: अगर ये जरा सा भी बढ़ा हुआ आता है या बॉर्डर लाइन पे आता है, जैसे आपने बताया कि अभी 20-21 तो बॉर्डर लाइन पे भी आता है, तो उसको आगे की जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है इस केसेस में। या फिर फंडस में जैसे दृष्टि तंत्रिका अगर डॉक्टर देखता है उसके अंदर कोई उनको लगता है कि कुछ है दिक्कत, तो तब भी आंखों की ये काले पानी की दूसरी जांचें करना आवश्यक हो जाता है
1: जी।
0: और दूसरी बात आपने बोला कि और क्या क्या करना चाहिए इसमें, ये है कि आपको मदिरा और

0: धूम्रपान से दूर रहें, नियमित व्यायाम करें इसमें, जैसे योगा और या फिर नियमित वॉक करते हैं वो आप जरूर करें, नियमित व्यायाम। दूसरा, आप खाने पीने का भी ध्यान रखें, फास्ट फूड अवॉइड करें, और दूसरा हरी सब्जियां और फल का उपयोग ज्यादा करें खाने में।
1: और अब समय है कार्यक्रम में एक अंतराल का।
2: नजर धुंधली हो या नंबर हाई, चश्मा हटाना हो या मोतियाबिंद, सुवी आई हॉस्पिटल पर आपको मिलेगा आंखों की समस्या का हर इलाज।
3: अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आए ट्रेन डॉक्टर्स आप कोटा में, एडवांस मशीन्स के साथ आंखों की हर समस्या की जांच और उपचार, लेसिक लेजर से पाए चश्मे से आजादी और फेकिक लेंस प्रत्यारोपण से मोटे चश्मे से छुटकारा,
2: विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा कैटरिक सर्जरी, रेटिना केयर और कॉर्निया उपचार,
3: सुवी आई हॉस्पिटल एवं लेसिक लेजर सेंटर, तलवंडी कोटा।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर, तलवंडी कोटा।
3: फोन नंबर 9351412449।
1: कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। आज का हमारा विषय है ग्लूकोमा, काला पानी, निदान और उपचार। विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुभाष गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ। श्रोताओं, इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2941142, एसटीडी कोड 0744। तो डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे ग्लूकोमा के इलाज के बारे में।
0: हाँ, जैसा कि हमने अभी देखा कि ग्लूकोमा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक ओपन एंगल और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, इसका जो इलाज होता है, इसको प्रेशर को नियंत्रित करना होगा सबसे पहले
1: जी।
0: तो आंखों को जो प्रेशर नियंत्रित करने के लिए कुछ दवाएं हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर एक दवा से अगर नहीं होता है तो हम उसमें दूसरी दवा, तीसरी दवा या कभी कभी चौथी दवा भी ऐड करते हैं। अगर मरीज इन दवाओं का नियमित रूप से डालता है आंखों में, तो उसका प्रेशर कंट्रोल रहेगा और वो जो काला पानी है वो आगे नहीं बढ़ेगा
1: जी।
0: कभी कभी जब दवाएं काम नहीं कर पा रही होती हैं तो इसमें लेजर भी किया जाता है, जैसे कि जो ट्रेबिकुलर मैश्योर, जैसे मैंने बताया, वो छल्ली नुमा जहां से जाते हैं वहां पे एक लेजर कराया जाता है, वो लेजर ट्रेबिकुलर प्लास्टी बोलते हैं, या फिर कभी कभी गोनियोटोमी करते हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर एक झिल्ली बन जाती है मैश्योर के ऊपर, तो उसको काटने के लिए गोनियोटोमी का भी करते हैं। ये एक लेजर से इलाज हो गया, एक गोनियोटोमी हो गया। अगर इनसे भी काला पानी अगर नहीं नियंत्रित हो पा रहा होता है तो एक इसमें सर्जरी की जाती है आपके अंदर, जिसको हम ट्रेबिकुलेक्टोमी बोलते हैं। इस सर्जरी में एक नया चैनल या एक नया रास्ता बना दिया जाता है आंखों का, तो जो एक्वस ह्यूमर है जिसकी वजह से ये प्रेशर बढ़ता है, तो उसको एक्वस ह्यूमर का जो निकास है उस चैनल के द्वारा होता रहता है और वो जो आंख का जो प्रेशर है वो नियंत्रित हो जाता है
1: जी।
0: पर कई बार ऐसा होता है कि अगर हम ऑपरेशन कर भी देते हैं तो भी उसके बाद भी दवा तो पेशेंट को डालनी पड़ सकती है। ऑपरेशन ये नहीं है कि इसका आपका क्योर हो गया ग्लूकोमा, ऑपरेशन के बाद भी काला पानी रह सकता है और पेशेंट को दवाइयां डालनी पड़ सकती हैं, तो ऑपरेशन के बाद भी नियमित जांच और नियमित उपचार आवश्यक रहता है इसके अंदर
1: जी।
0: दूसरा जो होता है अपना क्लोज एंगल ग्लूकोमा, उस केस में जब प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है आंख का और आंख में, तो हम एक लेजर करते हैं उसके अंदर, जिसको बोलते हैं लेजर पेरिफेरल एनाटोमी। इसमें एक आयरिस में एक छोटा सा छेद बना दिया जाता है, तो एक वैकल्पिक उसका एक निकास का एक रास्ता बन जाता है, जिससे कि प्रेशर नियंत्रित होता है। एक बार जब प्रेशर नियंत्रित होता है तो उसको दवाइयों से आगे नियंत्रित रखा जाता है उसके अंदर। इसके अंदर भी अगर प्रेशर दवाइयों से नियंत्रित नहीं हो पाता है, सेम इसके अंदर भी वो इलाज, जैसा कि मैंने ओपन एंगल ग्लूकोमा में बताया कि लेजर का और वो ऑपरेशन इसका एंड से भी किया जा सकता है
1: जी। अब हम बात करें आंखों की देखभाल की, कि किस तरह से हमें आंखों की देखभाल करनी चाहिए।
0: आंखों की देखभाल के लिए आपको अपना नियमित जांच, अपना विजन जरूर कराते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर आपको चश्मा है तो चश्मे की जांच आप साल में कम से कम एक बार तो अवश्य कराइए। दूसरा, नियमित व्यायाम करिए, वो आंखों के लिए बहुत जरूरी है। खान पान में आपको हरी सब्जियां और जो फल होते हैं उनका सेवन अधिक मात्रा में करें
1: जी।
0: फास्ट फूड को हो सके जितना अवॉइड कीजिए। दूसरा, नियमित व्यायाम तो हो ही गया। दूसरा, साल में एक बार, अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो साल में एक बार कुशल नेत्र चिकित्सक को दिखाकर, अपने जो भी नजदीक में है आपके, वहां पे आप अपनी आंखों का पूरी जांच कराइए। सामान्य जांच जो होती है विजन वगैरह, उसके अलावा आपको आंखों का जो प्रेशर है और आंखों का जो फंडस होता है उसकी जांच कराना भी जरूरी होता है 40 साल के बाद में। और जिसको डायबिटीज है उन लोगों को, या फिर उच्च रक्तचाप है, या जिनको मायोपिया है, जिनको चश्मे का

0: नंबर है, उनको तो ये जांच कराना बहुत आवश्यक हो जाता है।
1: जी हेलो हेलो, हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी तो हम हमारी बात जारी रखेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि बच्चों में भी हो सकता है, युवाओं में भी हो सकता है और एक उम्र के बाद तो होता ही है, तो ये जो बच्चों में या युवाओं में होता है इनका जो इलाज है, क्या ये एक जैसा इलाज है या?
0: बिल्कुल, जो जन्मजात ग्लूकोमा होता है जिसको हम कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा बोलते हैं
1: जी।
0: उस केस में ज्यादातर हम सर्जरी ही करना पड़ता है उसके अंदर। जैसे ही बच्चे को डायग्नोसिस होता है, उसको बुफथेलमस बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, बुफथेलमस जन्मजात ग्लूकोमा, कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा जो होता है, इसके अंदर बच्चे के जन्म से ही उसका प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, उसको जन्म से ही काला पानी होता है।
1: हेलो,
2: गुड मॉर्निंग मैडम।
1: हाँ जी गुड मॉर्निंग
2: डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सर।
2: डॉक्टर साहब एक एडवाइस लेनी थी आपसे कि अगर एक ग्लूकोमा का पेशेंट है जिसका 100% विजन लॉस हो चुका है।
0: कितना सर, कितना परसेंट?
2: 100%
0: 100%
2: दोनों
0: जी।
2: और एज करीबन 60+ है।
0: हाँ हाँ।
2: अब अगर उसको ऑपरेट करवाया जाए तो क्या कुछ लाभ होगा या?
0: सर 100% होने के बाद में पॉसिबल नहीं है। अगर जरा सा भी विजन बाकी है, जैसे कुछ कुछ सामने से लाइट दिख रही है या फिर उंगलियां गिन सकती हैं नेत्र आँख के पास में, तो उस केस में आप ऑपरेशन करवा सकते हैं इसका। पर नज़र बढ़ने की संभावना इसमें नहीं होती है। एक बार जो काला पानी में जो नुकसान हो जाता है उसको हम वापस नहीं ला सकते, पर आगे होने वाले नुकसान को हम रोक सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो काला पानी है इसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इसीलिए इस बीमारी को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, साइलेंट किलर, क्योंकि ये आपको पता भी नहीं लगता है और आपकी दृष्टि धीरे धीरे खत्म होती जाती है, और जब पता लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है कई बार, तो इसीलिए ये इसका साइलेंट किलर बोला जाता है इस बीमारी को।
2: इसमें अगर डॉक्टर साहब ये डिटेल चेकअप करा के एक बार ऑपरेशन का ऑप्शन लिया जाए तो कहाँ जाकर करवाया जा सकता है?
0: कहीं भी आप जो भी नेत्र चिकित्सक कुशल नेत्र चिकित्सक के आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके नेत्र चिकित्सक के द्वारा आप अपना पहले निदान कराइए। ग्लूकोमा अगर है तो उसका पूरा डायग्नोसिस और चेकअप होने के बाद में अगर ऑपरेशन की जरूरत होगी तो ही ऑपरेशन के करते हैं। अगर दवाई से अगर नियंत्रित होता है ग्लूकोमा तो पहले दवाई ही इसका एक इलाज है। ऑपरेशन तो तभी किया जाता है जब अगर दवाइयाँ काम नहीं कर पा रही हैं, दवाइयों से भी नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, तभी जाके हम उसको ऑपरेशन करते हैं।
2: डॉक्टर साहब ग्लूकोमा के केस में जैसे लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ डालनी होती है
0: जी,
2: और मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि करीबन 90% से ज्यादा लोग लाइफ लॉन्ग मतलब दवाई मिस ही करते हैं बीच में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: कहीं ना कहीं परेशान होते क्योंकि वो दो दो तीन तीन टाइम डालना होता है और बड़ी महंगी दवाइयाँ होती हैं, छोटे से ड्रॉप 400-500 रुपए के होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
2: ऐसे में मतलब जिसको भी ग्लूकोमा हुआ है वो अल्टीमेटली फिर ब्लाइंडनेस की तरफ ही जाता है।
0: बिल्कुल, अगर मरीज ने दवा बीच में बंद कर दी है, अगर उसका क्या होता है, मरीज डॉक्टर को दिखाने आया एक बार अस्पताल में, डॉक्टर ने उसको नेत्र चिकित्सक ने उसको ग्लूकोमा डायग्नोस कर दिया है और उसको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी हैं और एक या दो दवाइयाँ उसको दी हैं डालने के लिए, एक बार जब प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो कई पेशेंट जो होते हैं वो दवाई डालना बंद कर देते हैं। अब आपने दवाई डालना जब बंद कर दिया तो प्रेशर वो बढ़ना वापस शुरू हो जाएगा और वापस नुकसान होना शुरू हो जाता है उसका। तो अगर हम जब पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में आता है तब हम उसे पूछते हैं कि भाई आप दवाई बराबर डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो। अगर हमें ऐसा पेशेंट नजर आता है कि जो दवाई नहीं डालता है तो ऐसे केस में हम लोग कई बार सर्जरी एडवाइस कर देते हैं जल्दी।
1: जी बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बताया कि इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, अंधापन हो सकता है, तो कई लोग जैसे नेत्र दान करते हैं तो क्या वो नेत्र इन आंखों पर लगाए जा सकते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ग्लूकोमा के केसेस में एक्चुअली दृष्टि जो नस होती है दृष्टि की, दृष्टि तंत्रिका जिसको बोलते हैं, उसमें डैमेज होता है
1: जी।
0: तो और जो अपन नेत्रदान करते हैं उसके अंदर जो कॉर्निया जो काला हीरा जो इसको बोलते हैं उसका पार्ट, उसको नेत्र में से निकाल कर, जो नेत्रदानी की नेत्र होती है उसमें से निकाल कर उसको प्रत्यारोपित किया जाता है दूसरी आंख में, तो जिसमें कॉर्नियोलोपेसिटी हो, किसी की कॉर्निया की संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसके अंदर उसको किया जाता है। ग्लूकोमा के केस में ये पॉसिबल अभी नहीं है
1: जी,
0: नेत्रदान से उसको सही करना
1: जी। हेलो,

0: हेलो जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे बच्चों में जो ग्लूकोमा हो
1: हाँ
0: जाता है
1: बिल्कुल।
0: तो उसका इलाज।
1: तो जैसे मैंने बताया, कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा जो जन्मजात ग्लूकोमा होता है, उसके अंदर ज्यादातर सर्जरी ही करना पड़ता है। गोनियोटोमी या फिर ट्रेबिकुलोप्लास्टी या फिर ये ट्रेबिकुलेक्टोमी करते हैं उसके अंदर, ये
0: जी
1: करते हैं इसमें, ये सर्जरी ही करना पड़ता है। इसके बाद जो यंग एज में ग्लूकोमा होता है, वो ज्यादातर ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, तो उसको, या फिर कभी कभी 40 साल के आसपास क्लोज एंगल भी हो सकता है, तो उसको उसका इलाज वही उसी तरह से जैसा रहता है, सेम तरीके से दवाइयों से इलाज। और दवाइयों से अगर नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, तो या तो लेजर या फिर सर्जरी से इलाज हम करते हैं उसका।
0: जी ग्लूकोमा से होने वाली जो क्षति है उससे किस तरह से बचा जा सकता है?
1: ग्लूकोमा सबसे, जैसे मैंने बताया कि इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी जो दृष्टि तंत्रिका है, दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व की जो कोशिकाएं हैं, धीरे धीरे कम नष्ट होती जाती हैं और नज़र बिल्कुल कम होने लगती है। धीरे धीरे धीरे धीरे, पहले तो आपका पूरा विजन होता है, धीरे से आपको नीचे की एक लाइन दिखना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे करके कम होती जाती है। और आप दूसरी बात, नज़र कम होने के साथ साथ जो दृष्टि का दायरा है, क्षेत्र, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसको बचने का एक ही तरीका है, अगर आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको ग्लूकोमा है, तो आप उसका इलाज करा ही नहीं पाएंगे।
0: जी
1: तो इसका बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपना आंखों का प्रेशर और जो फंडस है, जिसको फंडोस्कोपी बोलते हैं, वो कराते रहिए। इन दो चीजों से चिकित्सक को ये आइडिया लग जाता है कि उसको काला पानी या तो है या होने की संभावना है। तो उस केस में वो जो भी इलाज और निदान, जो भी टेस्ट करवाते हैं, वो करवाएं और इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसको नियंत्रित कर, अगर हो जाता है नियंत्रित, अगर टाइम पे, अगर शुरू में अगर हमको पता लग जाएगा, तो सामान्यतया इसको आप आगे होने से रोक सकते हैं और नॉर्मल लाइफ आप बिल्कुल इसको जीवन जी सकते हैं हम लोग।
0: हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं किशन कर्नूर बोल रहा हूँ, ग्राम शिव शक्ति का खेड़ा, जिला बूंदी से।
0: हाँ जी, पूछिए अपना प्रश्न।
2: मैं जब मोटरसाइकिल चलता हूँ ना,
0: जी
2: तो मेरे आंखों में आंसू आता है।
1: हाँ, सुबह सुबह चलते हैं जब।
2: हाँ, मोटरसाइकिल पे चलते हैं जब आंसू आते हैं ना, तो भाई ये भी काला पानी है क्या?
1: देखिए, ये काला पानी तो नहीं लग रहा है आपके, जो आप जिस तरह से बता रहे हैं, आंख में पानी आना कभी कभी आंख में इन्फेक्शन या एलर्जी से हो सकता है, या फिर एक दासूर नाम की बीमारी होती है, जिसके अंदर आंख का जो जो आंसू होते हैं वो नाक में नहीं जाके आंख से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको एक किसी नेत्र कुशल नेत्र चिकित्सक से, आपके जो भी आप नजदीकी हो वहां पे आप संपर्क करें और अपनी आंखों की पूरी जांच कराएं। अगर ये एलर्जी या इन्फेक्शन से है, तो दवाई से ठीक हो सकता है, या फिर अगर नासूर की बीमारी है, जिसको हम क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं, तो उसका ऑपरेशन किया जा सकता है, वो बिल्कुल क्योर हो जाता है उससे, तो बिल्कुल इसका इलाज पॉसिबल है।
2: मैं तो मैं शुरू से चलता हूँ ना, दूध दूध का धंधा किया है ना।
1: हाँ,
2: जो सुबह सुबह चलते हैं जो आंसू, तो फिर से आते हैं हमारे, इसमें कोई शिकायत नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो आंख में जो हवा लगती है, तो उसकी वजह से कई बार एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो आप कुछ जो दवाइयाँ लेंगे, तो इससे आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं इसको। तो आप कुशल नेत्र चिकित्सक से सलाह लीजिए और अपना इसका इलाज कराइए इसका पूरा।
2: वो ले लीजिए, वो सलाह भी ले लीजिए, वो दाल भाई दे देते पास आंखों में, वो भी डाल दीजिए।
1: हाँ, वो दोबारा आप फॉलोअप, मतलब उसको दिखाते रहिए डॉक्टर को, अपने जो जो भी आपका नेत्र चिकित्सक है वहाँ पे, उनको दिखाते रहिए। और साथ में काले पानी की जांच भी जरूर कराइए आप जब भी। आपकी उम्र कितनी होगी अभी?
2: उम्र 78 चल रहा है मेरा अभी।
1: हाँ, तो आपको काले पानी की भी जांच कराना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि काले पानी की विशेष सामान्य जांच के अलावा काले पानी की जांच जरूर कराइए, आंख का प्रेशर, फंडोस्कोपी, मतलब दृष्टि तंत्रिका की जांच, ये भी जरूर कराइए आप।
2: अभी दूर की नजर तो सही है, नजदीक की नजर में थोड़ा धुंधलापन देखने लगा।
1: नजदीक की नजर में अगर धुंधलापन दिखता है, तो चश्मे से उसको ठीक किया जा सकता है। प्रॉपर चश्मा लगाने से आप उसको ठीक कर सकते हैं।
0: जी, आप एक बार चिकित्सक से संपर्क करें, उन्हें दिखाएं और जो भी समस्या होगी वो निदान करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। तो ये जो सर्जरी होती है, इसका क्या महत्व है?
1: सर्जरी करने के लिए, सर्जरी के लिए इसमें क्या, अगर काला पानी किसी को है, अगर डायग्नोस हो गया, तो हम पहले उसको नियंत्रित करने के लिए दवाइयां देते हैं। कई बार एक दवाई से नियंत्रित हो जाता है प्रेशर, कई बार दो भी देनी पड़ती हैं, तीन या कई कई बार चार दवाइयां भी देनी पड़ सकती हैं। अगर प्रेशर कंट्रोल है, पेशेंट का प्रेशर नियंत्रित है और काला पानी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम दवाइयां

0: के ऊपर उसको रखते हैं लाइफ लॉन्ग, और पेशेंट को हर 3 महीने में या 6 महीने में जैसा भी होता है उसको बुलाते रहते हैं, ताकि हम उसका प्रेशर देख सकें और ग्लूकोमा को प्रोग्रेशन मॉनिटर कर सकें कि ग्लूकोमा आगे बढ़ तो नहीं रहा है। कुछ केसेस में अगर ग्लूकोमा आगे बढ़ रहा है दवाइयों के बावजूद भी और प्रेशर भी नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, तो उन केसेस में या तो हम लेजर करते हैं, लेजर सर्जरी, और या फिर हम उसको ऑपरेशन के द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। तो ऑपरेशन करने से जो काला पानी वो नियंत्रित हो सकता है, पर कई बार ऑपरेशन के बाद भी आपको दवाइयाँ डालनी पड़ सकती हैं, क्योंकि इसके जो सक्सेस रेट होता है, क्योंकि एक नया चैनल बनाते हैं, वो चैनल भी कई बार रुक जाएगा तो ये दोबारा भी काला पानी आपको आ सकता है।
1: जी।
0: तो काला पानी का ऑपरेशन के बाद ये नहीं है कि काला पानी का ऑपरेशन हो गया तो आप बिल्कुल ठीक हो गए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी इसमें। तो आपको उसके बाद भी दवाइयाँ डालते रहना पड़ेगा और चिकित्सक को दिखाते रहना पड़ेगा।
1: हेलो, हेलो,
2: नमस्ते मैडम।
1: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: जितेंद्र बात कर रहा हूँ मैडम।
1: आपकी आवाज़ बढ़ाइए थोड़ी, पूछिए अपना प्रश्न।
2: डॉक्टर साहब से पूछना था, एक बार रोशनी जाने के बाद वापस नहीं आ सकती है डॉक्टर साहब?
0: अगर आपकी रोशनी ग्लूकोमा की बीमारी की वजह से गई है और वो जिसमें दृष्टि तंत्रिका जो होती है उसकी कोशिकाएं नष्ट होने की वजह से ग्लूकोमा की वजह से गई है, उस केस में बीमा ये रोशनी को जो खो गई है आपकी जो नजर चली गई है वो वापस लाना अभी तक संभव नहीं है। पर अगर रोशनी मोतियाबिंद की वजह से जो जिसको बोलते हैं सफ़ेद मोतिया, मोतियाबिंद या कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं, अगर उसकी वजह से गई, अगर रोशनी आपकी कम हो रही है, या चश्मे के नंबर हैं आपकी आँख में उसकी वजह से अगर रोशनी कम हो रही है, तो इसको बिल्कुल पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर मोतियाबिंद है तो उसका ऑपरेशन करके आँख में नया लेंस लगा दिया जाता है। हाँ बोले सर,
2: बिल्कुल ही सही सर।
0: तो चेकअप कराना बहुत जरूरी है, इसके अंदर किस वजह से गई है वो देखना जरूरी है। वो कारण जब तक पता नहीं लगेगा तब तक इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। अगर मोतियाबिंद की वजह से अगर गई है तो उसका ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ जी सर,
2: क्या चेक करवा ली सर? डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, कुछ भी नहीं हो सकता।
0: क्या क्या क्या डायग्नोसिस दिया, निदान क्या किया उन्होंने उसका?
2: जो डॉक्टर साहब ने बोला था, जो आपको जो पुरजा होता है ना,
0: पर्दा, हाँ पर्दे का, बिल्कुल कई बार पर्दे की जो बीमारियां होती हैं उसका भी इलाज संभव नहीं हो पाता है। जो भी आपको डॉक्टर ने सलाह दी है उसको आप फॉलो करें और डॉक्टर को नियमित रूप से दिखाते रहें।
2: मैं तो पूछ रहा हूँ, जैसे आपके डोनेट करवाते हैं सर, तो उनसे भी कोई समाधान?
0: पर्दे की बीमारी में ये अभी संभव नहीं है, आप डोनेट करके दोबारा उसको पर्दे को
1: जी, और फिर भी आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपने फोन किया जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि कोई भी बीमारी हो, जितना जल्दी उपचार शुरू करेंगे उतना जल्दी निदान होगा, तो इस बीमारी में कई बार पता ही नहीं चल पाता,
0: बिल्कुल नहीं।
1: तो इसके जो मुख्य लक्षण है वो क्या है?
0: मुख्य लक्षण ऐसा, इसमें जैसे ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसके अंदर मुख्य लक्षण ये है कि आपका जो नजर है, आप चेकअप करा रहे हैं पर नजर आपकी धीरे धीरे कम होती जा रही है, चश्मे का जो नंबर है वो बार बार बदल रहा है। ओपन एंगल ग्लूकोमा भी कई बार हल्का दर्द या सर दर्द ऐसा बना रहता है, ये इस तरह के लक्षण कभी कभी दिखाई सकते हैं। मेन लक्षण का है नजर धीरे धीरे कम होना
1: जी। अब हम बात करें जांचें जो करवाई जाती हैं, तो ये कितने प्रकार की होती है?
0: जांचें सबसे पहले तो इसके अंदर कराते हैं हम इंट्राओकुलर प्रेशर, जो एप्लिकेशन टोनोमीटर होता है, विशिष्ट उपकरण होता है, उससे हम इसकी प्रेशर चेक करते हैं। तो उससे हमको पता लग जाएगा कि पेशेंट का जो अंदर का दबाव है वो कितना है, वो उसकी उम्र के हिसाब से या उसको उसकी आंखों की स्थिति के हिसाब से वो सही है या बड़ा हुआ है। तो उसको हम देखने के बाद फंडोस्कोपी करते हैं पेशेंट की, दृष्टि तंत्रिका में कितने परसेंट उसका जो दृष्टि है, दृष्टि तंत्रिका नष्ट हो चुकी है, जैसे 50% नुकसान हो चुका है या 20% नुकसान हो चुका है, वो हम उसको पहले चेक करते हैं। इसके साथ साथ हम एक पेरीमेट्री की जांच करते हैं। पेरीमेट्री मतलब जो, जैसे मैंने बताया कि इसमें नजर का जो दायरा है, दृष्टि क्षेत्र, वो धीरे धीरे संकीर्ण होता जाता है, नैरो होता जाता है, तो हम इसमें दृष्टि क्षेत्र की जांच करते हैं, तो हम पेरीमेट्री बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जांच होती है, इससे हमको पता लगता है कि ग्लूकोमा किस स्टेज पे है और जो नजर का जो दायरा है, जो सामने हम देखते हैं, जो पूरा हमको एरिया दिखता है उसको दृष्टि क्षेत्र बोलते हैं, वो कितना कम हो चुका है। तो उससे हमको इस जांच से, पैरामीटर जांच से ये पता लगता है। तो इन टेस्ट से हमको पता लगता है कि ग्लूकोमा की स्टेज क्या है, एडवांस स्टेज का ग्लूकोमा है या अभी ग्लूकोमा शुरू हुआ है, और उस स्टेज के हिसाब से हम जो आंखों का जो प्रेशर है वो देखते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि इस आंख का, इस व्यक्ति विशेष के लिए उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, इसको हम टारगेट प्रेशर बोलते हैं। तो हम उसी हिसाब से उस मरीज को दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी एक दवाई कभी दो दवाई, तो फिर हम उसको दोबारा

0: दवाई प्रेस्क्राइब करने के बाद में दोबारा जब फॉलोअप बनाते हैं तो उसको दोबारा चेक करके देखते हैं कि वो दवाइयाँ कितना कारगर हो रही हैं। अगर कारगर हैं दवाइयाँ और प्रेशर का कंट्रोल है तो उसको उन्हीं दवाइयों पे नियमित करते हैं, या फिर अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उन दवाइयों से भी तो हम उसको दोबारा जाँच करके कुछ या दवाई ऐड कर देंगे या उसको लेजर या सर्जरी का उसको कह सकते हैं। तो नियमित अगर पेशेंट फॉलोअप पे नहीं आएगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
1: जी हेलो
2: हेलो
1: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?
2: मैं रामनिवास बोल रहा हूँ, पिलावासील जिला जरावर।
1: जी पूछिए अपना प्रश्न।
2: मैं डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार सर।
2: डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब खुशी के मारे मेरे आंसू छलक आते,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है ना सर। खुशी के मारे आंसू आना तो बहुत अच्छी बात है ना, खुशी के आंसू तो बहुत अच्छे माने जाते हैं।
2: और सुबह सुबह जब बाइक भी चलते हैं तो आंसू आते हैं, तो क्या इसकी कोई बीमारी तो नहीं हो सकती?
0: नहीं नहीं, ये जो आप कह रहे हैं तो बाइक पे चलते हैं तो एक तो हेलमेट लगाइए सर, हेलमेट लगाएंगे ना आप तो उसके अंदर हेलमेट के आगे आंखों के आगे भी वो एक रहता है पूरा, है ना, तो आंखों में हवा नहीं लगेगी तो पानी नहीं आएगा। हेलमेट की सुरक्षा आंखों के लिए भी है और आपकी खुद की सुरक्षा के लिए तो है ही है, तो आंखों की सुरक्षा के लिए भी हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है।
1: जी बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। डॉक्टर साहब जो ग्लूकोमा है ये कितना आम है?
0: हाँ बिल्कुल, ग्लूकोमा आप ये देख लीजिए कि जो भी पॉपुलेशन है अपनी इंडिया की उसमें 1% लोगों को कम से कम ये ग्लूकोमा, 100 में से 1 या 2 लोगों को ये ग्लूकोमा की बीमारी होती है।
1: जी आजकल हम देख रहे हैं लाइफ स्टाइल है, खान पान है, बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है और इस बात को शायद समझाना मुश्किल है बच्चों को या बड़ों को भी कि इसके साइड इफेक्ट्स पूरी बॉडी पर होते हैं, चाहे वो आंखें हो या कोई भी पार्ट हो। धूम्रपान मद्यपान ये भी तेजी से हम देखते हैं बढ़ रहा है, महिलाएं भी आजकल के जो यंग हैं सभी बहुत तेजी से इसे अपना रहे हैं, तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं बहुत तेजी से उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो आंखों पर भी पड़ता है। कैसा खान पान होना चाहिए क्या कहेंगे आप?
0: सबसे पहले तो एक जो स्क्रीन टाइम का आजकल जो इशू है ना वो भी उसकी वजह से भी काफी दिक्कत है, क्योंकि अगर स्क्रीन टाइम जिसका भी ज्यादा होगा ना तो उसको मायोपिया होने के चांस बच्चों में, जैसे अगर स्क्रीन टाइम रहता है बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं मोबाइल पे ही लगे रहते हैं दिन भर तो उस केस में मायोपिया जो होता है बीमारी जिसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं तो मायोपिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आजकल अभी कोविड के बाद पर जब ये ऑनलाइन शुरू हुआ है तो काफी बढ़ गए हैं केसेस मायोपिया के, और मायोपिया वाले बच्चों में एक तो पर्दे में और दूसरा काला पानी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है।
1: जी।
0: तो बचने के लिए सबसे पहला तो आप स्क्रीन टाइम कम रखिए अपना, जितना कम हो सके उतना कम रखिए। दूसरा नियमित व्यायाम
1: जी।
0: और खान पान में पौष्टिक आहार जैसे कि हरी सब्जियां का सेवन ज्यादा करें, फ्रूट्स लें, जो भी मौसमी फल आते हैं सभी आप ले सकते हैं, सभी आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरा आप मद्यपान अगर करते हैं कोई लोग मद्यपान या धूम्रपान उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, इससे भी आंखों के कई रोग होते हैं जैसे काला पानी, ये आंखों का जो पर्दा है उसके अंदर ERNB नाम की बीमारी ये भी हो सकती है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है अगर आपके चश्मा है तो रेगुलर चश्मे का चेकअप कराते रहिए, अगर आप चश्मे का चेकअप रेगुलर नहीं कराएंगे तो हो सकता है आपकी जो नज़र है वो धुंधली होना शुरू हो जाएगी और आगे जाके दिक्कत आ सकती है इसमें।
1: जी आंखों पर किन बीमारियों का प्रभाव पड़ता है, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनका तेजी से आंखों पर प्रभाव पड़ता है?
0: हाँ एक तो हमने देखा जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज से ग्लूकोमा पर्दे की कई बीमारियां हो सकती हैं, जिनको डायबिटीज होती है उनको मोतियाबिंद भी ज्यादा हो सकता है आंख में, तो ऐसे कैसे एक डायबिटीज है, उच्च रक्तचाप है जिस पेशेंट को उसके अंदर बिल्कुल हो सकता है, या फिर कई जैसे हमने बताया स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा का हमने जिक्र किया था बीच में हमारी वार्ता में, तो कुछ इस तरह की दवाइयां होती हैं स्टेरॉइड जो एलर्जी के लिए दी जाती हैं, आंखों की एलर्जी है जिसको आंखों की जैसे किसी को आंखों की एलर्जी होती है, आंखों में इचिंग वगैरह, खुजली होना, लाल होना, पानी आना, कई बार इसके अंदर स्टेरॉइड नामक दवाइयों को हम प्रेस्क्राइब करते हैं नेत्र चिकित्सक लोग, या फिर कभी स्किन की किसी को एलर्जी हो तो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी ये स्टेरॉइड नामक दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं उसको ठीक करने के लिए। अगर लंबे समय तक अगर कोई स्टेरॉइड डाल रहा है आंख में या फिर गोली ले रहा है स्टेरॉइड्स की तो उसको काला पानी होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, काला पानी स्टेरॉइड नामक दवाइयों से काला पानी आंख में हो सकता है
1: जी।
0: और इसको फिर नियंत्रित करना काफी कई बार मुश्किल हो जाता है
1: जी। हेलो
3: नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: मेरा नाम आकाश है, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी पूछिए अपना प्रश्न।
3: मैं बोल रहा हूँ कि जैसे सुबह सुबह उठने पे आंखों में दर्द होता है, ये भी कोई काला पानी?

0: लक्षण है?
1: बिल्कुल, इसमें दो जैसा आप बताएं, सुबह सुबह उठने पे आपको आंखों में दर्द है, तो इसमें या तो काला पानी भी हो सकता है। आपकी एज कितनी होगी?
2: जी, संपर्क टूट
1: ठीक
2: गया।
1: है, इसमें यह है कि काला पानी भी हो सकता है, जांच कराने से पता लग ही जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपको चश्मे की आवश्यकता हो इसमें
2: जी,
1: ज्यादातर।
2: और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है और डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभप्रद जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, हम आपको बता दें, कार्यक्रम का संयोजन था तेजराम मीणा का, प्रस्तुति थी राजेश महावर की, तकनीकी सहयोग मनोज कुमार भारद्वाज का और विवेक मीणा का। आप सुन रहे थे आपकी सेहत कार्यक्रम, विषय था ग्लूकोमा निदान और उपचार। विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ, सुवीआई हॉस्पिटल से। FM 102 व 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। सुबह के 9 बजने को है, कुछ ही क्षणों में आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: लक्ष्मी है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

0: समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात से नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उन्होंने आबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: नीदरलैंड्स के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राज उन्नति की बैठक में 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट्स को तय टाइमलाइन के अनुसार पूरा करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा।

0: मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की पीने के पानी से जुड़ी शिकायतों को तत्परता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्र हित में ईंधन की बचत और ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द ई बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित शहरों में डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के काम को पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित अन्य प्रमुख शहरों में ई बसें चलाई जाएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया गया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एनटीए ने पिछले 24 घंटों में देश भर में अनेक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले में अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई भर्ती 2021 परीक्षा 20 सितंबर को दोबारा होने जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी आज से 30 मई तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पते को अपडेट कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस परीक्षा में वही 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जो पहले दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इस परीक्षा में अवसर नहीं दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल पूछेंगे। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वयं गणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है।
1: आदिवासी लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध सीताबाड़ी के धार्मिक मेले का शुभारंभ आज होगा। ये मेला सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहाँ माता सीता ने निर्वासन के दौरान वाल्मीकि आश्रम में निवास किया था। ये मेला रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ 7 पवित्र कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड आदि है, जिनमें ज्येष्ठ अमावस्या को स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहां लवकुश का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहां समुदाय अपनी परंपराओं का जश्न मनाता है और उनके पारिवारिक विवाह भी होते हैं। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
0: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इसका उद्देश्य मॉनसून से पहले डेंगू रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना और मच्छरों के नियंत्रण के प्रयास करना है। ये बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मच्छरों के नियंत्रण के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि समय पर पहचान और इलाज नहीं मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
2: विश्व डेंगू दिवस पर आप सभी से अपील है कि डेंगू से बचाव के लिए सजग रहें, अपने घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर, गमले और टंकियों की नियमित सफाई करें, पूरी बांह के कपड़े पहने और मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करें। याद रखें, डेंगू का इलाज नहीं, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आइए मिलकर स्वच्छता अपनाएं

0: और डेंगू मुक्त समाज बनाए।
1: राज्य में कल से तापमान में बढ़ोतरी और हीट वेव का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। पिछले दो तीन दिन से कई हिस्सों में जारी आंधी बारिश से पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। गर्मी के कल से फिर जोर पकड़ने के आसार हैं। इस बीच कल फलौदी और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। अन्य स्थानों पर पारा सामान्य के आसपास या उससे नीचे रिकॉर्ड हुआ। वहीं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावटी अंचल में कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। आईपीएल क्रिकेट में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रात चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 38 गेंद में 90 रन की पारी खेलने के लिए मिशेल मार्श को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 102 व 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है।

हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और विशाल भारद्वाज का गाया ये गीत। फिल्म का नाम है ओमकारा। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत विशाल भारद्वाज का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फिल्म संगीत में अगला गीत आप सुनेंगे सोनू निगम और श्रेया घोषाल के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। स्वानंद किरकिरे के लिखे गीत को शांतनु ने संगीत दिया।

फिल्म संगीत में अब आप सुनेंगे केके का गाया ये गीत। फिल्म का नाम है ओम शांति ओम। धुन बनाई विशाल शेखर ने और गीत विशाल का।

लीजिए सुनिए फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश। लता मंगेशकर उदित नारायण के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है मोहब्बतें। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। FM 102 व 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

सखियों, विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि सर्वगुण संपन्न कोई भी व्यक्ति नहीं होता ना। किसी में कुछ गुण होते हैं और किसी में कुछ। जिसे हम पसंद नहीं करते उस व्यक्ति में भी तो कुछ गुण हो सकता है, इसलिए हम पसंद नहीं करते पर उस व्यक्ति के विचार भी अगर अच्छे हैं तो हमें अपना लेने चाहिए। क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है पर विचारों की खूबसूरती कभी नहीं बदलती। इसलिए हम आ मिलते हैं हमारी सखियों से इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करने के लिए। सखियों, कल्पना कीजिए कि दिन सिर्फ 4-5 घंटों का हो और रात 19 से 20 घंटों की। क्यों? उन्हें तो जिन्हें आराम पसंद है बड़ा ही आनंद आएगा। ऐसे ही मौसम भी नियम के अनुसार न बदले, हमारी इच्छा के अनुसार बदले तो भाई प्रकृति को कितनी परेशानी होगी, क्योंकि इच्छाएं तो अनगिनत है, क्योंकि व्यक्ति अनगिनत है। ऐसे ही मौसम अपने नियम से ना चले और हमारी इच्छा से चले तो भाई सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। हमारे दिन भर के कार्य कैसे पूरे होंगे भला, अगर रातें छोटी हो गई, दिन बड़े हो गए, दिन छोटे हो गए, रात बड़े हो गई, क्योंकि इच्छाएं तो अलग अलग होंगी। सब कुछ नियम से चलता है ना, इसलिए सब कुछ संतुलित है और इसलिए सब कुछ ठीक से चल रहा है, क्योंकि सब कुछ नियम से बंधा हुआ है। सारा संतुलन संतुलित है प्रकृति का, और इंसान का भी संतुलित रहेगा अगर वो नियम से चले तो। सखियों, हम सब स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम अपने जीवन को अपने तरीके से जिए। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरे की स्वतंत्रता छीन लें या फिर नियमों का उल्लंघन करें। हमेशा याद रखें सखियों कि स्वतंत्रता हमेशा अनुशासन का पालन करती है, अर्थात हम स्वतंत्र हैं प्रकृति के नियमों में बंधकर उसके उपहारों का उपभोग करें, अर्थात सूर्य का उदय हो गया है, अर्थात हमें भी उठना है, अपने दैनिक कार्यों को, सभी को कार्यों को पूर्ण करना है, किसी को तैयार होकर ऑफिस जाना है, गृहिणियों को घर का काम करना है, पौधों में पानी डालना है, सब कुछ के सब बंधा हुआ है ना, बच्चों को तैयार होकर स्कूल के लिए निकलना है। सब कुछ नियम से है इसलिए संतुलित है, और सब कुछ संतुलित है क्योंकि नियम में बंधे हुए हैं। कितना अच्छा तालमेल है ना। प्रकृति के नियमों में बंधकर उसके उपहारों का उपभोग जब हम करते हैं ना, तो दिन रात सर्दी गर्मी मौसम सब नियमों में बंधकर चलते हैं और हमारा जीवन भी संतुलित करते हैं। सच में अनुशासन वह शक्ति है सखियों, जो अपनों

सपनों को सपनों को हकीकत में बदल देती है। जी हाँ, अपने सपनों को हम हकीकत में बदल सकते हैं अनुशासन में बंध कर। व्यक्ति को अपने जीवन के जो उसके आधार हैं, उस जीवन के जो उसके सपने हैं, उनको आकार देने में, लक्ष्यों को प्राप्त करने में, आवेगों को ऊपर उठने में शक्ति ही अनुशासन देती है। सखियों, हम सभी चाहते हैं कि हम अपने अपने जीवन में सोचने विचारने घूमने फिरने की आजादी हो। सभी चाहते हैं ना कि हमें कोई रोके ना, कोई टोके ना, हम जब चाहे जब घूमें, जब चाहे जब अब उठें, हमें बोलने की स्वतंत्रता हो। सोचिए, हमें पूर्ण रूप से मिल भी गई तो क्या हम क्या करेंगे, क्या होगी हमारी दिनचर्या? भाई, कईयों की तो आदत होगी कि हमें तो भाई सोना पसंद है, हम तो देर से सोकर उठेंगे, जो जी चाहे वो खाएंगे, जो जी चाहे वो पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर उसके बाद क्या? क्योंकि घूमना फिरना तो हर किसी को पसंद है, खाना पीना भी पसंद है किसी को, न किसी का फोन आएगा, न कोई पूछेगा कि घर कब जल्दी पहुंच रहे हैं। पर शांत दिमाग से सोचिए सखियों, क्या ये सही है, क्या यही जीवन है, घूमना खाना सोना पीना? हम कितनी ही स्वतंत्रता चाहते हों, पर यह भी चाहते हैं कि कोई हो जो हमें कहे कि घर जल्दी आना, कोई पूछे कि आज क्या बना रही हो, कोई पूछे कि तुम्हें क्या पसंद है, कोई पूछे कि ये साड़ी मत पहनो, आज ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, कोई हो जो हमारी परवाह करे, कोई हो जो हमारा इंतजार करे, है ना? हम चाहते हैं ना ऐसा ही। तो ये जो सखियों आने जाने के लिए टोकना, कुछ हम अपनी पसंद हम हमारे लिए बताना कि हमें ये पसंद है ऐसा करो ना, ये जो टोकना है ना, यह अनुशासन नियमों में बांधना नहीं है, यह परवाह है। टोकना स्वतंत्रता छीनना नहीं है। तो सखियों, हम समझें कि क्या अनुशासन है और क्या स्वतंत्रता। अगर हम इन दो शब्दों को समझ गए ना, तो जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा एक दूसरे के विचारों को समझना। आप मेरी बात से सहमत हैं ना? मुझे पता है मेरी सखियां अधिकतर सहमत रहती हैं, और नहीं भी हैं तो थोड़ा एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। सखियों, समय पर लौटना, नियत समय पर सब काम करना, परिवार के हर सदस्य को अपने अपने काम को समझना, अपने कर्तव्यों को समझना, यही तो है अनुशासन। मतलब अपने अपने नियमों का पालन करना, ये अनुशासन। और स्वतंत्रता मतलब थोड़ी उसकी इच्छा के अनुसार भी जीने देना। नियमों का पालन अगर सभी करें तो स्वतंत्रता का हनन होगा ही नहीं, और न होगी शिकायत। स्वनियंत्रण से ही जीवन में स्थिरता आती है सखियों, आती है ना? बिना अनुशासन के स्वतंत्रता अव्यवस्था व विनाश की ओर ले जाती है। हम सभी जानते हैं कि अनुशासित जीवन से ही आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस प्रकार एक पढ़ने वाला बालक अपने समय प्रबंधन करता है, उसी प्रकार हम गृहिणियां भी तो करती हैं कि नियत समय पर ये काम हो जाना चाहिए। फिर जो हमारी नौकरी करने वाली बहनें हैं, वो भी तो उसी नियम दिनचर्या के अनुसार चलती हैं कि दिन भर में ये कार्य इतने बजे तक पूरा करना है, क्योंकि फिर इस कार्य का समय हो जाएगा। तो जब हम नियत समय पर नियत कार्य करते हैं, नियमों में बंध कर करते हैं, तभी तो सफलता पूर्वक पूरा कार्य कर पाते हैं। अत्यधिक अनुशासन भी जीवन में घुटन ला सकता है सखियों, इसलिए अनुशासन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जबकि अत्यधिक स्वतंत्रता से नीरसता आ जाती है। वही अभी उदाहरण दिया ना मैंने कि हम खाएंगे पिएंगे सोएंगे, भला कब तक? कब तक खाएंगे, कब तक सोएंगे? कुछ नियम हो तो ना। जीवन में लक्ष्य से ध्यान भटकता है, वह व्यक्ति असफलता से दूर भी हो जाता है जब स्वतंत्रता ज्यादा हो जाती है। संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है सखियों, हम सभी को प्राप्त है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता, किसी से स्वतंत्र रूप से हम मिलें, अपने विचार अभिव्यक्त करें। पर स्वतंत्रता मिलने से यह तो सिद्ध नहीं होता ना सखियों कि हम नियमों का उल्लंघन करें।
विचार अभिव्यक्ति भी स्थान देखकर करते हैं हम, है ना। आवागमन भी सुविधा अनुसार होता है, हमारा पहनावा सब कुछ स्थान को देखकर अनुशासन में रहकर हो तभी उचित रहता है, अर्थात स्वतंत्रता का

0: उपयोग हो परंतु अनुशासन में। अनुशासित व्यक्ति ही समाज में सम्मान को प्राप्त करता है और अपने जीवन को सफलता के पथ पर ले जाता है। चाहे विद्यार्थी जीवन हो या अन्य कार्य क्षेत्र, निरंतर अनुशासित जीवन ही सफलता की सीढ़ी है। मानती है ना आप सभी?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सखियों, गर्मी तो ऐसे बढ़ रही है जैसे पता नहीं कहाँ जाकर थमेगी, है ना? अब हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्मियों में कैसे रखें अपना व परिवार जनों का ध्यान। आइए सुनिए ये बातचीत। अब तक जो थी महिला जगत कार्यक्रम की श्रोता, जो उसे सुन सुनकर सराहती थी, आज उन्हें मौका मिला है कि वही बने महिला जगत कार्यक्रम का हिस्सा। जी हाँ सखियों, हम आ पहुँचे हैं महिला जगत के स्टूडियो से बाहर निकलकर उन सखियों से बात करने, ये जानने कि इस गर्मी के मौसम में वो कैसे अपना ध्यान रखती हैं और अपने परिवार जनों का ध्यान रखती हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी सखी से। आपका क्या नाम है?
3: ज्योति माहेश्वरी।
0: जी ज्योति जी, आप गृहिणी हैं या व्यवसाय करती हैं?
3: मैं गृहिणी हूँ।
0: गर्मी का मौसम जैसे ही आता है तो हम सोचते हैं कि अब क्या करें, कैसे बच के रहें, तो क्या बदलाव आता है जीवन शैली में?
3: सबसे पहले अपने पहनावे में परिवर्तन करते हैं कि हम पतले और सूती कपड़े पहने, और मेन होता है हमारा खान पान, जिसमें कि हम डेली में लिक्विड को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम छाछ, दही, कैरी का पानी रोज अपने भोजन में हम शामिल करें। घर से बाहर हम जब भी निकले अपने साथ पानी की बोतल साथ लेके चलें, और इस समय हम कोशिश करें कि हम तले भुने खाने कम खाएं, बच्चों को भी हम जंक फूड से दूर रखें, कोशिश करें कि हम भरी गर्मी में नहीं निकले पर आवश्यकता अगर हमें है सनस्क्रीन लोशन हम लगा सकते हैं, छाते का उपयोग हम करें
0: जी,
3: और अपने आसपास का वातावरण भी हम अच्छा रखें, पसीने से भी हम बचें। इसके लिए हम रोज शाम को नहा भी सकते हैं जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं।
0: आपने ज्योति जी अभी बोला कि खान पान में भी बदलाव आ जाता है, तो आप क्या क्या ठंडा पेय पदार्थ या ठंडी सामग्री जो बच्चों को पसंद हो, क्योंकि इस समय ऐसा होता है कि भूख तो लगती है पर खाने की इच्छा नहीं होती, तो आप क्या चीज बनाती हैं बच्चों के लिए?
3: बच्चों को आम पन्ना भी बहुत पसंद होता है, छाछ, जैसे कि दही और चावल दोनों ठंडे हैं, दही और चावल को भी हम मिक्स करके उन्हें खिला सकते हैं, और लाइट भोजन की हम कोशिश करते हैं उन्हें देने के लिए, जैसे दाल चावल हो गया, चपाती।
0: और बच्चे जैसे ही गर्मी लगती है ना तो बोलते हैं ठंडा लेना है और कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ भागते हैं, तो क्या कोल्ड ड्रिंक्स लेना ठीक रहता है बच्चों के लिए?
3: नहीं, बच्चे अगर बाहर से आ रहे हैं और बहुत पसीने में हैं तो हम कोशिश करें कि उन्हें हम पहले बोलें कि आप अपना थोड़ी देर पसीना सुखाएं, उसके बाद हम ठंडे पदार्थ उन्हें देने के लिए अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपका गला भी खराब होता है और उसकी वजह से हो सकता है कि हमें बुखार भी आ जाए
0: जी। और ठंडे पेय पदार्थों में कोल्ड ड्रिंक्स लेना बच्चों को पसंद होता है, पर उसकी जगह क्या विकल्प हम अपना सकते हैं?
3: उसकी जगह अभी हम उन्हें आम रस दे सकते हैं, पपीता शेक भी आप दे सकते हैं उन्हें, छाछ पिला सकते हैं हम उन्हें, खरबूजा या वाटरमेलन का जूस भी बना के दे सकते हैं, पर हम कोल्ड ड्रिंक से बच्चों को दूर रखें।
0: अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और हम जिस तरह से बच्चों के खान पान का ध्यान रखेंगे उतना अच्छा रहेगा उनका स्वास्थ्य भी। और हमारी एक और सखी हमारे साथ बैठी हुई है, आपका क्या नाम है?
4: मेरा नाम नीलिमा सिंह है।
0: तो नीलिमा जी, आप गृहिणी हैं या व्यवसाय में हैं?
4: नहीं, मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ
0: जी। तो फिर तो आपको घर से बाहर निकलना आवश्यक हो जाता है आपका, तो आप क्या करती हैं, कैसे सावधानी बरतती हैं इस गर्मी के मौसम में?
4: देखिए, जब घर से निकलना आवश्यक हो इस मौसम में तो हर थोड़ी देर में पानी पीना चाहिए, धूप में बाहर निकलते समय हमेशा पानी की बोतल साथ में रखनी चाहिए, हाइड्रेशन से बचने के लिए नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ या ORS का सेवन मैं जरूर करती हूँ
0: जी।
4: हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन हम साथ में लेकर जाते हैं, जैसे ज्यादातर सैलेड, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, ऐसे हम अपने लंच में लेकर जाते हैं। इसके अलावा गर्मी से बचाव के लिए हम हल्के रंग के ढीले और पूरे ढकने वाले सूती कपड़े पहनते हैं, छाते का प्रयोग करते हैं और चेहरे और आंखों की सुरक्षा के लिए सनग्लासेस पहनते हैं और चुन्नी से अपने सर को हमेशा ढकते हैं।
0: और आप जब घर पर वापस आती हैं तो रहता है कि टेम्परेचर की वजह से हमारा शरीर भी गर्म रहता है, तो उस समय आप क्या

0: सावधानी बरतती हैं?
1: उस समय देखिए, एक तो आते ही एसी नहीं चलाना चाहिए, पहले तो पंखा वगैरह चलाकर पसीना सुखाना चाहिए। उसके बाद दिन के समय हम अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखते हैं ताकि गर्म हवा अंदर न आए। शाम या रात के समय खिड़कियां खोल देते ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। पर्याप्त पानी मात्रा में हम ठंडा पानी पीते हैं। इसके अलावा और पेय पदार्थ जैसे सत्तू, सत्तू का उपयोग इस समय बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो शरीर को बहुत ठंडा रखता है और एक देसी नुस्खा होता है।
0: तो इसका प्रयोग कैसे करती हैं आप, हमें ये भी बताइए।
1: इसमें देखिए, जो चने होते हैं उनको हम, भुने हुए चनों को हम मिक्सी में पीस लें और उसको हम पानी में घोलकर उसमें नींबू, नमक, हल्का सा काला नमक डाल के हम उसका पेय बना सकते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बच्चों को भी हम पिला सकते हैं ताकि उनके शरीर की गर्मी जो है वो कम रहे। इसके अलावा हम शिकंजी है, फलों के रस हैं और इसके अलावा कैरी का पना है जो हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं, ये सब हम बच्चों को दें। कोल्ड ड्रिंक्स इस समय बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है और उसमें चीनी की मात्रा अत्यधिक होती है।
0: तो शुगर भी बच्चों के लिए ठीक नहीं रहती।
1: हाँ, शुगर और बीपी की, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से बीमारियां हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उससे वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और बच्चों के शरीर पर बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है।
0: जी, और आप गर्मी के समय में किस चीज का प्रयोग करते हैं वो भी हमें बताइए।
1: देखो, गर्मी के समय हमारे पुराने टाइम से दादी नानी कुछ नुस्खों का उपयोग करती आई हैं जो अत्यधिक लाभदायक है। इसके लिए हम अमृत धारा का प्रयोग करते हैं। इसको बनाने की विधि इस प्रकार होती है कि आप कपूर लीजिए, अजवाइन के फूल लीजिए और पुदीने का सत लीजिए। ये सब किराने की दुकानों पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सावधानी हमें ये रखनी है कि तीनों को हम अलग अलग पुड़िया में लेकर आना है, उनको आपस में मिक्स नहीं करना है।
0: अच्छा।
1: घर पर एक कांच की शीशी में हम उन्हें मिलाएंगे तो थोड़ी देर में वो लिक्विड रूप में आ जाते हैं और इसकी एक बूंद हम एक ग्लास पानी में डालकर यूज करें तो ये हमारे शरीर को अत्यधिक ठंडा रखने में काफी सहयोग करते हैं।
0: हाँ हाँ, मुझे भी याद आया नीलिमा जी, जब मैं कभी गर्मी में परेशान हो जाती थी तो मेरे ससुर जी भी और दादा जी वगैरह सब बोलते थे कि अमृत धारा ले ले, स्वस्थ हो जाएगी। तो लेते ही मुंह में एक थोड़ी सी ठंडक सी आती थी क्योंकि उसमें कपूर की मात्रा रहती है।
1: हाँ।
0: तो पर हाँ, ऐसा लगता था ऐसे पूरे शरीर में ठंडक आ गई, और इसका नाम ही अमृत धारा है तो सच में ये गर्मी के मौसम में अमृत धारा के रूप में ही बहुत अच्छी रहती है।
1: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है।
0: नीलिमा जी और ज्योति जी, अभी आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि गर्मियों में आप किस तरह से अपना और परिवारजनों का ध्यान रखती हैं। पर इस समय पसीना इतना आता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और जब पसीना हमारे शरीर से निकलता है तो पानी की कमी हो जाती है जिसे हम डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। तो हमें और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन चीजों का उपयोग करना चाहिए जिससे हम शरीर से निकले हुए उस पानी की पूर्ति कर सकें?
1: देखिए, इसमें हमें सबसे पहले तो बच्चों को सूती कपड़े पहनाने चाहिए जो पूरी बाह के हो। इससे क्या होता है कि सूती कपड़े जो है वो पसीना बहुत अच्छी तरह से सोखते हैं। इसके अलावा उनको हर थोड़ी देर में, हर घंटे में आप कैरी का पना, नींबू का रस या फिर आप शिकंजी वगैरह बनाकर या फिर आप अन्य फलों का रस, खरबूजा, ककड़ी, इसके अलावा भोजन में भी लौकी, तोरई जैसी सब्जियां बना सकती हैं जिनमें पानी की मात्रा अत्यधिक होती है।
0: ये बहुत अच्छा बताया आपने।
2: बच्चों को हम बार बार याद दिलाएं पानी पीना है, क्योंकि पानी की कमी इस समय गर्मी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इस समय में विशेषकर बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उन्हें हम कहें कि वो घर से बाहर नहीं निकले और थोड़ी थोड़े समय पर उन्हें फल देते रहें हम।
0: जी, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी हमारी सखियों के लिए बताई, और हमारी सखियां निश्चित रूप से इन जानकारी को प्राप्त करके बहुत ही लाभान्वित रहेंगी। आप दोनों ने महिला जगत कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में भाग लेकर, और हमारी जो जानकारी थी या हमारी पुरानी दादी नानी की जो जानकारी थी इससे महिलाएं लाभान्वित होंगी, और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखिए, मौसम है, आएंगे जाएंगे, उन्हें हम नहीं रोक सकते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम के नाम से ही सबके मुंह से ऐसा निकलता उफ गर्मी, लेकिन हम कुछ चीजों का ध्यान रखकर इससे बच सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।
3: सखियों, अभी हमने बातचीत की श्रीमती नीलिमा सिंह और ज्योति माहेश्वरी से, इन्होंने अपने विचार साझा किए। आइए अब रुख करते हैं गीत संगीत की ओर।

सखियों, मधुर संगीत के बाद अब हम लेकर आए हैं कि गर्मियां जब आ ही गई हैं तो भाई ओआरएस का महत्व भी तो हमें समझना है ना, कैसे लेना है। तापमान 45 को पार करने को है सखियों, उफ ये गर्मी क्या करें। भाई हम तो यही कहेंगे कि लू से बचकर रहें और ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का सेवन करते रहें। यह पसीने के माध्यम से निकलने वाले सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जैसे आवश्यक खनिजों की भरपाई करता है व साथ ही साथ थकान, कमजोरी और शरीर को तेजी से हाइड्रेट भी करता है। सखियों याद है ना, बचपन में जब हम बीमार हो जाते थे उल्टी दस्त होने पर यही ओआरएस का घोल ही तो हमें पिलाया जाता था। और सिर्फ हमें ही क्यों, प्रत्येक घर का सदस्य इसे ले सकता है क्योंकि यह शरीर को ठंडा जो रखता है। अब इसे किस तरह उपयोग में लेना चाहिए वो तो याद है ना आपको।

एक लीटर साफ पानी लेना है, उबला हुआ और फिर ठंडा किया हुआ हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर एक पैकेट ORS का ले लेना है और उस पानी में घोल कर रख देना है। इस मिश्रण को घूट घूट अगर हम दिन भर लेंगे ना तो तुरंत आराम मिलेगा। और हाँ सखियों, गर्मी से बच कर रहिए, यही सबसे बड़ी कुंजी है सेहत की फिलहाल इस तापमान के दौर में। और सखियों, आप लोग कैसी हैं ये बताइए। और आप लोग, ये आपको हम बता देते हैं कि सोमवार को हमारा कार्यक्रम रहेगा। हमारी सखी जिज्ञासा लेकर आ रही है चर्चा, सफलता की कुंजी धैर्य और निरंतर प्रयास। साथ ही आप सुनेंगे भेंटवार्ता सेहत का राज। और फिर से कार्यक्रम के अंत में आपको ले चलते हैं गीत संगीत की ओर।

संगीत की स्वर लहरियों के साथ ही आज के कार्यक्रम में संयोजन था हिमांशु नामा का, और अपनी रेडियो सखी विभा को यही दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम

अच्छी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे, पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे, आज वो कक्षा की दहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल गाय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, तिहार से ज्यादा का जरूरी है, सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का

सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूँ जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर ली। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं। मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है? क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्या आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

0: स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है, 1 किलोमीटर की दूरी।

दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूँ। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूँ, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूँ। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूँ मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का, UPI पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद ननोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना? फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकंठ यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकंठ नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकंठ सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी है, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकंठ बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई

रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने एक साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है। मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे। वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी। कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर। सरकार ने लंबा अवकाश दिया है। पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साय में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को

खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को हमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19

0: 1750 मुंबई 400091 मंच है गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091 आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
0: रंग तरंग
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा ये गीत। संगीत सपन जगमोहन का है।

देश में निकला होगा चांद और मधुर मन में गीत गाता होगा। सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में भरत व्यास का लिखा ये गीत। संगीत रमेश नायडू का है।

0: मयूर।
1: मन्ना डे के स्वर में आपने सुना ये गीत श्याम सागर का संगीत था। और अब सुनते हैं इंद्रानी रिजवी और राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। कलाम डॉक्टर बशीर बद्र का है और संगीत है बेनी सतमाकर का।

रिलीज से अब तक 25 बरस या 50 बरस का सफर पूरा कर चुकी हैं या कि आने वाले महीनों में पूरा कर लेंगी ये फिल्में, तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म लगान की। साल 2001 में रिलीज हुई ऐतिहासिक खेल ड्रामा फिल्म लगान, निर्माता आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। इस फिल्म की पृष्ठभूमि थी ब्रिटिश शासनकाल, जिसमें एक छोटे से गांव के लोग करों के बोझ से दबे हैं और उस पर सूखा पड़ जाता है। ऐसे में एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी उनके सामने क्रिकेट खेलने की शर्त रखता है। गाँव वालों के लिए ये बिल्कुल नया खेल है, उन्हें क्रिकेट सीखना भी होगा और जीत के लिए खेलना भी होगा। फिल्म की कहानी आशुतोष गोवारिकर ने लिखी थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने। चुनौतीपूर्ण कहानी को फिल्म का रूप देने में कई चुनौतियां आई और आखिरकार ये फिल्म 15 जून 2000 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। देखते ही देखते साल 2001 की सफलतम फिल्मों में शुमार होने लगा फिल्म लगान का और जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक खास मुकाम बनाया इस फिल्म ने। साथ ही मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद एकेडमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में नामांकित होने वाली फिल्म भी ये बन गई। गीत संगीत बहुत मधुर था, चलिए इस गीत की एक झलक सुनते हैं।

मायूसी के वक्त में करुण पुकार बनकर ऊपर वाले को पुकारने वाली ये प्रार्थना वाकई बहुत हिट हुई और साथ ही फिल्म लगान भी आज भी प्रासंगिक है और इसके गीत तो और भी धूम मचाते रहे हैं। फिल्म का संगीत दिया था ए आर रहमान ने, तो आइए अब सुनते हैं ये गाना।

अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आपने सुना और हमने जैसा कि बताया था एआर रहमान का संगीत था इस फिल्म में। और अब अगर हम बात करें तो बात हो रही है उस फिल्म की जो जून में ही रिलीज हुई थी 15 जून 2001 को और काफ़ी हिट हुई थी। ये फिल्म थी गदर। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित ये फिल्म शक्तिमान तलवार की कहानी पर आधारित थी जिसमें ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का ताना बाना बुना गया था। 1947 की पृष्ठभूमि में घटित होती घटनाओं के बीच तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ती है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है यही इस फिल्म में दिखाया गया था। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, लिलिट दुबे और उत्कर्ष शर्मा ने। 25 बरस पहले रिलीज हुई ये फिल्म, इसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं और साथ ही इसके गीत भी अक्सर गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

और ये जो गाना आपने सुना गदर फिल्म का उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की आवाजों में था, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था और उत्तम सिंह का संगीत था। 2001 से अब चलते हैं 1976 की ओर। फिल्म चरस, एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी का जादू सिर चढ़कर बोला और साथ में नजर आए अजीत, अमजद खान, अरुणा ईरानी और असरानी। नशे की तस्करी के काले पहलू को दर्शाती हुई ये फिल्म बहुत हिट रही और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये गाना।

ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी की आवाज शुरू में गीत के आपको सुनाई दी होगी और आनंद बख्शी का ही लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। 1976 की फिल्मों की बात हो रही है तो कई फिल्में इस साल रिलीज हुई थी, नागिन, लाला मजनू, कभी कभी, दस नंबरी, हेरा फेरी, चरस की तो हमने बात की अभी, फकीरा, कालीचरण, माँ, दो अनजाने, नहले पे दहला, शंकर दादा, बारूद, चिच्चोर, छोटी सी बात, ये सभी फिल्में काफ़ी हिट रही थी। हालांकि फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हुई थी लेकिन हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी भीड़ बटोरी थी। अब बात कर रहे हैं फिल्म बारूद की जो 2 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई थी। बारूद फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अशोक कुमार, ऋषि कपूर, शोमानंद, अजीत और रीना रॉय, और इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

बारूद फिल्म का ये गाना बना आज के मैटिनी शो की आखिरी पेशकश। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने के

संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

0: इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।
1: जब हम तुमको देखे हैं झेला, जब जब हम तुमको देखे हैं झेला, मन

0: शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: बता

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कित

यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत।

संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, बोल आनंद बख्शी के धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

नमस्कार। मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छांव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफर, जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाये होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो मैं बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं, और सच में हमारी और आपकी पसंद तो काफ़ी मिलती जुलती सी लग रही है। वैसे अगर आपका हमारी लिस्ट से मैच कर जाए गाना तो वाह वाह, और मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आपने जो बताया है, हो सकता है वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर ही लिए जाएं। तो अब आज की इबारत हम आपको बताए दे रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी जो फेसबुक पर नहीं देख पाए हैं। आज की इबारत है, जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सबने रखी हैं, और बहुत सारे ऐसी भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से, और उसके बाद बात सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी पर पहुंच गई। सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश ही नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेईमानी है। रही बात दिए की रोशनी की, तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने बाने बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। वाकई दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में जलता है, लेकिन रोशनी तो देता है, और बहुत सी बातें भी रोशनी देती हैं। तो दिए की बात चली है तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब, अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े धड़ल्ले से बत्ती जलाते हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है। वैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें जरूर बताएं। एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जलते सूरज और रोशनी के शब्द पर तो कई शब्द हो सकते, कई गाने हो सकते हैं। वाह क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि रोशनी सिर्फ अंधेरों को दूर करने का नाम नहीं, बल्कि ये उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, हर तरफ एक नई ऊर्जा फैल जाती है। रोशनी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में हमेशा अपने भीतर उम्मीद और अच्छाई की रोशनी जलाए रखनी चाहिए।

बिल्कुल सही। एक और श्रोता का संदेश है, आसमान से जब रोशनी आती है तो वो जर्रे जर्रे में बिखर जाती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। सुबह सवेरे की रोशनी कितनी सुखद होती है, मगर जो जो धूप चढ़ती है ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर देखें तो जीवन और रोशनी में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों में ही चुनौती होती है। रोशनी के साथ जुड़ा है धूप छांव का खेल, रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब तो परीक्षा है, ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट, रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए, कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती हैं। क्या बात कही। तो अब कार्यक्रम का ये गाना, बताइए किनके स्वरों में ये गाना है।

0: को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीजें और भी जलती थी और कई चीजों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील। एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है। और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी कांच की बोतल में थोड़ा सा घास लेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे। सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार जब हमें वो पुरानी चीजें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्कत करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांद ही ठंडा कर सकता है। वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं, उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक और संदेश है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है जो इंसान को निखारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक रोशनी में हमें चीजें साफ दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे और उजाले का क्रम अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल सामयिक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नजर आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं। दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञान परक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही पोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है, चिड़िया चहकती, कलियां महकती, फूल भी खिल जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। और हाँ ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी?

बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम सही जवाब आया। हमराज फिल्म का ये गाना सुनील दत्त साहब का नाम भी लिखा है हमारे कुछ साथियों ने। महेंद्र कपूर की आवाज, साहिर के बोल, रवि का संगीत। और बात कर रहे हैं हमारे साथी कांच से निर्मित लैंप, जिस पर कांच का ही कवर होता था फ्लेम को हवा से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोमैक्स लैंप भी चलते थे बचपन में हमारे घर में। एक और श्रोता ने कहा है, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरी रात में लालटेन काम आता था। मैंने छुट्टियों में दूर गांव ननिहाल में लालटेन के उजाले में दिन गुजारे हैं। इसके अलावा पड़ती, समई, चिमड़ी, दिवटी, पलिता, मशाल, दीपमाल, मोमबत्ती, ये भी साधन प्रकाश देते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता बता रही हैं कि लालटेन और केरोसिन के पहले महुआ के फल से तेल निकालकर घरों में उसी को जलाया जाता था। और याद किया है एक श्रोता ने उस जमाने को, जब कोई शादी या ऐसे कोई प्रसंग होते थे तो पेट्रोमैक्स चलाकर रोशनी की जाती थी। शीशे वाले लैंप की याद दिलाई है हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता बता रही हैं कि जी जलाई है और उसका शीशा भी साफ किया है। इन्होंने लालटेन की बात कही है और कितने शीशे तोड़े और डांट खाई पापा की। फिल्म हमराज का नाम भी इन्होंने पहचान लिया। एक और श्रोता ने कहा है कि गांव में पोस्टिंग के दौरान नियमित शाम को बिजली कटौती होती थी, तब हम लालटेन ही चलाते थे। शाम होते ही उसे साफ करके तैयार कर लेते थे। और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता हैं, उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर, मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे

लिखा है कि मैं जलता हूँ तब किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है। मगर मेरी किस्मत देख, जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया। उसकी तपिश में अब दर्द पिघलने लगा था। आसमान भी खामोश था, क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है, उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है, और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहता है, और अब सौर ऊर्जा का जमाना आया, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन है। आज हमें अपना सुरीला सफर गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना, माशा अल्लाह कहना तो माना।

0: सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज है और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो अगर सूरज दादा ना होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, ना पेड़ पौधे होते, ना हम होते, ना पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के जमाने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी, तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा है कि रोज रोज ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था, साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था, ज्यादातर घर के बड़े लोग ही इसे शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था, बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे, आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर।
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: सुहाने सुरीले सफर की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक जमाना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से

दूर है आँख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती है। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब

छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती हैं। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है।

पारसमणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रही हैं कि पहली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगल विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव

देव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया। मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना,

0: कब आता है
1: ये, कब हुआ ये, क्यों हुआ ये, क्या हुआ मुझे ये, कब हुआ ये, क्यों हुआ।
2: तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई, पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे, पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, कुछ इस तरह की इन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहां, चिरा कहां रोशनी कहां, ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमणि फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद।

गीता रॉय और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने जो गाना सुना उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं बताइए हमें। गाना मंजिल शब्द पर।

गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जय भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने। और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये

गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें ये भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।

सही जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं। श्रोता जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरी लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगतियों और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है जो अंतर मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई, या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया, याद हो तो बताएं। और अब ये गाना सुनिए और

हमारी जो बात थी कि क्या किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान सजाई या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई है, छोटी सी रोशनी अदा की है उसे, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्यक्षेत्र में कहा था, तुम टूर पे जाते हो, क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला, एक स्वयं तुम, अतः खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बात बिगड़ भी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बनेगी या बिगड़ेगी ये तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो गाना, क्या वो बात दूसरे को भली लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोर दा कहा है कि किशोर दा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है, कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज है, छोटी सी दुनिया की बात कर रही हैं ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाजें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज्यादा सुने गए, उन्हीं ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में

लालटेन दिखाई गई है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाज़ें पहचानिए किनकी है।

कई संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाजों में, बड़ी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था, सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें एक बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ, और उसमें इतनी गर्मी में रोज एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया है किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी, धर्म पत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया, यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाजत लेनी है। तो सुरीला सफर कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा का पावन पर्व। ये दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय में कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी धरती पर आने को तैयार हुई। जब गंगा धरती पर उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसको संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसीलिए इस दिन शिव जी की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा

करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा न केवल एक पवित्र नदी है, बल्कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। शांति और अच्छाई की प्रतीक गंगा नदी के बहते पानी में हजारों दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। देश के कई प्रदेशों में बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी में ये एक बेहद लोकप्रिय

ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की भी पवित्र नदियों में से एक कहलाती है। गंगा के निर्मल और पावन जल पर समय समय पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं और विज्ञान की हर कसौटी पर गंगा का जल भी खरा उतरा है। विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। इसका जल हमेशा ही पवित्र रहता है। लेकिन जिस प्रकार आजकल न सिर्फ गंगा नदी बल्कि अन्य बहुत सारी नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि जीवन काल और लोक संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की जननी भी।

दोस्तों, भारत को नदियों का देश माना जाता है। भारत में सिर्फ गंगा को ही नहीं बल्कि अन्य नदियों को भी माता के रूप में पूजा जाता है। ये सदा से ही हमारे लिए जीवनदायिनी रही है। नदियाँ धरती पर जीवन के लिए एक आशीर्वाद हैं। हमें अपने जीवन में गंगा नदी की बहती धारा से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार वो अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटें आने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना है। हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसे माँ मानने का हमारा व्यवहार सिर्फ उसकी पूजा मात्र तक ही सीमित है। असल व्यवहार में हमने गंगा को कचरा और मल ढोने वाली मालगाड़ी मान लिया है। इसके कारण गंगा का जल प्रदूषित होता है, वो अपना संतुलन भी खोती है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जल को दूषित करेंगे, जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा मन भी अशांत होगा और हमारा जीवन भी अशांत होगा। इसीलिए गंगा को प्रदूषण से बचाकर हम अपने मन को भी प्रसन्न और स्वस्थ रख सकते हैं। गंगा की सफाई और स्वच्छता में भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं। हमें गंगा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे संवारना होगा और उसे प्राथमिकता देनी होगी, ताकि गंगा का दोहन बंद हो सके और सही मायने में यही माँ गंगा की सच्ची सेवा और उपासना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का

0: मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज AI, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: वी हैव अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप।

0: स्वीडन ऑन डिफेंस।
1: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
0: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
2: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
2: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
3: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति

0: राष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

इशारा करके हाय गालों के उजाले हर जल गए जलने वाले परियों के नगर में लो मैं तो आप फंसा।

बोलो बोलो बोलो बोलो।

0: मैं कब से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ।
1: चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जय किशन ने।

ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहेगी मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

साथ हाजिर हूँ मैं राजुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म डाक के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनाथ गांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है, सुनना चाहते

रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: महाराष्ट्र के परभणी जिले में मलसोना गांव के प्रगतिशील किसान श्रीरंग देवबा लाड यानी दादा लाड को वर्ष 2026 के पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। दादा लाड जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दादा लाड, आपने खेती के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण के माध्यम से जो मिसाल कायम की है वो न केवल किसानों के लिए प्रेरणादायक है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने की सूचना मिली तो उस क्षण आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और इस प्रतिष्ठित उपलब्धि को आप अपने जीवन, अपने गांव और खेती के सफर के संदर्भ में किस तरह से देखते हैं?
2: ये तो पहली बार मैंने लातूर में था और दूरदर्शन के सामने बैठा था। जब पहले मैं न्यूज सुने तो मेरे पर मेरा भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे बारे में कह रहे कि और कोई दादा लाड है। तो तब तक कहीं सब अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जब फोन आने लगा तो लगा कि वो मेरे बारे में ही है। तो ये मिलने के बाद एक खुशी तो हो गई, इस बारे में खुशी ये बात की है, परंतु जब तक किसी बात को राजमान्यता नहीं मिलती तब तक कोई अंगीकार उसका नहीं करता। तो अभी तक तो कई सालों से कम 25 साल हो गए मैं टेक्निक किसानों के सामने रख रहा हूँ, परंतु जब ऐसे सरकार के माध्यम से वगैरह अखबारों से प्रसार माध्यमों से ये जब तंत्र ज्ञान किसानों के पास जाएगा तो उसको लगेगा अरे इसमें कुछ तो भी दम है और इसके कारण ये तंत्र को किसान स्वीकार

0: करेगा और ये तंत्र स्वीकारने का, जो किसानों का उपज बढ़ जाएंगे उससे मुझे बहुत खुशी होने वाली है। केवल वो ये कारण किसान अभी अपनाता है, इसका आनंद मुझे हुआ।
1: दादा लाड, कपास तकनीक विकसित करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप बताएंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
0: एक तो मैं किसान पुत्र हूँ और वो भी ऐसे किसान पुत्रों की जिनके घर का कपास पर पूरा अर्थक आत्मनिर्भर है, यानी कपास का पेड़ उनके लिए यानी तुलसी के जैसी श्रद्धा वाला पेड़ है। तो मैं हमेशा विचार करता था कि इसका उत्पन्न कैसा बढ़े और मैं उसके पास बैठता था और बैठने के बाद एक दिन ऐसा बैठा और उनके ढाली तरफ देखने लगा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि नीचे जो मोनोपोडियम जिनको कहती है वो बड़ी मोटी भी है और उसकी ऊंचाई मूल पौधे के बराबर है तो, और दूसरी जो सिम्पोडिया जिनको कहते हैं वो ऊपर से जमीन से समांतर चलती है, वो छोटी वाली भी होती है और दोनों में फर्क ऐसा, ये बड़ी और छोटी। बड़ी में तो डेंडो की संख्या बहुत कम लगती है, संख्या भी कम लगती है, उसका वेट भी बहुत कम होता है। और जो सिम्पोडिया रहती है वो बड़ी छोटी वाली होती है, उसको डेंडू की संख्या ज्यादा लगती है और उसका डेंडू का वेट भी अच्छा होता है। तो मैंने ऐसा किया कि यही कैसा आना जाता खेती डेंडू कम देती है और डेंडू का वेट भी कम है और वो सिम्पोडिया का जो डेंडू है वो ज्यादा देती है, उसका वेट भी ज्यादा है। और फिर मुझे लगा कि ये तो कुछ तो भी एक 68-75 ग्राम का कॉटन कम हो रहा है और दादालाल टेक्नी से गए तो 40% कपास का उत्पन्न घट जाएगा और मैं तो कोई शास्त्रज्ञ, मैं किसान हूं और फिर सुनने वाले किसान तो शास्त्रज्ञ के मानेंगे क्या मेरी मानेंगे, ऐसा एक बड़ा इसमें अड़सर था। और दूसरी बात तो फिर घर के लोगों को घर घर में तो एक बड़ी ढाली काटना, छोटे पार्ट भी कट गए फसल के तो किसान बहुत नाराज होता, वो तीन बड़ी बड़ी ढालियां काटना यानी पति को मान्य होगा है तो पत्नी आड़ आती थी, बेटे को मान्य होगा तो पिता आड़ आता था, ऐसा घर में का भी संघर्ष आता था। फिर मैंने उसमें एक किया कि संघर्ष मिटाने की कोशिश की है।
1: दादा लाड, आपकी तकनीक से किसानों को उत्पादन लागत या फिर मुनाफे के स्तर पर क्या क्या लाभ हुआ है उसके बारे में बताएं।
0: मेरे तंत्र से एक हो गया कि पहले किसान 6 क्विंटल कपास लेता था, 6-7 पकड़ के चलो 8 खाद ज्यादा डाले तो अभी 7,000 रुपए क्विंटल भाव पकड़ेंगे तो 8 क्विंटल था यानी 56,000 एक एकड़ में किसान को मिलता था। अभी मेरे टेक्निक से वो चल रहा है तो 15-20 क्विंटल तक जाता है तो अपन चलेंगे पकड़ेंगे 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक जाता है तो 1,20,000 का 7,000 रुपए पर क्विंटल पकड़ेंगे तो 1,40,000 रुपए, कहाँ पत्ती 40,000 कहाँ 1,40,000, ये बड़ा अंतर है, ये किसानों का आर्थिक बड़ा लाभ होता है।
1: दादा, कृषि क्षेत्र में नवाचार चाहने वाले युवा किसानों और शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: एक तो नई पीढ़ी खेती में आने में उतनी ये नहीं है, उनको लगन नहीं है खेती की और ये नहीं आएंगे तो उनका एक है कि खेती नहीं पूर्ति उपज नहीं आता, लेकिन अलग अलग फसल में केवल कपास का फसल आपके सामने आया है लेकिन ज्वार का भी मेरा टेक्निक है, गेहूं का भी, ये तंत्र से खेती करने लगे तो उपज बहुत बढ़ती है। और कौन सा युवा नहीं चाहता कि पैसा नहीं मिले, ये तंत्र से खेती करने का जर युवाओं को सिखाया तंत्र और उनको भी पैसा मिलने लगा तो सब युवा भी खेती की तरफ आ जाएंगे और खेती की मांग यही है कि पढ़े लिखे युवा खेती पे आ जाए, ये खेती की मांग है। और युवाओं को तो ये खात्री हो गई कि भाई इससे उपज अच्छी आती है और पैसा भी मिलता है और ये तंत्र से, मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ ये तंत्र से युवा खेती करने लगे तो कोई कमी पड़ेगी नहीं उनको पैसे की।
1: भविष्य में कृषि क्षेत्र में आप किन नए प्रयोगों या फिर योजनाओं पर काम करने का विचार कर रहे हैं?
0: अभी तो कैश क्रॉप पर मैंने काम किया तो इसमें मुझे मैंने प्रयोग किया है, कर्नाटक में इंडी गांव है वहां भी मैंने प्रयोग किया, जालना में भी। अभी मुझे मन में कि अनाज के पर जाएंगे, पैसा होना चाहिए अनाज भी होना चाहिए तो मराठवाड़े के पकड़े तो ज्वार अनाज है और गेहूं भी अनाज है तो यानी इधर तो गेहूं तो कभी कभी त्योहार के दिन खाते है, हर दिन का हर ज्वार का है भाकरी का है तो इसलिए यह अनाज उत्पन्न बढ़ने के लिए मुझे एक अच्छा पॉइंट मिला है उनका ज्वार का। मैंने बताया कि अभी ज्वार का उत्पन्न है किस

0: 6-7 कुंटल और 400 कड़वी लेता है।
1: दादा लाड जी, आपने अपने अनुभवों और खेती में किए गए नवाचारों के बारे में हमारे साथ बहुत सी बातें साझा की और प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि परभणी जिले या आपके गांव मलसोना और हम कह सकते कि देश भर के किसानों के लिए गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

3:20 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। और जी शनिवार की दोपहरी है और बहुत गर्म है मैं जानती हूँ, क्योंकि अभी स्टूडियो आई हूँ तो रास्ते को महसूस करती हुई आई हूँ। कोशिश कीजिए कि आप भी अगर बाहर निकलने को हैं तो पानी की बोतल और छतरी या टोपी कैप कुछ भी आप अपने साथ रखिए। गर्मी बहुत है लेकिन हमारी हिम्मत भी कुछ कम नहीं है। स्वागत आप सभी का एक बार फिर मन भावन प्रोग्राम में। शनिवार का दिन है, फुर्सत है आपके पास, अपनी पसंद का गीत हम तक पहुंचाइए। हम बड़े ही प्यार से आपके किसी अपने तक उस गीत को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। fmgoldairdelhi@gmail.com ये है जी पता जिस पर आपने अपनी फरमाइश हम तक पहुंचानी है। एक बार दोबारा सुन लें, fmgoldairdelhi@gmail.com। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। और जैसे कि हर बार की तरह होता है, पहला गीत मेरी फरमाइश का।

भाई अपने अंदाज में हम इतना तो कह सकते हैं कि गर्मी बहुत है, और अगर आपको बहुत जरूरी काम नहीं है तो फिलहाल तो कहीं ना जाएं आप, और अगर कहीं नहीं भी जा रहे हैं तो भी FM गोल्ड 100.1 आपके साथ है। मन भावन प्रोग्राम है जी, आपकी पसंद का प्रोग्राम है, आप अपनी पसंद अपनों तक पहुंचाते हैं। कुछ खास दिन आज है तो भी हमें मैसेज कीजिए, किसी से नाराज हैं तो भी हमें बताइए, हम कोई गीत उनके लिए आपकी तरफ से बजा देंगे जी, यहाँ प्ले कर देंगे, और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो उस गीत के माध्यम से उन तक पहुँच जाएंगी। बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं इंसान के, बहुत सारे मूड।

0: दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब डीजे इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मनचाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, मेरे अपराधों को मारने के लिए नहीं।
5: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पूर्व वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
5: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
5: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
5: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
4: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधारकर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
5: कुलपति तो अभी आश्रम में

0: भूमि भी उनका आश्रम है।
1: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधारकर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
2: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
0: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
2: फिर
1: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
0: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
2: शकुंतला
1: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
2: कुलपति कब लौटेंगे?
0: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है,
1: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
0: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
2: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
1: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं।
2: यहां तो
0: क्या रूप, क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
3: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
4: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
5: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
3: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
5: लताएं भी रूठती हैं क्या?
3: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
4: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
3: क्या समझी है तू?
4: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
3: वो कैसे?
4: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से?
3: अरे अनुसुईया, ओह, जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांध दी है इस प्रियंवदा ने।
4: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
3: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
4: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
3: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूँ?
4: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
3: परिहास ना कर।
4: अच्छा नहीं करती, बता।
3: देख, वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता।

0: जल्दी बड़ी हो गई। नहीं,
1: तेरी तरह
0: फिर परिहास।
1: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
0: हाँ बता।
1: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
0: धत, तेरा तो सिर घूम गया है।
1: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
0: अच्छा,
1: पिता कर्ण कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
2: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
0: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
3: अरे
0: भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग, अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
1: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
2: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
1: हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
0: अरे बचाओ, बचाओ ना।
4: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
5: पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
1: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
2: आपके आते ही भाग भी गया।
1: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजी ना।
2: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
5: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
1: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
2: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
5: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठे ना आप लोग भी।
0: ना, तुम लोग बैठो, मैं भी।
1: अब बैठ भी जा।
0: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
1: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
2: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
5: मैं अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
1: आज यदि पिता कर्ण यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
5: और ही ढंग से?
2: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
0: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
5: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
1: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
2: बहुत मीठा है इसका गला,
1: करती रहती है सबका भला,
2: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
1: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
2: कुलपति कर्णु की सबसे लाडली बिटिया है।
5: किंतु कुलपति कर्णु तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
1: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कर्णु ने इसका पालन पोषण किया है।
5: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
2: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
5: फिर
2: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया। मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
5: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
1: किंतु क्या आर्य?
5: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
1: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कर्ण तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
0: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
1: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
2: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
5: वृक्षों को सींचने का ऋण?
1: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
2: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
5: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
1: आप
5: ये लीजिए।
1: अंगूठी? किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
2: आपके पास ये अंगूठी?

0: यह अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
1: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
2: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
0: मैं आभारी हूँ।
3: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं। सावधान सावधान।
0: ओह, लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं।
2: हे भगवान, अब क्या होगा?
3: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्चृंखल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है।
1: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
2: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
0: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
2: चलो शकुंतला। हाँ हाँ चलो
0: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं। किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तुमसे ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है! आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं?
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे? अच्छा भला राज कार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा
0: है। भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त तो और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: है? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निलमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी वाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहाँ भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूँ मुनिजन।
5: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है।
4: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य।
5: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें।

0: रेवतक।
1: आज्ञा महाराज।
0: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूँ।
2: आगे की जय हो।
1: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
0: राजधानी से? वहाँ सब कुशल तो है?
1: वहाँ सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
0: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहाँ भेजो रेवतक।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: माता का संदेश।
3: महाराज की जय हो।
0: क्या आदेश है माता का?
3: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
0: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
3: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
0: एक काम हो सकता है माधव्य।
3: मैं यहाँ राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
0: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
3: मैं तुम्हारे स्थान पर?
0: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम्ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
3: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
0: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहाँ तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
3: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
0: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
3: कहिए महाराज।
0: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
3: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा।
0: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
3: जो आज्ञा महाराज।
0: जाओ युवराज।

0: प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवदा, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है। इसी से पूछकर देखे।
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं, तभी से
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।

0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
1: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
2: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
0: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
1: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
0: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
1: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
0: वो कैसे?
1: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
0: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
1: ए, मुझे एक उपाय सूझा है।
0: क्या?
1: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
0: फिर
1: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
0: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
1: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
2: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
0: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
2: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
0: क्या शकुंतला,
2: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
1: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
2: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हाँ, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
2: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
3: जरूर,
2: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
3: अन्ना जी के सिवा, वसंत देसाई के सिवाय। अच्छा।

0: अच्छा,
1: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं आया। अच्छा, मैंने
0: मंच पर आपने मंच पर दी
1: है। अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
0: जी जी
1: उनका नाम था।
0: हाँ, हाँ।
1: तो हम शो करते षण्मुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग। तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के, यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया। एकादी जागा समझो, एक हरकत है कुछ, तो आपके घर में नहीं आई, तो वसंत जी मतलब ठीक है आपको ऐसा आता है ना ऐसे गाओ चलेगा, अन्ना जी नहीं नहीं नहीं वो ऐसा ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा,
0: अन्ना जी मतलब
1: श्री रामचंद्र जी, तो षण्मुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे करने के लिए तकलीफ देने के लिए ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाइश दे रहे थे। तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दिया, फिर वो लोग चुप बैठ गए। अच्छा। एक छोटी गायिका थी मुझे याद है, नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था, वो पूरा रिकॉर्ड भी रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एन वी में।
0: अच्छा।
1: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
0: Okay.
1: एक समय काली पास सुर है तो खर्च के जो सुर होते हैं आवाज आती ही नहीं थी गले से, तो उन्होंने ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल। नहीं नहीं नहीं नहीं वो नहीं, तू घर जा सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना तू। वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस, ये दोनों में फर्क था जी और अन्ना जी।
0: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
1: बहुत,
0: उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये तो समझ में आता है। कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, बसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ।
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया।
0: अच्छा।
1: लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा आपके हुक्म। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा, अच्छा। आशा जी की बात निकली है, तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से, ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जी नहीं,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात।
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी, लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत।
0: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए, और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अंबा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ।
1: तो लोग एकदम ऐसे, अब आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको ज्यादा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, हाँ। और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम

0: पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका।
1: अच्छा,
0: तो एक बार सुलोलना चव्हाण जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसने बताया, वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला हमने वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कन्नड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था, मेरे पीछे बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता था, बहुत बड़ा कटआउट बनाया था, तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, पत्रिका बनाया था मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्तर और सुनहर यादव, वो मेरे एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे, तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही है, ऐसा लगता था, तो ऐसा भास होता था लोगों को। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होके आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ, मेरी मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, तो बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ
1: अच्छा।
0: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा, लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने ऐसा गाना, फिर वो शांत हो गया आदमी।
1: श्रोताओं की बात निकली है
0: जी,
1: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं, हर शहर का श्रोता अलग होता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं
1: जी,
0: एक साल लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत फिर लोग हा करके सामने सामने ये करते हैं, फिर दो गाने के बाद एक कुंडा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा के नहीं आती बात। और जहां तक पहली बार भी गए किसी शहर में किसी गांव में छोटे से गांव में भी, तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए, तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
1: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहां के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है
0: फर्क? नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे, अच्छा, ये है अच्छा लोग, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं तो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे,
1: पसंद आता।
0: पहला प्रमिला भी अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
0: और रफी साहब का गाना एक दुगाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको, रफी साहब बोले शुरू करते थे
1: जी।

0: गया फिर जानी इसकी अरे परसों भी रहेगा अरे तरसों क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था मजा आता था लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं ये गाना सुन लेते हैं
0: जरूर

0: विमला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी,
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
0: हाँ,
1: ये होता है, ये ठपका दोष आता है, इसलिए वो अगर होता था, लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, मैं उसमें ही खुश थी। और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो ये सब नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मोरक्ष को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो बस वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी है, दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो तो
1: जरूर,
0: सवाल ही नहीं, बिल्कुल बहुत सुंदर होता है, क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग है और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी

0: लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी हाँ। ज्यादा नाम मुझे याद नहीं,
1: प्राइवेट शोज भी होते,
0: प्राइवेट शोज भी होते थे
1: कंपनी के,
0: होते
1: लिए
0: थे कंपनी के लिए किसी हाँ, हाँ। कंपनी के लिए बहुत शो हुए।
1: अच्छा,
0: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल स्टेट मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी
1: जी, जी।
0: बहुत सारी कंपनी उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे।
1: अच्छा,
0: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
1: जी जी, प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए हैं।
0: हाँ,
1: सबका अपना अलग अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है। ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया। सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के प्रस्तुत, वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, किन कंपोजिशंस में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
0: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
1: अच्छा,
0: अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है।
1: अच्छा,
0: मेरी राय होगी, वो शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा
1: जी,
0: इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ऐसा चिल्लाते थे जरा भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी।
1: अच्छा,
0: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचेरे गाने
1: जी, जी।
0: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुखे सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो नंदूरवार करके गांव है छोटा सा दुलिया के पास
1: जी।
0: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, आमिर खान साहब की गाई हुई है वो, तो लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है मुकरी, तो उतना भी उसको मालूम पड़ा है, म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
1: तो श्रोताओं
0: पुराने जो गाने बराबर उनको ए करके चिल्ला देते वहां से।
1: क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है,
0: उनके दिमाग में
1: वैसा वो सुनना चाहते हैं।
0: अभी ये गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टरा टरा टरा, वो आना ही चाहिए ऊपर, ये तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को
1: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
0: जी,
1: उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
0: नहीं है, सही बात,
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: एक तो रिहर्सल, बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वो ही, और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए
1: जी।
0: तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का। तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था सालों साल तक
1: जी।
0: अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, तो शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज चार साल से, तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करे, तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
1: अच्छा
0: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी, लेकिन काल के हिसाब से एकदम से बदली हो जाएगा
1: जी।
0: तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो
1: जी
0: बस, दूसरी रिहर्सल नहीं, हाँ एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी होगा। तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी दो तीन थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है, तो बहुत

0: शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी,
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है।
1: अच्छा।
0: तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी।
1: हाँ।
0: लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल, तो एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको शो को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मंड के बोलूंगी, विनय मंड के
1: विनय मंड
0: विनय मंड के
1: जी जी मैं श्रोताओं को

0: ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
1: विनय मन के बोलूंगी, विनय मन के,
0: विनय मन,
1: विनय मन के।
0: जी जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मानके जी की आवाज हम सुनते हैं।
1: जी, जी,
0: तो
1: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे। हाँ, बहुत सारे जिंगल गाए उसने। और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्म होता है, वो था। बहुत सारे हल्के बुल्के बातें भी करने का बीच में मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे
0: जी,
1: नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के लिए।
0: अच्छा।
1: तो ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा। फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा
0: बहुत अच्छा।
1: फिर एक गाना था अन्ना जी का, बोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की नारी, नए जमाने की नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली,
0: हाँ।
1: तो ये बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता,
0: मस्ती के मूड में,
1: मस्ती के
0: हमेशा रहते थे।

0: कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसको। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब था, अच्छा गाता।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए हैं पड़वा के शो, वसंत दादा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था और तो मैं किसी को बुलाती थी
1: जी।
0: या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी, हाँ। प्रभु कुंज में, तो उसके सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो बाहर गाँव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं आई। फिर मुझे पूछते कि कसे भाव तुम्हें अशे प्रोग्राम करता है, उड़े प्रवास कराएचा, पर गायला उभा रहाएचा, कस करता है, मतलब अभी आदत हो गई है, हो जाता है मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है, उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए हैं,
0: हाँ जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: तो वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ाला पिकलाया अम्बा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल होना
1: बहुत ही जरूरी था, मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे और फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: मसला बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, नमुना बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, हो पाहुन पाहुना।

0: Pauna, Pauna, Pauna Zaratamba, oh, Pauna Zaratamba, Arghe, Padala Piklai Amba, Alavai Padala Piklai Am, Honitabag Padala Piklai Amba. कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी.
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पाडाल पिकलाई मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे.
1: अच्छा.
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या कर रहे हैं आप, अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से. फिर जोर से एकदम जो जोर लगा के अम्बा आता था सामने से, मजा आता था. उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया.
1: वाह वाह वाह.
0: उनको भी शायद ताला.
1: जी प्रमिला जी, आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर
0: हाँ
1: सुनाया करती
0: थी. हाँ.
1: अपने लिस्ट में
0: कनाडा गाना सुनाती हूँ.
1: जी जी जरूर.
0: मेरी लड़की बैठे ना तो खुश हो जाएंगे.

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई क्या,
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ हाँ,

0: ये गाना बहुत उधरे ज्यादा। और उधर गुजरात की एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे।
1: हाँ।
0: तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब लोग काठियावाड़ी नहीं वो झिबला पहनते हैं,
1: हाँ, हाँ,
0: शॉर्ट
1: हाँ, हाँ।
0: वो पहन वाला बैठे थे तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बेन नवो पिक्चर लो गाएं गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
1: 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई,
0: हाँ
1: होगी, लिस्ट बनाई होगी,
0: हाँ जी,
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: तब की जो उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें।
1: अच्छा?
0: जो लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा,
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ?
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर।
1: हाँ, हाँ,
0: लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरे पसंद के या लोगों की पसंद के पहले से थे।
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, पाड़ाला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा।
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वही गाने चाहिए लोगों को।
1: वाह वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन करके। प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो कौन सा गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, रूपर वाले का ये कर्म है कि आज आप यहाँ पर
1: पधारी मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।

0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

FM 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नई सोच की नई कहानी लेकर आए हैं, दिलों में उम्मीदों की रवानी लेकर आए हैं।
1: जो जोड़ दे हर युवा को अपने सपनों से, हम युवाणी में वही जिंदगानी लेकर आए हैं।
0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युवाणी में, जहां आज आपके साथ है आपके दो रेडियो दोस्त। मैं हूं निकिता।
1: और मैं हूं राहुल। और हम दोनों की तरफ से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निकिता, आज मैं सोच रहा था कि जिंदगी में सबसे तेज क्या भागता है?
0: समय?
1: नो।
0: इंटरनेट?
1: नहीं।
0: तो फिर क्या?
1: छुट्टी का दिन। अरे पता ही नहीं चलता कब शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है।
0: बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात कही। और जैसे कि हम देखते हैं ना कि जैसे हमारा वीकेंड खत्म होता है, मंडे फिर से आता है, और जब मंडे को सुबह का अलार्म बजता है ना, तो वो ऐसा लगता है ना जैसे किसी फिल्म का विलन दोबारा से वापस आ गया हो।
1: बिल्कुल सही कहा। और सच में देखो ना, कल संडे है, पर संडे को मस्ती से ज्यादा ना मुझे टेंशन होती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे ऐसे टेंशन होती है कि यार कल से वापस अपना वही रूटीन स्टार्ट होगा और कल से वापस से वही शेड्यूल। चाहे दिन कितना भी बिजी हो ना, लेकिन मुझे एक चीज लगता है ना कि अगर चेहरे पर मुस्कान हो तो सब कुछ बहुत आसान लगने लग जाता है।
0: मतलब मेरा भी ये मानना है कि अगर हम चेहरे पे मुस्कान रख के अपना कोई भी काम शुरू करें, अच्छे से ना भी हो ना वो, तब भी हमें एक सुकून होता है दिल में कि कैसे ना कैसे आगे जाके ये ठीक हो ही जाएगा।

0: और अरे मैं तो ये रोज करता हूँ, खास करके ना जब कोई मुश्किल सवाल मेरे सामने होता है तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं खुद से बात करने लगता हूँ। और मैं सबसे अच्छे जवाब भी मैं तभी पाता हूँ ना जब मैं खुद से क्वेश्चंस करता हूँ।
1: बिल्कुल, ये काफी अच्छी बात कही तुमने, क्योंकि आज की भागदौड़ में हम क्या देखते हैं कि हम हर किसी को टाइम देते हैं, हम हमारे करियर को टाइम देते हैं, हम
0: बिल्कुल
1: सबको
0: देते
1: टाइम
0: हैं।
1: देते हैं, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, स्वयं को सुनना, खुद को जानना, खुद के बारे में सोचना, ये तो शायद हम कहीं पीछे ही छोड़ आते
0: छोड़
1: हैं।
0: आते हैं, और इसलिए दोस्तों थोड़ा वक्त हम कहते हैं कि आप अपने लिए भी निकालिए, अपने सपनों के लिए, अपने टैलेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए, जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है उसके लिए आप थोड़ा सा समय जरूर निकालिए।
1: बिल्कुल, और इसी खुशी को दोगुना करने आ गया है आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, जहां हर बात में है दोस्ती और हर पल में है ऊर्जा।
0: तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होने वाला है मनोरंजन, संगीत और शानदार बातों का सफर। फिलहाल समय है एक गीत संगीत की दुनिया में चलने का, जहां सुनाएंगे हम आपको आज की शाम का पहला नगमा।

0: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज के इस कार्यक्रम में आपके दो रेडियो दोस्त आपके साथ हैं। मैं हूं निकिता
1: और मैं हूं राहुल।
0: राहुल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आजकल लोग चेहरे से ज्यादा एक दूसरे की जिंदगी देखने लगे हैं?
1: क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया।
0: मतलब ये कि अब देखो, किसी का नया फोन दिख जाए, किसी के अच्छे मार्क्स आ जाएं, या फिर सोशल मीडिया पर उसकी खुश तस्वीरें दिख जाए, तो कई बार लोग खुश होने की बजाय अक्सर गलत नहीं सोचने लगते कि इसके पास इतना सब कैसे आया, या फिर मेरे पास ये सब क्यों नहीं है, है ना?
1: क्या बात है, कितना अच्छा मतलब सोचा है तुमने। बिल्कुल सही कहा ये कि पहले एक छोटा सा भी नेगेटिव थॉट जब हमारे मन में आता था ना, और फिर वही हमारे कंपैरिजन बन जाता था, मुझे ऐसा लगता है। और उसी कंपैरिजन से ना अब भी सेम वही चीजें होती है, और उसी कंपैरिजन से ना अब जलन, ईर्ष्या और जलन से दुर्भावना, ये सब चीजें ना इंसान में बहुत ज्यादा, बहुत कॉमन ये चीज हो गई है, देखने को हर इंसान में मिल रही है।
0: हम ये कह सकते हैं ना कि दूसरों के प्रति जो दुर्भावना है वो यहीं से जन्म लेती है। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है, ये जो कुविचार होते हैं हमारे मन में ना, ये कभी भी अचानक नहीं आते हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे मन में जगह बनाते हैं। जैसे कि एक कमरा है, कमरे में रोज थोड़ी थोड़ी धूल जमा होती रहती है, और एक दिन जब हम देखते हैं तो पूरा कमरा गंदे लगने लगता है।
1: ये एग्जांपल तो सच में कमाल का है निकिता, जो कितनी आसानी से इसे समझा पा रहा है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हमारे मन के साथ भी होता है। अगर हम रोज गुस्सा करें, नफरत और जलन अपने अंदर रखें, दूसरों की बुराई सुनते रहें, तो मन मुझे लगता है ना बहुत भारी सा और काफी परेशान सा रहने लगता है।
0: और कई बार तो शायद हम ये समझ भी नहीं पाते हैं कि ये सब जो फीलिंग्स हमारे अंदर चल रही है ये है क्या,
1: ये हो क्यों रही है।
0: हाँ, मुश्किलों से हम शायद समझ भी लें तो इन्हें दूर नहीं कर पाते हैं। और अगर हम देखें ना तो कई लोग तो बेवजह, बिना वजह दूसरों की खुशी से परेशान हो जाते हैं।
1: बिल्कुल होते हैं, लेकिन असली समझदारी पता है क्या है, दूसरों से जलने की जगह ना उनसे सीखना। ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि दूसरों की रोशनी बुझाने से अच्छा हम अपना अंधेरा दूर नहीं कर सकते। हम ऐसा सोचते हैं अगर, तो हम बिल्कुल गलत हैं इस चीज में, लेकिन खुद का एक अगर दीपक बन जाए ना, तो जिंदगी में सच में ना चमक उठती है।
0: बिल्कुल, हमारी जिंदगी ऐसा लगता है ना कि मतलब सितारों से जगमगा गई हो। और यहीं पर ना एक बात नोटिस की तुमने
1: क्या?
0: कि कुछ लोगों में मैंने ऐसा देखा है कि अगर उनके सामने किसी और की तारीफ भी हो जाए ना, तो उनके मन में पता नहीं क्यों ऐसा आने लगता है कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसकी तारीफ की जा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
0: और अगर दुर्भावना अगर हम देख रहे हैं ना, तो चीजें जब हम नुकसान की तरफ देखने जाते हैं ना, तो नुकसान काफी ज्यादा होते हैं किसी भी चीज के। तो अब इसमें नुकसान क्या है? सबसे पहले तो इंसान जो है उसकी शांति चली जाती है, वो भूल जाता है कि हमारे जीवन में शांति, सुख और मतलब ये भी चीजें हैं, जलन, ईर्ष्या इनके अलावा। और अब देखो ना, हर टाइम अगर मान लो कि मैं गुस्सा करती रहूं या हर बात पे चिढ़ती रहूं, तुम भी अपने आप पे लेके देख सकते हो कि तुम भी मतलब देखो कि हर वक्त चिढ़ना, परेशान रहना, दूसरों की अगर कोई बुराई कर रहा है तो वही सुनते रहना, डे बाय डे अगर हम सुन रहे हैं, तो ये सब चीजें ना हमारे अंदर बहुत थकान सी लेकर
1: हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और बिल्कुल वैसे ही मतलब इसको भी हम एग्जांपल से अगर देखें ना, तो आज अगर हमारा मोबाइल फोन है, नॉर्मल सा फोन है, अगर इसमें बहुत सारे वायरस आ जाएंगे तो धीरे धीरे हैंग होता है, परेशान करता है, प्रॉब्लम करता है।
0: बिल्कुल।
1: और वैसे ही हमारी बॉडी है, हमारा शरीर,
0: अगर हम उस मोबाइल से परेशान हो जाते हैं तो क्या हम खुद से परेशान नहीं होंगे? लाइफ के गोल्स हमारे मतलब हमें क्लियर नहीं दिखेंगे, लाइफ में करना क्या है,

0: चीजों को कैसे समझना है, कैसे हैंडल करना है, तो ये सब चीजें हमारे हाथ से उसी वक्त
1: और
0: चली
1: मुझे ऐसा लगता है ना, मोबाइल को तो हम लोग जैसे मोबाइल को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं ना, वैसे हमारी बॉडी को भी हम लोग ही ऑपरेट कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, और इसीलिए तो ना मतलब जैसे मोबाइल को हम क्लीन करते हैं वैसे हमारे मन को भी क्लीन अप की जरूरत
1: है, बहुत जरूरत है। और लेकिन अब एक सवाल ये भी है ना निकिता, कि कुविचारों से बचा कैसे जाए?
0: बिल्कुल, इसमें ना छोटे छोटे टिप्स हमारी बहुत मदद कर सकते हैं।
1: जैसे कि
0: सुबह उठते ही अच्छी अच्छी बातें सोचो, अपने लिए अच्छा अच्छा सोचो, मैं काफी अच्छा हूँ, मैं ये लाइफ में नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ये जरूर कर सकता हूँ। बिल्कुल, हर समय ना जैसे हम कंपेयर करते रहते हैं ना कि उसके पास अच्छा है मेरे पास नहीं है, वो मेरे जैसा है या फिर मुझसे बेहतर है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। सोशल मीडिया जो हम रेगुलर यूज करते हैं उसमें हम हर चीज कहीं ना कहीं सच मानते हैं, तो प्लीज ये चीजों को सच ना माने। अच्छे अच्छे लोगों के साथ आप समय बिताएं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी बातें पढ़ें और सुने, और यही सब चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं।
1: और एक सबसे जरूरी बात मुझे लगता है ना कि अपने मन की बातों को दबाने की बजाय ना किसी अपने से शेयर जरूर करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि
1: अभी इंसान ना क्या होता जा रहा है ना, अंदर ही अंदर अपने आप में डिप्रेस्ड होता जा रहा है चीजों को लेके, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपनी चीजों को।
0: और दुनिया ऐसी हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि अब हम क्या हो चुके हैं, अपने आप को ना सेपरेट कर लिया है हमने कहीं ना कहीं। हम इस दायरे के बाहर अपने मन की कोई बात नहीं कहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कोई भी व्यक्ति हुआ, अब हमने एक एरिया बना लिया है अपना कि ये वाली बात है मुझे इस इंसान से नहीं कहनी है, या फिर ये कोई बात है मुझे इस इंसान को नहीं बतानी है,
1: वो क्या सोचेगा।
0: लेकिन कई बार ऐसी जो फीलिंग्स होती है ना, अगर हम शेयर करते हैं ना तो काफी हल्का भी महसूस
1: करते हैं। और अब मुझे लगता है बहुत आगे बढ़ चुकी है, मतलब ना जनरेशन जो है वो काफी ब्रॉड माइंडेड हो चुकी है कि वो आपके बारे में कुछ नहीं सोचे, क्योंकि अभी के टाइम पे इतना समय है ही नहीं,
0: किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके बारे में या गलत सोचे या अच्छा सोचे बुरा सोचे। तो ये सब धारणाएं जो है ना कहीं ना कहीं हम ही अपने मन में बना लेते हैं। और एक बहुत प्यारी आदत आपकी ये भी हो सकती है दोस्तों, कि आप क्या कर सकते हैं हर दिन किसी इंसान की, आपके आसपास आपको जो भी इंसान दिख रहा है उस इंसान की अच्छाइयां जरूर देखें। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी नजर जो है वो कमियों से हटकर अच्छाइयों पर जाने लगेगी।
1: और दोस्तों इसमें आपका भी फायदा है, क्योंकि जिस मन में अच्छे विचार रहते हैं ना दोस्तों, वहीं रिश्तों में मिठास रहती है, और जहां मिठास होती है वहीं असली खुशी बसती है।
0: तो दोस्तों अगर कभी मन में आप किसी के लिए गलत भावना गलती से भी आ जाती है, तो बस आप एक पल रुकिए और वहाँ ये सोचिए कि क्या ये विचार आपको एक बेहतर इंसान बना पा रहा है।
1: अगर जवाब आपको नहीं मिलता है दोस्तों, तो उस विचार को वहीं रोक दीजिए, क्योंकि साफ दिल, अच्छी सोच और सकारात्मक नजरिया इंसान की सबसे खूबसूरत पहचान होती है।
0: तो मुझे लगता है ना राहुल, कि हमें ना एक चीज अपनानी चाहिए आज से, और मैं ये हमारे सभी दोस्तों से भी कहना चाहूंगी कि दोस्तों अपने मन को अच्छा रखिए, अच्छे विचारों से भरा हुआ रखिए और अच्छे विचारों का घर बनाइए, क्योंकि अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे, अच्छी अच्छी भावनाएं होंगी, तो आपको दुनिया वैसे ही अच्छी लगेगी। और कई बार तुमने सुना भी होगा राहुल, कि जैसा मतलब हम सोचते हैं ना, दुनिया हमें वैसी ही लगने लगती है।
1: बिल्कुल लगती है, और जैसा हमारा दिमाग जैसा रिएक्ट करता है ना, हमारी बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करती है।
0: हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, मतलब सब कुछ हमारा, ये कह सकते हैं हम कि आसपास का हमारा एटमॉस्फेयर ही हम वैसा बना लेते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा आसपास का वातावरण बनेगा। तो दोस्तों प्लीज कुविचारों और दुर्भावना से दूर रहिए और अपने आप को अच्छे विचारों से भरपूर रखिए।
1: फिलहाल इन विचारों को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए ले चलते हैं एक बार फिर से हमारे दोस्तों को गीत संगीत की दुनिया में।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: राहुल, कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ हमारे आसपास की जो जगह है वो सिर्फ जगह नहीं होती, वो अपने भीतर कई सदियों की आवाजें छुपाए बैठी होती है?
1: हाँ, क्योंकि ऐसी कई जगह हैं, हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, हमारे गढ़ हैं, हमारे बहुत सारे किले हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा संजोए हुए बहुत सारे ऐसे नगर हैं, और भी बहुत कुछ है।
0: अब हमारे कोटा में ही देख लो ना, जो हमारा गढ़ पैलेस है, कितना खूबसूरत है ना,
1: बहुत
0: मतलब
1: ज्यादा।
0: कितना उसे संजोया हुआ है, कितनी मेहनत से,
1: बिल्कुल
0: मतलब कितनी क्रिएटिविटी यूज करके उसे बनाया गया होगा। जब भी
1: बहुत
0: मतलब मैं वहां से गुजरती हूँ, मैं देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि बनाने वालों ने कितनी नाजों से इसे बनाया होगा।
1: हाँ, इसका एग्जाम्पल अभीड़ा महल,
0: बिल्कुल
1: बहुत,
0: बिल्कुल,
1: वो भी बहुत ही
0: और भी
1: अच्छी,
0: बहुत कुछ हमारे
1: बहुत
0: कोटा
1: कुछ
0: में
1: कोटा
0: है।
1: में ऐसी इमारतें, ऐसी विरासतें हैं जो
0: मंदिर देख
1: हमारी,
0: लो, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक चीजें हैं ना हमारी, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव भी महसूस करते हैं हम उनसे, और कई कहानियां, कई उनके किस्से,
1: किससे
0: वो कहीं ना हमें आवाज देते रहते हैं कि आओ हमें सुनो, महसूस करो। और ऐसी एक
1: बिल्कुल
0: जगह है बलिराजगढ़ का किला,
1: अच्छा
0: जहां खामोश मिट्टी दिखाई देती है, लेकिन कभी वहां पे ना पूरी एक सभ्यता सांस लेती थी।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो आज युवानी के सफर में हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार के मधुबनी जिले में स्थित उस ऐतिहासिक धरोहर की ओर, जिसे लोग राजा बलि का गढ़ भी कहते थे।
0: बिल्कुल, और मधुबनी शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित ये प्राचीन स्थल करीब 176 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, और चारों ओर मिट्टी की विशाल दीवारें जो हैं, ऊंचे टीले हैं ये, और दूर दूर तक फैली हुई खामोशी। ऐसा लगता है ना राहुल, जैसे इतिहास आज भी वहां पे कहीं ना कहीं पहरा दे रहा हो।
1: बिल्कुल, और इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि बलिराजगढ़ का जो संबंध है ना, ये प्राचीन मिथिला सभ्यता से माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही मिथिला है जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और कुछ विद्वानों का मानना है ना कि ये स्थान कभी मिथिला राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा।
0: वैसे ना राहुल, जो हम मिथिला शैली की जो कह सकते हैं पेंटिंग्स हैं, वो
1: बहुत
0: भी
1: ही
0: काफी
1: सुंदर।
0: फेमस है। और अगर यहाँ की हम बात करें ना, तो कहते हैं लगभग 2000 साल पहले यहाँ एक सुव्यवस्थित नगर बसता था, जहाँ पे लोग रहते थे, व्यापार होता था, संस्कृति और कला फलती फूलती थी।
1: सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, ये सोचिए दोस्तों, आज जहाँ सिर्फ खंडर है, कभी वहीं जीवन की रौनक रही होगी, घोड़ों की वहां पर आवाजें आती होगी, लोगों की जो चेहरे

0: पहल होती होगी और राजमहल की जो गतिविधियां होती होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगता है ये सब कुछ सुनने में।
1: सुनने में इतना अच्छा लगता है, तो सोचो उस समय जब ये शोभा वहां की रही होगी तो कितना
0: कितना अच्छा
1: खूबसूरत नजारा वो होता होगा। और इस स्थान की सबसे खास बात ये मानी जाती है कि इसकी जो कहानियां है ना, सिर्फ किंवदंतियों तक सीमित नहीं है। यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि हमारे ASI ने यहाँ कई बार सर्वे किया है और खुदाई भी की है।
0: और दोस्तों, जब मिट्टी हटाई गई तो इतिहास खुद बाहर आने लगा। यहाँ से प्राचीन मिट्टी के बर्तन, सिक्के, दीवारों के अवशेष और कई पुरातात्विक वस्तुएं मिली।
1: और इन खोजों ने यह साबित किया कि बलिराजगढ़ कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक विकसित प्राचीन नगर था।
0: और दोस्तों, इसी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ASI ने इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया है, ताकि आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उनको अपनी इस धरोहर के बारे में जानने का मौका मिले और वो इस धरोहर को जान सके।
1: जैसा तुमने बताया ना कि वहाँ पे ASI ने जब उत्खनन किया उसके दौरान जितनी भी वस्तुएं मिली, तो उन वस्तुओं ने कहीं ना कहीं जो इतिहासकार हैं हमारे उनको काफी चौंकाया, क्योंकि पुरानी ईंटों के जो ढांचे थे, मिट्टी के बर्तन थे और निर्माण शैली जिस प्रकार की थी, उन्हें देखकर ये पता लगता है कि वहां की जो सभ्यता थी ना वो उस समय में भी काफी उन्नत थी। मतलब जैसे कह सकते हैं हम कि डेवलप थी और काफी सुविधाएं, सुख सुविधाएं वहां पे रही होगी उस समय पे, और जैसे प्राचीन दीवारें भी वहां पे थी, तो काफी मतलब ऐसा लगता है कि बहुत फैसिलिटी टाइप जो नगर बसाया गया था वो काफी अच्छा रहा।
0: और इन दीवारों के बारे में तो मैंने ऐसा सुना है ना कि कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है ना कि ये जो दीवारें थी ना, ये सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थी, और उस समय भी जो नगर की रक्षा के लिए मजबूत योजनाएं बनाई जाती थी उनका भी एक अहम हिस्सा हुआ करती थी।
1: जैसे कि आज हम देखते हैं कि हम अपने आसपास घर की सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ बाउंड्रीज बनाते हैं, तो ये जो फैसिलिटी की उस टाइम से चली आ रही, मतलब उस टाइम पे भी ऐसी व्यवस्था थी कि ये लोग सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची दीवारें
0: और वो आज तक फॉलो होती
1: फॉलो हो रही है। और यही कारण है कि जो बलिराज गढ़ है दोस्तों, वो आज भी इतिहास और पुरातत्व के छात्रों के लिए शोध का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है।
0: लेकिन एक सच ये भी है कि समय के साथ ये धरोहर जो है ना वो उपेक्षा का शिकार भी होती जा रही है।
1: बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है रख रखाव के अभाव में, या फिर कहीं ना कहीं जो वो कह सकते हैं कि उनको देखभाल अच्छी नहीं मिली,
0: नहीं
1: तो
0: मिल पा रही
1: उसके है। कारण यहाँ के कई हिस्से खंडहर बन चुके हैं। और हालांकि संरक्षण का काम जारी है, लेकिन अभी भी इस ऐतिहासिक स्थल को मुझे लगता है कि और बहुत ज्यादा
0: देखभाल की जरूरत है।
1: है,
0: क्योंकि अगर देखा जाए ना तो हमने अपनी विरासत को नहीं संभाला तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में ही इतिहास पढ़ेगी, मतलब वो सिर्फ महसूस कर पाएगी कि हाँ यहाँ ये हुआ करता था।
1: हाँ, मतलब कैसे वो लोग सुनेंगे ना इस चीज को कि एक समय की बात है जब वहाँ पे ये किला हुआ करता था, वहाँ पे ये चीजें हुआ करती,
0: मतलब आज जो चीजें हम साक्ष्य हैं, जिनके
1: साक्ष्य हैं, हम आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छूकर भी देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज नहीं हुई ना तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को तो ये तो देखने में ही नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल नहीं मिलेगा,
1: क्योंकि एक तरीके से जो ये बलिराजगढ़ है ना, ये हमें सिखाता भी है। और क्या सिखाता है कि इतिहास जो है वो सिर्फ बीते हुए समय की कहानियां नहीं होती है बल्कि हमारी जड़ों की पहचान भी होती है।
0: बिल्कुल होती है, और जो अपनी पहचान को सहेज कर रखते हैं ना वही भविष्य को मजबूत बना पाते हैं।
1: तो दोस्तों, अब मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि अगर कभी आप बिहार के मधुबनी में जाएं, आपको कभी मौका मिले जाने का, तो इस ऐतिहासिक धरोहर को जरूर देखिए, क्योंकि जो यहाँ की मिट्टी है ना वो आज भी सदियों पुरानी कहानियों को कहती हुई नजर आती है।
0: और शायद आज भी ये दीवारें चुपचाप इंतजार कर रही है दोस्तों कि कोई आए, उनकी कहानी सुने और दुनिया तक पहुंचाए।
1: तो आज मुझे लगता है राहुल कि ये जो जितने भी हम बातें तो कर लेते हैं कि हमें संरक्षण करना चाहिए, लेकिन जब हम वहां जाते हैं ना तो हमें ये फॉलो भी करने चाहिए रूल्स।
0: बिल्कुल फॉलो करने
1: जैसे
0: चाहिए।
1: कि हमें वहां पे कुछ गंदगी नहीं फैलानी है, एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये जो धरोहर है अगर हम संजोएंगे तो ही ये आगे तक हमारी पीढ़ियों तक चलेगी। और मुझे लगता है ना कि अब काफी लंबा इंतजार हमारे श्रोताओं के लिए हो चुका है, तो उन्हें एक
0: बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ कि समय हो चला है, बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे।

0: अच्छा दोस्तों, हमने हमारे कार्यक्रम का आधा सफर तय कर लिया है और ये आधा सफर तय करने के बाद मुझे लगता है राहुल, हमें हमारे श्रोताओं को हमारे नॉलेज कॉर्नर की तरफ लेकर चलना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो बिना देर किए ले चलते हैं हमारे नॉलेज कॉर्नर की तरफ,
0: जहां आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद खूबसूरत और खास राज्य की, यानी कि सिक्किम की, क्योंकि आज है सिक्किम दिवस।
1: बिल्कुल दोस्तों, हर साल 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आप जानते हैं, इसी दिन सन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था।
0: दोस्तों सिक्किम छोटा जरूर है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और शांति पूरे देश में प्रसिद्ध है। बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल, रंग बिरंगे मठ, यहाँ की शान भी है और पहचान भी है।
1: निकिता एक चीज भूल गई,
0: क्या?
1: दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिनको हमने किताबों में पढ़ा है कई बार, और मुझे लगता है सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, और वो भी यही सिक्किम में ही स्थित है दोस्तों, जो यहाँ की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि इसे भूल जाना तो मुझे लगता है ना कि जीवन का एक मतलब हिस्सा ही हम पूरा भूल जाए वो।
1: और ना मतलब जब उस टाइम पे किताबों में ये नाम आता था ना, तो बहुत वियर्ड सा लगता था,
0: अरे
1: ये क्या नाम है कंचनजंगा,
0: और मतलब क्या होता होगा वहाँ पे,
1: क्या होता होगा।
0: मुझे लगता है कि आज ऐसा वक्त है जहाँ पे हम ये चीजें समझने के लायक भी हैं और हम समझ भी रहे हैं
1: और समझा भी रहे हैं।
0: क्योंकि दोस्तों सिक्किम की खास बात तो बहुत सारी है, लेकिन एक खास बात ये है कि ये भारत का पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक राज्य है। यहाँ खेती में रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता और ये पर्यावरण संरक्षण का मुझे लगता है ना कि बहुत ही शानदार उदाहरण है।
1: बिल्कुल, और मतलब ये उदाहरण से सबको सीखना चाहिए,
0: सबको
1: आज, क्योंकि ना पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। मतलब हर कोई देखोगे तो कि हाँ बातें सब लोग करते हैं, लेकिन उस पे अमल कोई नहीं करता है। तब सिक्किम हम सबको ना प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की एक प्रेरणा देता है, मतलब ये सिखाता है हमें कि हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए।
0: क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ना कि जो ये रासायनिक जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं अगर हमारे नेचर को नुकसान पहुंचा रही है, तो इनडायरेक्टली

0: हमें भी नुकसान
1: और
0: पहुंचा
1: हमारी हेल्थ को
0: हमारी
1: नुकसान,
0: हेल्थ
1: सबसे
0: को,
1: बड़ी चीज
0: क्योंकि
1: तो
0: वही चीजें घूम फिर के हमारे पास आएंगी, चाहे वो खाने पीने की चीजों हो, हवा हो, कुछ भी हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो कहीं ना कहीं हमें लौट मतलब वापस लौट के हमारे तक आ रहा है,
1: जो
0: और
1: हम
0: हमें
1: नेचर को दे रहे हैं वही हमें रिटर्न मिल रहा है एक तरह से।
0: बिल्कुल। और सिक्किम में ना दोस्तों अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं, बड़े प्रेम के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, और वहाँ के जितने भी त्योहार हैं, लोक नृत्य है, लोक पारंपरिक पहनावा है, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाता है।
1: और दोस्तों सिक्किम

0: कि जितने भी त्योहार हैं, लोक नृत्य है, लोक पारंपरिक पहनावा है, ये सब हमारे भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाता है।
1: और दोस्तों, सिक्किम सिर्फ एक पर्यटन स्थल ही नहीं है, बल्कि अनुशासन, स्वच्छता और प्राकृतिक संरक्षण का भी एक प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ की साफ सफाई और शांत वातावरण हर किसी का मन मोह लेता है। मतलब जो सिटी की जितनी भी ये शोर शराबा है, वहाँ पे वैसा कुछ नहीं है निकिता। हाँ,
0: और मुझे लगता है ना कि इतनी सारी बातें करने के बाद जितना मेरा मन हो रहा है ना वहां जाने का, मुझे लगता है हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने दोस्त हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि एक बार जाके सिक्किम को देखना जरूर चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि अब गर्मी की छुट्टियां चल ही रही है, तो इससे बेहतर टाइम तो कुछ है ही नहीं कि जब लोगों को पता लग ही गया है तो मुझे लगता है कि उन्हें जाना चाहिए।
0: बिल्कुल, और मुझे एक बात यहाँ पे ये याद आई कि ये जो सिक्किम दिवस आज हम मना रहे हैं ना, इसको मनाने का उद्देश्य तो है ही, लेकिन ये जो दिवस है ना, ये हमें संदेश देता है कि विकास तभी सार्थक होता है जब वो प्रकृति और संस्कृति दोनों को साथ लेकर।
1: बहुत ही अच्छी बात कही है निकिता तुमने। तो दोस्तों, आइए इस अवसर पर हम भी अपने पर्यावरण की रक्षा करने और देश की जो विविध संस्कृतियां हैं उनका सम्मान करने का संकल्प लें और हमारे देश को स्वच्छ, सुरक्षित और एक अच्छा देश बनाने की कोशिश करें।
0: और इसी के साथ अपनी संस्कृति को भी ना भूलें, उसका सम्मान करें और उसे आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें। फिलहाल हम एक प्रयास करते हैं छोटा सा, आप तक एक खूबसूरत गीत पहुंचाने का।

0: अच्छा
1: जो पूरी दुनिया को प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। और उस दिवस का नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी कि शांति और सद्भाव के साथ साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
0: बिल्कुल दोस्तों, ये भी आज ही के दिन हर साल 16 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है लोगों के बीच आपसी सम्मान, सहनशीलता और एकता की भावना को बढ़ावा देना।
1: क्योंकि आज दुनिया में अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति और विचारों के अलग अलग लोग रहते हैं और ऐसे में शांति से साथ रहना और एक दूसरे को समझना और भी जरूरी हो जाता है।
0: सही कहा, बिल्कुल। और जब हम, मुझे लगता है, दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं ना, तभी समाज में प्रेम और सौहार्द का जो एक होता है माहौल,
1: वातावरण,
0: वातावरण जो होता है वो बना रहता है कहीं ना कहीं।
1: और ये जो है ना, ये संदेश, ये दिवस हमें देता है कि मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे कि तुम और मैं हूँ, तो मतलब जैसे हमारे विचार कहीं ना कहीं अलग हो सकते हैं लेकिन मनभेद, यानी कि हम एक दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं लानी है, जैसे कि हमने शुरू में बात भी की थी, एक दूसरे का सम्मान करना है, हर बातचीत से, समझदारी से हर समस्या का समाधान निकालना है और यही इस दिवस का मूल उद्देश्य होता है।
0: मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि सारी जितनी भी अच्छी बातें होती है ना, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है आपस में। मतलब देखो, टॉपिक हम लोगों ने जो विषय लिया वो पहले अलग था, अभी अलग है, लेकिन मतलब इनका जो संदेश है, जो
1: मैसेज जो है
0: वो एक ही जा रहा है कहीं ना कहीं।
1: यानी कि कहीं ना कहीं हमें अच्छे से साथ रहना है, समझना है एक दूसरे को, प्रॉब्लम आए मिलके फेस करना है, मिलके लड़ना है, लेकिन ये नहीं करना है कि हमें एक दूसरे से ही लड़ना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है ना कि आज के टाइम पे जो दूर होने का जो रीजन है ना, वो मुझे लगता है ना सबसे बड़ा सोशल मीडिया है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सोशल मीडिया जो तेजी से जीवन शैली में हम लोगों के आ रहा है ना, जो हम रूटीन में, हम जो बहुत इस पे डिपेंड हो चुके हैं, तो हम इसी कारण से ना एक दूसरे से, मुझे लगता है, दूर होते जा रहे हैं। और ऐसे में रिश्तों में विश्वास और अपनापन बनाए रखने की, मुझे लगता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। आज देखो, कभी होता है ना कि सामने वाला किस अकॉर्डिंग हमें मैसेज कर रहा है, लेकिन वो सामने वाला उसको किस अकॉर्डिंग ले रहा है,
1: तरह से लेता है।
0: पहले होता था कि चिट्ठी लिखते थे,
1: हाँ, वो कितने प्यार से, कितने मतलब खूबसूरत एहसासों से भरी हुई वो होती,
0: शब्दों का चयन,
1: शब्दों का चयन बहुत खूबसूरत हो
0: लिखा जाता था। और वो जब चिट्ठी आती थी तब इतना मतलब खुशी होती थी ना,
1: और एक चीज ये कि उसका इंतजार,
0: उसका
1: इंतजार बड़ा खूबसूरत होता।
0: लेकिन अब के टाइम पे वो इंतजार रहा ही नहीं है,
1: टेक्नोलॉजी का जमाना जो आ गया है। क्योंकि ये मतलब हमें सुविधाएं तो काफी प्रदान हुई है डेवलपमेंट से, टेक्नोलॉजी से, लेकिन उसके थोड़े थोड़े नुकसान भी हमें झेलने पड़ते हैं,
0: मिलते हैं।
1: और यहाँ पे जो है शांति की हम बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ दो देश या फिर कहें दो दोस्त, दो समाज, मतलब किसी भी तरीके से इनके बीच में ही नहीं रहता, बल्कि हमारे घर देख लो, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी की हम बात करें तो ये सब में लागू होता है कि
0: होता
1: हमें छोटी छोटी बातों में जो है पेशेंस रखना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब हम ये करते हैं ना राहुल, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं और ये चेंजेस मिलके एक बड़ा बदलाव।
0: हाँ, क्योंकि किसी एक की उससे, मतलब देखो ना, अगर कोई एक ही अगर ट्राई करेगा तो वो चीज नहीं हो पाएगी,
1: नहीं हो पाएगी, लेकिन सब मिलके करेंगे तो वो कहीं ना कहीं चेंज जरूर
0: होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, कि उनकी एक लाइन मुझे याद आ रही है, कि अहिंसा और शांति ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये लाइन कहने में जितनी सुंदर लगती है ना, इसका भाव और भी सुंदर है।
0: सुंदर है,
1: क्योंकि अगर हर व्यक्ति प्रेम से और सहयोग से इन भावनाओं को अपने अंदर उतारे ना, तो दुनिया कहीं ना कहीं और भी बेहतर हो सकती है, खुशहाल हो सकती है।
0: तो दोस्तों, हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इस विशेष दिन पे आप ये संकल्प जरूर लें कि हम जाति, धर्म, भाषा, इन सब क्षेत्रों से ऊपर उठकर ना सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके साथ प्रेम की भावना रखेंगे, सबके लिए सम्मान रखेंगे। क्योंकि अब वो टाइम है ना कि जब सबको साथ लेकर चलना, क्योंकि आजकल देखो ना कि हर इंसान अपने आप में बहुत, मतलब आप किसी को देखकर नहीं जज कर सकते हो कि वो इंसान कैसा है या क्या है, क्या पता उसमें क्या टैलेंट हो, क्या पता उसमें क्या खूबी हो।
1: और हम यही तो गलती करते हैं, हम दूर बैठे हुए उस इंसान की गलतियां निकाल लेते हैं, उसमें कमियां निकाल लेते हैं, लेकिन जब आप उसके पास दो घड़ी बैठेंगे, बातें करेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी अच्छाइयां भी नजर आएंगी और उनकी जो अच्छी खूबियां हैं वो भी नजर
0: आएंगी। इसमें सबसे बड़ा, एक मुझे लगता है ना, सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है ना इंसान की, कि वो दूसरों की कहे अनुसार चलना, मतलब वो अपने आप से जानने की कोशिश नहीं करता। उससे पहले ही अगर कोई उसको कहेगा कि ये इंसान ऐसा है, तो वो उसके मन में एक इमेज बना लेगा,
1: बिल्कुल वैसी धारणाएं बना के वो उसके बारे में वैसा ही,
0: नहीं ये वैसा है, नहीं ये वैसा है।
1: तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।

0: बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आसपास जो है शांति का माहौल बनाए रखना है, एक दूसरे का पूरा पूरा सहयोग करने की कोशिश करनी है, और सबसे एक जरूरी बात ये कि पॉजिटिविटी अपनानी है अपने जीवन में भी, अपने आसपास भी, परिवार में, समाज में, देश में, ताकि एक ऐसा वातावरण हम बना पाएं जहां पे काफी सुंदरता, खूबसूरत और शांति, तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हो वहां पे।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों चलिए इसी शांति के साथ ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं अगला ये प्यारा सा गीत
0: जो सीधे आ रहा है आपके रेडियो सेट तक।

0: राहुल, आज जब मैं ना स्टूडियो की तरफ आ रही थी ना, तो मैं ना एक चीज पता नहीं क्यों सोचती सोचती आ रही थी दिमाग में मेरी, ना बहुत सारी चीजें चल रही थी और चल ये रहा था कि मतलब हमारी कह लो सबकी कह लो, लेकिन लाइफ मतलब कैसी हो चुकी है ना, हम कितना सोचते ही रहते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि हम ओवर थिंक ज्यादा करते हैं, और ये मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में एक आध बार या कभी या रोज होता ही होगा।
1: बिल्कुल होता है। और ओवरथिंकिंग की बात ही कर रही हो निकिता, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात तो ना तुम मुझ पे कर रही हो?
0: नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि
1: नहीं
0: ये
1: नहीं नहीं
0: जो
1: नहीं ये बात तुम मुझ पर ही कह रही हो, क्योंकि मैं तो ना प्रोफेशनल ओवर थिंकर हूँ। अगर किसी दोस्त ने मुझे ना व्हाट्सएप पे भी ठीक लिख दिया या किसी भी सोशल मीडिया पे मुझे कुछ भी लिख दिया, तो मैं ऐसा हो जाता हूँ कि अरे ये नाराज तो नहीं है मुझसे, अरे मेरी कोई बात इसको बुरी तो नहीं लग गई, तो ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है।
0: अच्छा, और मान लो कि अगर गलती से कभी किसी ने तुम्हारा फोन ही नहीं उठाया तो
1: फिर तो पूछो ही मत। फिर तो मतलब मेरा जो दिमाग है ना वो अपने आप ही कहानियां बुनने लगता है कि अरे फोन क्यों नहीं उठाया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था, अब दोस्ती खत्म तो नहीं हो गई है। यानी मतलब ना ये जो दिमाग है ना, ये बहुत सारी स्टोरीज अपने आप में ही बनाने लग जाता है।
0: लेकिन जब हम ओवरथिंकिंग की बात करते हैं ना राहुल, तो वाकई में ये प्रॉब्लम मानी जा सकती है कि लोग सोचते हैं, कुछ ज्यादा सोचते हैं कुछ चीजों के लिए, स्टोरीज उनके माइंड में वो अपने आप माइंड क्रिएट कर
1: कर
0: लेता है।
1: देती
0: लेकिन
1: है।
0: ये ओवरथिंकिंग होती है ना, इसको हम मतलब कहीं ना कहीं मजाक के फॉर्म में कभी नहीं ले सकते,
1: कभी भी नहीं ले
0: क्योंकि
1: सकते।
0: कई बार इंसान इतना सोचता है कि जो बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें होती है ना, वो उसको इतनी बड़ी लगने लगती है, जैसे कि मतलब जीवन में अगर वो घटा है तो बहुत कुछ बड़ा घट गया
1: क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब
0: है।
1: उनको छोटी सी भी चीज ना बहुत जल्दी चुभ
0: चुभ
1: जाती
0: जाती
1: है।
0: है, बुरी लग जाती है
1: और
0: किसी
1: वो,
0: की
1: लेकिन
0: बात।
1: वो हमारे
0: हाँ,
1: लिए इतनी बड़ी नहीं होती, पर वो सामने वाले के लिए
0: सामने
1: बहुत
0: वाले के
1: बड़ी
0: लिए
1: हो
0: होती
1: जाती है।
0: है।
1: और मुझे लगता है ना कि ओवरथिंकिंग सिर्फ मजाक नहीं है, क्योंकि ज्यादातर उन चीजों के बारे में हम सोचते हैं ना इन इसमें कि जो हमारे हम हमारे साथ हुई ही नहीं है, मतलब एग्जैक्टली होने भी वाली नहीं है, बट फिर भी हम उन चीजों के बारे में ही सोचते रहते हैं
0: मतलब
1: सोचते रहते हैं।
0: होता ये है कि फ्यूचर जो हमारा होता है ना, कभी कभी फ्यूचर की टेंशन हमारे पास आ जाती
1: हो
0: है।
1: जाती
0: अगर
1: है।
0: हमने कोई डिसीजन हमारे पास्ट में ऐसा लिया है जो शायद हमें लगता है कहीं ना कहीं गलत है, तो उसका पछतावा भी हमें होने लगता है, और
1: बिल्कुल
0: ऐसा हम सोचने लग जाते हैं कि यार काश मैं ऐसा कर लेता, उस समय मैंने वैसा नहीं किया होता तो आज मेरी कंडीशन ये होती। और उसी मतलब जद्दोजहद में ना इंसान कहीं ना कहीं अपने आज को तो मतलब हाथों से निकाल ही देता है
1: निकाल ही
0: पूरा।
1: देता है, बिल्कुल निकाल देता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ निकिता। जब मतलब मैं काफी यंग एज में बोल सकते हैं था, तो मुझे याद है कि मैं एक बार ना एक इंटरव्यू देने गया था। तो पहले तो मैं एक दिन पहले ही रात को ओवर थिंक करता रहा, रात भर सो नहीं पाया, और अगले दिन इंटरव्यू में वही हुआ कि मतलब जिसका मुझे डर था ना एक दिन रात को पहले, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं वहां पे बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, तो मेरे दिमाग ने इतना वो कर दिया ना, मतलब उसको ब्लॉक, कि मेरा कॉन्फिडेंस ही वहां जाके चला गया।
0: और ये होता है, लोग क्या करते हैं, मान लो कल कुछ घटने वाला है तो उसके बारे में आज ही सोचने लग जाते हैं कल क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से मैं संभाल लूंगा, संभाल भी पाऊंगा या नहीं, जैसा कि
1: नहीं
0: तुम
1: कर
0: बता
1: पाऊ।
0: रहे हो तुम्हारा
1: हाँ बिल्कुल मेरे साथ
0: एक्सपीरियंस।
1: हुआ है।
0: हाँ, लेकिन जो डर होता है ना, ये हम एक दिन पहले ही लेकर बैठ जाते हैं हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से, जो हमें
1: बिल्कुल
0: पहले ही इतना थका देता है कि हम उस समय जो हमें करना चाहिए, एग्जैक्टली जो चीज होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। और ये जो ओवर थिंकिंग है ना, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दिमाग का वो ट्रैफिक है जहां पे विचार कहीं ना कहीं आगे बढ़ते ही नहीं है, कोशिश भी नहीं करते
1: क्या
0: आगे
1: बात
0: बढ़ने
1: कही है,
0: की,
1: मतलब ये तो डायरी में नोट करने वाली बात है
0: है
1: निकिता
0: ना।
1: कि हाँ। लेकिन एक चीज है कि इससे बाहर आखिर निकले तो कैसे निकले?
0: तो सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे ना, हर मुश्किल का जो हल है हमें मिलके ढूंढना चाहिए, हमारे जो लास्ट में हमने जो टॉपिक पे बात की थी, तो
1: कॉन्वर्सेशन।
0: हाँ, तो मुझे अभी इसका जवाब ना ऐसे ही याद आ रहा है कि कुछ चीजों को ना हमें मतलब एक तरीके से हैंडल करने के हिसाब से टाइम के ऊपर भी छोड़ना चाहिए
1: मतलब
0: मिलके, क्योंकि जब हम मिलके समय के अनुरूप धीरे धीरे धीरे धीरे उस चीज पे काम करेंगे तो वो वैसे ही अपने आप दूर हो
1: मतलब
0: जाएगी।
1: कि हर सीन का मतलब एटीट्यूड नहीं होता है तुम्हारा
0: बिल्कुल
1: कहने
0: नहीं, और
1: का।
0: कई बार ना सामने वाला बिजी भी होता है राहुल, और हम हमेशा कहानी बना लें ये अच्छी बात नहीं है। तो अब से ध्यान रखना कि तुम्हारे जितने भी मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, अगर वो नहीं रिसीव हो पाए

0: रहे हैं, तो सामने वाला बिजी है या फिर कुछ कर रहा है, ये भी तुम सोच
1: और
0: सकते
1: मुझे
0: हो।
1: लगता है ना कि अपने दिमाग से ज्यादा मुझे अब अपने दिल की भी सुननी
0: बिल्कुल,
1: चाहिए।
0: यही सजेशन मैं तुम्हें देना चाहूंगी। और लेकिन जैसे कि अभी हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो जब भी लगे ना कि दिमाग जरूरत से ज्यादा भाग रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ दोस्तों, ये आपके लिए भी है। थोड़ा सा रुकिए, गहरी सांस लीजिए। क्या करना है, अपनी पसंद का काम करना है, पसंद का गाना सुन लीजिए, कहीं बाहर टहल लीजिए, छत पे टहल लीजिए, या फिर किसी अपने से बात कर लीजिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि हर समस्या का समाधान सिर्फ सोचने से नहीं होता है, कभी कभी जीने से भी मिल जाता है।
0: राहुल, मुझे लग रहा है ना, जितनी तुम्हारी बातें गहरी होती जा रही है ना, मुझे लग रहा है ये चीज तुम्हें समझ में भी आती जा रही है कि किस चीज का क्या असर हो रहा था।
1: अरे, ओवरथिंकिंग ने मुझे फिलोसोफर बना दिया है।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, याद रखिए कि सोचना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत सोचिए कि आप अपनी मुस्कान को ही खो दें।
1: और दोस्तों, जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, कभी कभी ठीक ठाक भी खूबसूरत हो जाता है।
0: तो आज ना राहुल, तुमसे भी मैं ये कहूंगी, हमारे सभी दोस्तों से भी कहूंगी कि
1: जो
0: सोने से हाँ, जो भी ओवर थिंकर हैं, कि सोने से पहले अपने आप से एक प्रॉमिस करना है, वादा करना है कि जो बातें आपके कंट्रोल में नहीं है छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, दिल पर बिल्कुल भी नहीं लेनी है, उनके बारे में जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना है, जो होगा आगे देखा जाएगा।
1: और जो पल अभी आपके पास है दोस्तों, उसे खुलकर जीना है और इसी इसी के साथ आगे बढ़ना है लाइफ में। तो दोस्तों, इस विषय पर काफी गंभीर चर्चा हो चुकी है मुझे लगता है। तो निकिता, फिलहाल ले चलते हैं हमारे दोस्तों को गीत संगीत की दुनिया में फिर से एक बार।

0: राहुल, इतनी सारी बातें मुझे लगता है हम करते हैं ना कि हमारे लिए टाइम कम पड़ जाता है. बहुत सारी ऐसी बातें होती है ना जो कहनी होती है लेकिन वो कहीं दिल में ही एक कोने में दबी रह जाती है. इंतजार रहता है बस उस अगले पल का जहाँ पे हम दोबारा से हमारे दोस्तों से मिलें और वो जो बातें हमारे दिल के कोने में दबी रह गई है उन्हें बाहर निकालें और उन तक पहुंचाएं.
1: बिल्कुल, हमारी बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है.
0: बिल्कुल,
1: और मुझे लगता है ना कि ये सिलसिला ऐसे चलता भी रहना चाहिए क्योंकि बातें जब खत्म हो जाती है ना इंसान की तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है फिर कि अब मेरे पास बातें ही नहीं है, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं.
0: और वो लाइफ ना थोड़ी सी बोरिंग भी लगने लगती है.
1: बिल्कुल. तो निकिता, मुझे लगता है कि अब बात करते करते हम अपने कार्यक्रम के अंत तक पहुंच चुके हैं और घड़ी की सुइयां भी अब हमें इशारा करने लगी है कि बस आज का सफर हमारा यहीं पर खत्म होता है. तो दोस्तों, आज आपके साथ थे आप कार्यक्रम में आपके दो रेडियो दोस्त, मैं राहुल
0: और मैं निकिता. और हम जा तो रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि हम वापस आएंगे आपके लिए ढेर सारी जानकारियां लेकर, ढेर सारी बहुत सारी बातें लेकर. तो इसी के साथ आपके दोनों रेडियो दोस्तों को आपके कार्यक्रम की वाणी से आज के लिए दीजिए इजाजत.
1: नमस्कार.

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे उनका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। श्रोता, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ

मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर, साथ ही प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ोन AIR ऐप के जरिए भी आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। और कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है राम तेरी गंगा मेली फिल्म से। गीत में आवाज लता मंगेशकर की, गीत में जो संगीत है और जो गीत लिखा है रविंद्र जैन ने लिखा है, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश फिल्म हम साया से मोहम्मद रफी की आवाज है, गीत है शेरवान रिजवी का और संगीत ओपी नैयर का।

FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और लीजिए श्रोताओं फिल्म दोस्ताना से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनिए, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे जयपुर से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात राजस्थानी में समाचार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोरा इकराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम

0: ملکی و بین الاقوامی معاملات، سیاسی نظریات، معاشیات اور ثقافت پر مدلل مباحثے اور اظہار خیال، ساتھ ہی عوامی مفادات کی تبلیغ و تشہیر، جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل۔
1: ریڈیو نے کبھی سرحدوں کے دائرے نہیں مانے، آوازیں سیماؤں، پروتوں اور سمندر کے آر پار چھنتی رہیں۔ اسی کرم میں آکاشوانی بنا آپ کا ہم سفر، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کام کرتے، کہیں بھی، کبھی بھی۔ اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے آل انڈیا ریڈیو کا آفیشیل لائیو اسٹریمنگ موبائل ایپ آل انڈیا ریڈیو لائیو اب اپلبدھ ہے تینوں موبائل پلیٹ فارمز، یعنی اینڈرائڈ، آئی او ایس اور ونڈوز پر۔ ان پر آپ سن سکتے ہیں آکاشوانی کے 13 چینل، جن میں شامل ہیں وویدھ بھارتی، اردو سروس، اے آئی آر گجراتی، مراٹھی، پنجابی، ملیالم، تمل، تیلگو، کنڑ، بانگلہ اور راگم چینل، ساتھ ہی آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ اور ایف ایم رینبو چینل بھی۔ اس موبائل ایپ کو پلے اسٹور سے نشلک ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس سمبندھ میں وسترت جانکاری کے لیے جائیں آکاشوانی کی ویب سائٹ پر، یعنی وزٹ کریں آل انڈیا ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان۔ تو اب آپ جہاں بھی ہیں ہم بھی وہیں ہیں آپ کے ساتھ، ہمیشہ، دیش اور دنیا بھر میں، کہیں بھی۔
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू हुआ। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से जनगणना 2027 के तहत मकानों के सूचीकरण और गणना का काम शुरू हो गया है। आगामी 14 जून तक चलने वाले इस चरण में प्रगणक घर घर जाकर मकानों की निर्माण सामग्री और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में 33 सवाल पूछ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में इस कार्य के लिए 4,163 प्रगणक तैनात किए गए हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने आमजन से सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है। उधर पाली जिले में भी 3,000 से अधिक प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए वास्तविक लोकेशन के साथ आंकड़े जुटा रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित उनके आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। कल गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपितों को पुणे की अदालत में पेश किया गया और पारगमन रिमांड के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देशभर में 6 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई के इस दौर में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही देश की संप्रभुता की एकमात्र गारंटी है। श्री शेखावत आज जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला के 68वें स्थापना दिवस समारोह को

0: संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध का माध्यम नहीं है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसी तकनीकें भी सामरिक हथियार बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
1: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के विश्व दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।

0: ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न तकनीकी नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के प्रयासों को देखा। मुख्य सचिव ने एआई और आधुनिक तकनीक पर आधारित शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स को पीएम श्री विद्यालयों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली स्तर पर ही बच्चों को उन्नत तकनीक और नवाचारों को समझने का मौका मिलेगा।
2: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नेदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नेदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर के मणाई में एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर 51,10,00,000 रूपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही बजट घोषणा के अनुसार स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,000 करोड़ रूपये की लागत से विद्यालय आधारभूत रचना कोष बनाया जाएगा। श्री पटेल ने बताया कि करीब 400 विद्यालयों को सीएम राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 1,000 स्कूलों में एआई आधारित लर्निंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। जयपुर पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नवाचार कर रही है। इनमें एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप शामिल हैं। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप के बारे में बताते हुए जयपुर के पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि ये बहुभाषी ऐप स्मार्ट नेविगेशन और त्वरित सहायता जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
4: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है। उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। किसी टूरिस्ट को कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प पा सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं। इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और

0: नंबर।
1: जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से जूनियर समर कैंप की शुरुआत हुई। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने इस शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। 20 जून तक आयोजित होने वाले इस कैंप में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए इस वर्ष 500 से 600 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया है। जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ अनुराधा गोगिया ने बताया कि कैंप के दौरान बच्चों को रंगमंच के साथ साथ कला सहित विभिन्न विधाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
2: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक में स्टोरी की इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सके। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
1: और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। चिलचिलाती धूप और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग के अनुसार अगले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी जिलों में दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राज्य में एक बार फिर से हीट वेव का दौर शुरू होगा। वहीं 18 मई से पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। झुंझुनू में जागरूकता रैली निकाली गई। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं के द्वारा निकाली गई इस रैली के माध्यम से डेंगू के बचाव और मच्छरों की रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। जैसलमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की ओर से मच्छर रोधी गतिविधियां की गई और लोगों को समझाया गया। वहीं करौली में जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेमो, पोस्टर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर भीलवाड़ा जिले में शिक्षा के अधिकार को धरातल पर उतारने की मुहिम जारी है। राज्य सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के मामले में भीलवाड़ा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। ये लक्ष्य 1 अप्रैल से शुरू किए गए प्रवेशोत्सव के दौरान हासिल किया गया है। इसके तहत जिले में चिन्हित किए गए करीब 15,500 बच्चों में से 14,790 बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिया जा चुका है। अब भीलवाड़ा जिले में लगभग 5.25% पात्र बच्चे ही स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, जो प्रदेश में सबसे कम है। जिले के तिलोली गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायी पहल देखने को मिली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 10वीं और 12वीं के 6 मेधावी विद्यार्थियों को शानदार परिणाम देने पर हवाई यात्रा की सौगात मिली। युवा भामाशाह दशरथ सिंह राठौड़ ने इन होनहारों को जयपुर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा पर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना और अन्य छात्र छात्राओं को मेहनत के लिए प्रोत्साहित करना है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी हाल ही में भीलवाड़ा प्रवास पर रहे। उन्होंने मांडल विधानसभा क्षेत्र में पेयजल विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

0: किया। इस दौरान जलदाय मंत्री ने कहा कि सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के मिशन पर काम कर रही है। जिन इलाकों में भी पीने के पानी की समस्या है, वहां टैंकरों के जरिए पानी आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बीसलपुर बांध में पानी की काफी आवक हुई है। ऐसे में अजमेर, ब्यावर, टोंक और जयपुर जिले में पानी की नियमित आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में पानी की दिक्कत नहीं है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिनों भीलवाड़ा आए। उन्होंने जैन समुदाय के संगठन जीतो की ओर से आयोजित सामूहिक नवकार मंत्र जाप कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज के दौर में धर्म और संस्कृति से जुड़े रहना जरूरी है, जिससे नई पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले। जीतो के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिले की चिट्ठी में अब बात ग्राम रथ अभियान की। हालांकि जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ईंधन बचत की कवायद के कारण इसका आयोजन अभी रोक दिया गया है। ग्राम 2026 व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए ही ग्राम रथ अभियान शुरू किया। इसके तहत सभी जिलों की ग्राम पंचायतों पर ग्राम रथ पहुंच रहे थे। भीलवाड़ा जिले में भी जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु के निर्देशन में ग्राम रथ अभियान संचालित किया गया। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने भी जिले का दौरा कर ग्राम रथ का जायजा लिया। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर खरीफ फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज और खाद के भंडारण के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रही। उन्होंने सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम रथ अभियान में शिरकत की। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ग्रामीण रथ अभियान के तहत आसींद क्षेत्र में रात्रि चौपाल में शामिल हुए। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के मौके पर जिले में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन की सतत निगरानी के चलते इस दौरान जिले में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। हालांकि मौसम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई और कुछ जगह ओले भी गिरे। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि गर्मी में पेय पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। उन्होंने प्रचंड गर्मी के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी रखने को कहा है। भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। जनगणना 2027 रा तहत राज्य में आज मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू हुयो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। हाल ताई 9 जना गिरफ्तार करी चिया। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूला में नुआ कोर्स शुरू करिया जावेला। और प्रदेश का घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी। आवता सप्ताह में पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। जनगणना 2027 रा तहत प्रदेश में आज मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू फेंक्यो। 14 जून तक चलन वाला इन काम में प्रगणक घर घर जार मकान बनावन में काम ली रीजी सामग्री और मौजूद सुबीता बारा में 33 सवाल पूछ रहा है। भीलवाड़ा जिला में इन काम सारू 4163 प्रगणक लगाई चिया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु जनताओं प्रगणका ने सही जानकारी देर प्रशासन री मदद करन री अरज किन्नी है। पाली जिला में आई 3072 प्रगणक मोबाइल ऐप रे जरिए वास्तविक लोकेशन सागे जानकारियां भेड़ी कर रहा है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रा पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित महाराष्ट्र

0: भारत मौका दी धरती बैन अर सामी आयो है जो तकनीक अर इंसानी मूल्यां रा आधार आगे बढ़ रियो है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रे मुजब व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूल में नुआ कोर्स शुरू करिया चावेला। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर जिला रा मणाई में एक स्कूल में राखी जा कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। वह कहो के ई काम माथे 51 करोड़ रूपये बत्ती रकम खर्च करी जावेला। मंत्री बतायो के बजट में करी जा ऐलान रे मुजब स्कूल में बुनियादी ढांचा रा विकास सारू 2000 करोड़ रूपया रो विद्यालय आधारभूत संरचना कोष मनायो चावेला। श्री पटेल बतायो के करीब 400 स्कूल ने सीएम राइज स्कूल तौर विकसित करी जावेला और 1000 स्कूल में एआई आधारित लर्निंग लैब्स खोली जावेला। सैलानियारी हिफाजत और सुविधा सारू जयपुर पुलिस एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप सरीखा नवाचार कीना है। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप री जानकारी देता थका जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल कहो कि न्यारी न्यारी भाषावां माय काम करण वालो ओ ऐप स्मार्ट नेविगेशन और तुरंत मदद सरीखा सुविधाई मुहैया करावेला। वे बतायो के ई ऐप रे मार्फत सैलानिया ने सुरक्षित गेलां री जानकारी सत्यापित गाइडां री लिस्ट और मुश्किल भगत माय मदद मिल सकेला।
2: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा, किसी टूरिस्ट को कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प मांग सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं, इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
0: जयपुर राज जवाहर कला केंद्र में आज जूनियर समर कैंप शुरू हुआ। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग के शासन सचिव शुचि त्यागी इनरो उद्घाटन किन्नो। 20 जून तक चलने वाला इन कैंप में मोटी तादाद में बच्चा नाम मंडाया है। जवाहर कला केंद्र री अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया बतायो कि शिविर में बच्चा ने रंग मंच सागे कला समेत न्यारी न्यारी विधावारी व्यावहारिक सिखावण दी जा रही है।
3: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक में स्टोरी की इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सकें। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
0: अरब मौसम प्रदेश का घनखर हल्का माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुजब लाडला 24 घंटा माए फलौदी 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे सब 19 ठोड़ रहे हो। महकमा के मुजब आवता सप्ताह प्रदेश का घनखर हल्का माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार है। इन दौरान उगनी रातुणी हल्का माए तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ताई पुगण की संभावना है। इन बीच 18 मई आतुणी और उत्तराध हल्का माए जोरदार बायरो बाजण की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके प्रदेश में आई कई कार्यक्रम रखी गया। झुंझुनू में ANM ट्रेनिंग सेंटर री टावरिया री ओर जागरूकता रैली निकाल और डेंगू बचाव और मच्छरों की रोकथाम के बारे में जानकारी दी रही। जैसलमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा कर्मचारियों की ओर मच्छर मारण सारू जतन करी गया और जनता ने जानकारी दी रही। करौली में जांच करें, सफाई करें और ढकें मुद्दा माथे चलाया जा रहा अभियान रा तहत शहरी और गांवी हल्का में डेमो, पोस्टर

0: पंपलेट और सोशल मीडिया के जरिए जाग जगाई जा रही है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। जनगणना 2027 रा तहत राज्य में आज मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू भयो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूल में नुआ कोर्स शुरू कर्या जावेला। और प्रदेश रा घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी, आवता सप्ताह पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वारा आसार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम चौपाल सुनबाड़ा संधा करसान भाई बोणिया को कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत छे और आपका रेडियो साथी प्रेम भाई काडी सु घणी घणी राम राम राम राम जी राम राम करसान भाई बोणिया और राम राम भाई बनाओ मुंदाड़ा की टाइम छे और छारो मेर ला बरसरी छे ई लेकर ई टाइम तो अपना आप ने लाजक कर सु बचावा में समझदारी छे आपन तो खेती बाड़ी वाला मनक छा और आपने काम कदी न बीते ही लेख कशो भी मौसम हो काम करना ही पड़े पर सावधानी बरत वो भी जरूरी है भाई बनाओ पर भाई बनाओ सावधानी तो छोड़ो आपना घना भाई बन ही मौसम में भी घोर लापरवाही कर नुकसान न घर बटिया नु तो दे रहा है कड़कड़ती गर्मी में भी खेता में आग लगा फसल अवशेष यानी की नोड़ाया बाल रहा है जिसु खेती तो खराब हो रही है खेत की आग गांव में भी लागबा को डर छे जीसु घणी जन और धन की हानि हो सके छे ई लेख भाई बनाओ आपन फसल अवशेष ने भूसो बनार या दूसरा वैज्ञानिक तरीका सु फसल अवशेष को उचित प्रबंधन कर सका छा ई में आपन सबकी भलाई छे भाई बनाओ आज छे शनिवार और आज आपनी चौपाल में छे खास कार्यक्रम आकाशवाणी गाँव में तो आज आपन आया छा गाँव जामुनिया ग्राम पंचायत बोराबास तहसील लाडपुरा कोटा में तो भाई बनाओ जामुनिया गांव कोटा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर कोटा रावतभाटा मुख्य सड़क पर छे और गांव की आथनी बाजू चंबल नदी बरी छे और यो पूरो गांव चारों मेर से जंगल के बीच में छे ज्या घनी टाइम की जंगली जानवर रीछ बांदरा सोहाड़िया आसानी से देखा जा सके छे यहाँ का लोगों को मूल काम धंधो पशुपालन की लेर लेर खेती बाड़ी करबो छे और दूध न बेच रही है अपनो जीवन यापन करे छे जद मैं ये गांव में आया तो ज्यादातर घर का आदमी दूध बेचवा शहर में गया छे और ज्यादातर घर में महिला सुई बात हुई छे तो वहां ने मैं बतायो के भाई यहाँ का मनक बड़ा सीधा साधा और मेहनती छे अच्छा राबड़ी खा वाला मनक छे तो आओ चला और करा गाँव जामुनिया का लोगों से बातचीत।

0: भाई बनाओ अपन गांव जामुनिया बावड़ी में घूम रहे जहाँ और अब ये अपने जो सरपंच साहब मिले छे राम राम साहब।
1: राम राम सर। राम राम।
0: काई नाम छे साहब आपको?
1: मारो नाम छे साहब कन्हैयालाल ठीकरिया।
0: अच्छा अच्छा आप सरपंच छो यहाँ का? ये जो गांव जामुनिया बावड़ी छे कितना बड़ो गांव छे साहब?
1: ए 100 की बस्ती छे।
0: तो यो काई अभ्यारण्य में आओ छे?
1: हाँ मुकंदराम।
0: मुकंदराम मुकंदराम आओ छे?
1: हाँ।
0: अच्छा तो मुख्य रूप से यहाँ काई काई काम धंधा छे?
1: मुख्य रूप से पशुपालन।
0: तो आपका गांव में काई काई विकास काम हुआ छे आपका कार्यकाल में?
1: अपना कार्यकाल में होया है पानी का ट्यूबवेल होया है।
0: पानी का ट्यूबवेल कराया?
1: हाँ पानी का ट्यूबवेल कराया है। एक माह के देवनारायण मंदिर पे बाउंड्री वाल हुई है सामुदायिक भवन की।
0: अच्छा अच्छा।
1: एक दो इंटरलॉकिंग खरंजा गाँव में भी होया
0: है। खुरंजा?
1: हाँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: बलिंदा में हुए 10 लाख को खरंज दो ट्यूबवेल बलिंदा में हुए।
0: सरकारी योजना को फायदा तो ले

0: ता होगा ना गांव का
1: लेवे जो,
0: और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी पक्का मकान बनाया होगा।
1: बिल्कुल बनाए जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, 3 आवास मारा जो हमने बावड़ी में, 2 बुलिंदा में चल रहा है। हाँ, पहले भी बनाया था, बार भी चल रहा है।
0: और अगर मान लो यहाँ जानवर के कान गए यार बीमारी हो जाओ तो को कहीं चाहिए इलाज को, कहीं चाहिए यहाँ व्यवस्था?
1: व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्र है ना, पशु चिकित्सालय है बोरावास,
0: बोरावास में।
1: हाँ, और यहाँ के लिए भी यमुना के नाम से, लेकिन जमीन का आवंटन की प्रक्रिया जारी है, यहाँ भी अलग से बने वो। और एक मुख्यमंत्री की जी की योजना जो चल रही है 1962 नंबर वाली, वो गाड़ी आती है।
0: अच्छा,
1: गाड़ी भी आ जाती है 1962 वाली जो है ना एम्बुलेंस, पशु वाली एम्बुलेंस वो आ जाती है।
0: अच्छा अच्छा, आपका गांव में तो चारों मेर गोबर ही गोबर नजर आ रहे हो, तो जो गोबर की खाद वो कितनी काम कीजिए?
1: नहीं, बढ़िया काम कीजिए, जो को करीब करीब तो जी की खेती है और खाद है वो तो पूरा वही डाले जाए, मैं भी डाला जाए बाहर।
0: हाँ,
1: खेती को वही बेचे जो, बाकी जी के भी जानवर है, खेती है ना, तो वो सारो खाद तो खेतों में डाले।
0: क्योंकि गोबर की खाद तो बहुत बढ़िया है।
1: नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, मैं खुद ही डाला जाता हूँ, कम से कम हर साल की मैं 30-40 ट्रोली खाद डाला जाऊँ,
0: है ना।
1: हाँ, जी के पास खेती है और वो खाद बेचे को ना, वो खेत में डाले।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने वहां से बातचीत करी, आकाशवाणी से बातचीत करी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
1: राम राम साहब। राम राम।
0: भाई बनाओ, गांव में घूमता घूमता मैंने एक भाई साहब मिले छे। राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
0: काई नाम है आपको?
2: मारो नाम पन्नी है साहब।
0: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, पन्नी भाई।
0: यो जो जामुनिया जो कतनो पुरानो गांव है?
2: वो तो खूब पुरानो है साहब।
0: तो आपने कितना साल हो गया यहाँ रहता रहता?
2: यहाँ रहता ना मैं ना तो 50-60 साल।
0: तो पहली तो अति गाड़ी और रोड भी कोई नहीं,
2: कोई नहीं
0: जंगल में बस रहा।
2: हाँ हाँ।
0: अच्छा, तो यहाँ काई काई काम धंधा करो छो?
2: अब काम धंधा तो है ही है, गाय भैंस को काम है मगर।
0: अच्छा।
2: हाँ।
0: और खेती बाड़ी को
2: है? अच्छा। थोड़ा घनी खेती बाड़ी भी है।
0: तो काई काई फसला करो?
2: गेहूं भी बावा।
0: अच्छा।
2: थोड़ा घना काती राखो, मक्की है।
0: अच्छा।
2: सारो जुआर रिशन की भी बावा।
0: तो एक बात बताओ, आप ये गाय भैंसिया को दूध बढ़िया निकाल भागे लेकर काई काई को ध्यान रखानी पड़ जाए की देख रेख कैसे करनी पड़े?
2: बांटो है, खाकला है। अच्छा। का सभी सावे सा।
0: आप गर्मी में हरे चारा की व्यवस्था कैसे करो?
2: गर्मी में थोड़ा कोनो हाल कर मिलो, यहाँ थोड़ा को लीलो हिलो भाव मिलो है।
0: अच्छा। अब चारों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इस गर्मी से बचा भागे लेकर अपना जानवर कारण काई काई करो, पानी वानी की व्यवस्था कैसे करो?
2: पानी तो कर मिलो है, कोई बोरिंग वोरिंग मो। और सरकार ने क्यों भाई करो थोड़ा घो वास्ता करो भाई। हाँ,
0: गांव में कहीं कहीं व्यवस्था चाहिए आप? गांव में कहीं कहीं चीजें बढ़िया सरकार की आदि?
2: सरकार की आदि तो थोड़ा घो को भवन बनायो है और थोड़ा घना भाई पानी आनी बोरिंग भी करिया है।
0: अच्छा, बच्चा बच्ची स्कूल जाओ आपका?
2: जावे।
0: तो पढ़ाई वढ़ाई कैसी हो रही है?
2: पढ़ाई छोकी
0: बढ़िया
2: बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया आपने तो।
0: अच्छा।
2: हाँ, बढ़िया है सर।
0: अब आपने बात करी, राम राम।
2: राम राम सर। राम राम।
0: गांव जामुनिया में घूमता घूमता जब गांव में अटी गली में सुखडर एक घर में आया, तो यहाँ एक बालिका मिली। काई नाम है बेटा आपको?
3: कविता पूजा।
0: अबाणु काई कर रहे छे?
3: अबाणु मैं BSTC तैयारी कर रही।
0: BSTC की तैयारी कर रही। 12वीं में कितनी परसेंट बनी?
3: 94%
0: सबसे जो पसंदीदा विषय छे वो काई छे? आप
3: पसंदीदा विषय जो हिंदी छे और भूगोल।
0: तो 94% आपने 12वीं कक्षा में हासिल करी छे, तो इके लेकर आपने कशा मेहनत करी छे, कितनी पढ़ाई करी छे?
3: जितना टाइम मिलो जान टाइम मिले मैंने पढ़ी, शाम को टाइम मिले शाम को सुबह नहीं पहली पढ़ू पचा अगर याद नहीं हो तो मैं लिख लिख कर पचा दू।
0: अच्छा अच्छा, तो इमा आपका जो अध्यापक छे वहाँ कोई काई भूमिका रही छे?
3: अध्यापक ने घणो गाइड करो।
0: अच्छा,
3: हिम्मत मिली फिर
0: स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया हो?
3: बहुत बढ़िया हो।
0: अब आपके जो यहाँ गाँव की बच्चिया पढ़ रही छे वहाँ से आप काई के पूछा हो?
3: वहाँ से एक के पूछा की पढ़े मन लगा पढ़ाई करो, पढ़वो जरूरी छे।
0: अब आप देख रहे हो कि भाई आपने जो बच्चे जो लड़कियां छे जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ी छे तो हर क्षेत्र में वहाँ नाम कमाए छे।
3: हाँ, कुल मिलाया जाए पढ़ो जरूरी है और खुद के पाँव पे खड़ो वो जरूरी है, घर को और समाज को नाम रोशन हो जाए।
0: आपने मासू बातचीत करी, इसके लिए धन्यवाद। राम राम।
3: राम राम।
0: चालता चालता मन एक साथी मिले छे, तो ये पूरी तरह से यहाँ को जो जीवन छ पर्यावरण पशु पक्षियों के लेकर जानवर की सेवा के लेकर समर्पित छे, तो आओ यहाँ सुकरा राम राम राम राम साहब।
4: राम राम साहब।
0: काय नाम छे साहब आपको?
4: जसराज गुजर।
0: पढ़ाई लिखाई कहाँ करी छे आपने?
4: मैंने 12वीं पास करी है बस।
0: 12वीं पास करी छे, तो अबानु काय काम करो?

0: अभी तो मैं दूध का काम करता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ, बाकी खेती बाड़ी करता हूँ।
1: खेती बाड़ी तो कशी का फसल करो जो आप?
0: फसल में ज्यादातर तो जानवरों के लिए रचका किया जाता है।
1: अच्छा,
0: और अपने खाने के लिए गेहूं करते हैं, मक्की बाजरा ये होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात है जगह पर, जिसे मान लो गर्मी का दिन में जो जानवर छे वहाँ का हरा चारा की व्यवस्था आप खुद अपनी खेती स्वी करो जो?
0: हाँ, अपने खुद के खेत में अपन हरा चारा करते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी। तो रचका के अलावा और भी कान गई करो जो?
0: बाकी बरसात में यही ज्वार बाजरा रहता है, सर्दी में करते हैं अपन बड़ची रचका।
1: हाँ, रचका।
0: और अपने खाने के लिए गेहूं करते हैं ऑर्गेनिक, जिसमें अपन यूरिया डीएपी नहीं डालते, जो अपने जानवरों का देसी खाद है गोबर खाद, उसी का उपयोग करते हैं अपन।
1: तो यहाँ तो काफी मात्रा में आपके गोबर को खाद दो?
0: बहुत, लगभग लगभग सबके पास ही मिलता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: लगभग लगभग गाँव भी बहुत कम उपयोग करता है इनका, यूरिया डीएपी से बहुत कम बचता है, इनका उपयोग कम ही करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो यो आपको गांव छे, यो बिल्कुल जंगल में ही छे।
0: हाँ जी।
1: तो आपका बारे में मान सुनी छे के भाई आप जीव जनावर विशेष प्रेम करो छो, वहाँ की सेवा करो छो, तो आप के प्रकार से वहाँ की सेवा करो छो?
0: लगभग देखो साहब, मेरे को 6 वर्ष हो गए, मैं जो गांव में मेन मंदिर है प्राचीन मंदिर देवनारायण भगवान का, वहाँ मैं पूजा करते हुए, मेरे को मैं 15 वर्ष का था तब से पूजा कर रहा हूँ, अभी 21 वर्ष का हो गया। 6 वर्ष से मैं वही दाना डालता हूँ मोरों को, सुबह और शाम एक आवाज देता हूँ मैं, जिसमें मोर उतरने लग जाते आ जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, वो आपने जाना जी?
0: हाँ, मेरी एक आवाज में अगर मैं दिन में वहाँ आवाज भी दे लू ना, तो मोर वहाँ से रिप्लाई कर देते, वापिस बोल बोल के बता देते हैं।
1: अरे वाह वाह। हाँ। और यहाँ जो जंगल में पानी की काई व्यवस्था है जानवर के लिए?
0: पानी के साथ देखो, अपने सर्दी तक तो बढ़िया नालो चले, सर्दी बाद में वहाँ पहली मंदिर पे मोटर नहीं थी, गांव वालों ने मोटर की व्यवस्था कराई, और वहाँ जो पानी मोटर का जो एक बड़े गड्ढे में डाल दिया, जो वहाँ तो जंगली जानवर वहाँ पानी पी लेते हैं। और बाकी जो अपनी रोड के इस साइड का एरिया रहा, इसमें मैं खुद अपने खुद के ट्रैक्टर टैंकर है, और पानी के लिए मोटर बढ़िया पानी भी है। 1-2 किलोमीटर अंदर जाके मैं हर 2-3 दिन में एक टैंकर पानी किसी एक गड्ढे में डाल देता हूँ, जो वहाँ लगभग जंगली जानवर पानी पीते रहते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ कान का जंगली जानवर को खतरा तो कोई
0: नहीं? खतरा नहीं है भाई साहब, यहाँ पेंतर तेंदुआ दिखाई जाता है, बहुत सी बार देख भी लिया अपन ने, आज तक उन्होंने अपन पे हमला नहीं किया। जैसे अपन आवाज देते वो अपने से दूर चले जाते हैं। जहाँ मैं पानी का टैंकर डालता था वहाँ मैंने भालू रीच अपने पेंतर देख रहा है।
1: तो इको नाम जो गांव जामुनिया बावड़ी छे, तो यो कशा पड़ियो, मतलब का इतिहास?
0: पहले तो क्या, अपने जैसे पानी के स्रोत बहुत कम थे, पानी अपने गांव में एक जो गांव वाला ने खोदी थी बावड़ी थी, उसके पास जामुन का पेड़ था, इसलिए उस गांव का नाम धीरे धीरे लोग जामुन वाली बावड़ी कहते कहते जामुनिया बावड़ी हो गया।
1: तो और आपका गांव में काई काई सुविधा छे?
0: बहुत सुविधा ही है, स्कूल है अपने गांव में, मेन रोड पे गांव है, और कोई समस्या नहीं है, जैसे पानी वाने की भी सब व्यवस्था है, ज्यादा परेशानी नहीं आती गर्मी में।
1: आपने मासु बातचीत करी, इकले के बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम सर। राम राम।
1: भाई बनाओ, गांव जामुनिया में घूमता घूमता आपन सरकारी स्कूल काढ़ी आया, आपन ने यहाँ ऑफिस में मार साहब मिलिया छे, तो यहाँ शू करा? राम राम। राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
1: काय नाम छे साहब आपको?
2: धनराज गुर्जर।
1: तो आप यहाँ कशा पद पर जो?
2: यहाँ मैं प्रिंसिपल के पद पर हूँ।
1: तो ये आपको जो स्कूल छे कक्षा के ताई छे?
2: कक्षा 12 तक।
1: यहाँ जो पढ़ाई हो छे हिंदी मीडियम से हो छे?
2: हिंदी मीडियम।
1: अच्छा, कितना बच्चा बच्चियों को नामांकन छे यहाँ?
2: यहाँ पर लगभग 300 छात्र और छात्रा पढ़ते हैं।
1: तो सरकार का डिसीजन यहाँ बच्चा बच्चा गण काई काई सुविधा है?
2: विद्यालय की तरफ से और सरकार की तरफ से सभी छात्रों और छात्राओं को बहुत सारी स्कीम्स के तहत फायदा दिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से समस्त कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों और छात्राओं को MDM के तौर पर मध्यान्ह भोजन पूरे सप्ताह और सप्ताह में एक दिन फल तथा रोज डेली प्रार्थना के बाद पन्नादाय बाल गोपाल योजना में दुग्ध पिलाया जाता है। सभी विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 12 तक समस्त छात्रों छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती है
1: जी।
2: और पूर्व मैट्रिक के रूप में और उत्तर मैट्रिक के रूप में बहुत सारी छात्रवृत्तियां OBC MBC SC ST विभिन्न वर्गों को आवश्यकता अनुसार छात्रवृत्तियां भी दी जाती है। कक्षा 9 में पढ़ने वाली समस्त छात्राएं हैं उनको विद्यालय तक आने के लिए निःशुल्क साइकिलें प्रदान की जाती है प्रतिवर्ष
1: जी।
2: और खेल सुविधाओं के रूप में सरकार की तरफ से यहां पर खेल प्रशिक्षक लगा रखे हैं जो प्रतिदिन उनको खेल कालांश में दक्ष करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल साहब। और आपको जिसे मान लो कि 12वीं तक स्कूल से, तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड में कोई विशेष उपलब्धि रही का आपका कार्यकाल में यहाँ?
2: हाँ बिल्कुल रही है। इसी साल जो है कक्षा 12 में एक लड़की 95% लाई है, 4 छात्राएं योजनाएं जो है राज्य

0: सरकार की स्कूटी योजना की पात्र हैं
1: जी।
0: अधिकतर बच्चे 80-90% बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं।
1: अच्छा अच्छा। और आपने जो राजस्थान सरकार का जो खेल प्रतियोगिता हो चाहे जिला स्तरीय या जो तहसील स्तरीय जो आपका छात्र छात्रा चे जो भाग ले गया हो कभी कान कहीं उपलब्धि हासिल करी हो
0: जी रही है सब। जिला स्तर पर भी 2 बार यहाँ से प्रथम रही है खो खो में।
1: अच्छा।
0: और गत वर्ष राज्य स्तर पर छात्राओं की जो खो खो टीम थी वो राज्य स्तर पर 4 छात्राएं चयनित होके और बाड़मेर में खेल के आई हैं।
1: आपका विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का रूप में कसिया कसिया कार्यक्रम कराया जाओ?
0: सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हमारे यहाँ पर बाल सभाएं जो पीटीएम में भी प्रोग्राम होते हैं, इसके अलावा साप्ताहिक और शिविरा में दिए हुए समस्त प्रकार कार्यक्रम है उनमें समय समय पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
1: बिल्कुल साहब, आजकल तो बच्चा बच्ची जो है खेल कूद न भूल गया और मोबाइल पे गेम खेले छे, तो आप कहीं संदेश दे बचाओ जी मामला में?
0: सभी विद्यार्थियों से और बालकों से हमारा तो यही निवेदन है कि वो मोबाइल से और स्क्रीन की दुनिया से बाहर निकल कर आउटडोर खेल और फील्ड में जाकर मेहनत करें तो उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारी जो समस्याएं हैं स्क्रीन की उनसे दूर होंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकाशवाणी कोटा से बातचीत करी। राम राम साहब।
0: राम राम साहब।
1: एक और मार साहब अपना बीच में छे तो यहाँ सुकरा राम राम। राम राम साहब।
2: राम राम जी। राम राम।
1: काई नाम छे साहब आपको?
2: मारो नाम कुशवंत मेहरा छे।
1: अच्छा, काई पढ़ाओ जो आप?
2: मुया हिंदी साहित्य से लेक्चरर पोस्ट पे छू।
1: तो आपको तो हिंदी साहित्य छे तो फिर साहित्य में तो कविता में भी रुचि हो गया?
2: घनी घनी रुचि छे साहब,
1: है ना।
2: कविता है जीवन जमा को तो। एक कविता छे हिंदी की, वामन पीपल। मैं एक नदी का बीच में एक पीपल को पेड़ जो तेज धारा में डूब नरियो जो की 4 पंक्तियां छे। बीच नदी में बैठा है वो, कहो उसे छोटा सा पीपल। तेज धार में ऐठा है वो, कहो उसे ढीठा सा पीपल। हम तुम

0: लेगा।
1: वाह वाह वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हिंदी का अध्यापक होबा के नाते तो ई विषय में जनमानस सुकाई के पूछो छ।
2: जनमानस यू खबू छाऊ जो मुग हिंदी आपनो सांस्कृतिक वैभव को परिचय कराऊ छ आपके थाई। आपना टावराएं आपना बच्चा बच्चे आप हिंदी पढ़ाओ, हिंदी भाषा से वहां में प्रेम जगाओ, हिंदी की विविध बोलियां से वहां को परिचय कराओ। राजस्थानी, हाड़ोती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, जो भी आपकी लोकल भाषा है वो डायलेक्ट के ताई भी वहीं सिखाओ और वहीं अपनी भाषा में बोलबा गाना प्रेरित करो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपने आकाशवाणी कोटा से बातचीत करी। राम राम साहब।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
1: भाई बनाओ गांव में घूमता घूमता अपना टी मंदिर काढ़ी आया जो पांच मातार बने यहाँ गीत गारी छे तो यहाँ शू करा छे। राम राम। राम राम साहब। काई नाम छे आपको?
3: दसन गीता।
1: और आपको?
3: सुशीला भाई।
1: आपको?
3: प्रेम भाई।
1: आपको?
3: शमा भाई।
1: आपको?
4: बर्दी भाई।
1: तो आज काय को गीत सुना होगा मन?

0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बातचीत करी, गीत सुनाए, राम राम साहब।
1: राम राम साहब।
0: भाई बनाओ, गांव में घूमता घूमता एक काका जी मन मिलिया छे, तो यहाँ सुकरा राम राम। राम राम साहब।
2: राम राम। राम राम।
0: काई नाम छे आपको?
2: जगदीश प्रजापति।
0: काई करो छो आप?
2: मु तो खेती करो छो।
0: अच्छा, और डांडोर भी पालो छो ना?
2: पालो छो, बैसा भी छे, गाय भी छे।
0: अच्छा, कतनी गाय बैसा छे?
2: 5 खोज छे।
0: अच्छा अच्छा, तो दूध दूध दे छे ना? दे
2: दूध दे छे।
0: अच्छा, तो अपन खेत में जो कसी कसी फसल करी जी आपने?
2: पहले तो सरसों जी गाँव छा।
0: गाँव छे? गाँव से नमट गया मतलब?
2: गाँव नमट गया, सरसों नमट गया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक बात बताओ माने, गाँव को खेत खाली हो जाए बाणू तो घना लोग बाग तो खेत में आग लगा दे छे, तो आग लगा पूछो की बात छे के?
2: नने बेकार छे, न लगानी चाहिए जी।
0: हां, ईसु कतनो नुकसान छे?
2: नुकसान दूसरा अगर घर बार जल जावे तो घणो नुकसान।
0: हां,
2: और अपना खेत में उनको खात हो छे नोळाया को।
0: हां,
2: उन बालनी चाहिए जी?
0: न बालनी चाहिए जी। तू नोळाया न गाय जो खेत की मिट्टी में काई करके दबा देनी चाहिए?
2: दबा देनी चाहिए जी।
0: हां ना, देखो
2: आग न लगानी चाहिए।
0: आग न लगानी चाहिए तो उम खेत की मिट्टी भी तो खराब होती होगी?
2: खराब हो छे।
0: खराब हो जे
2: ऊपर ऊपर को पूरा खाद वाद जल जाए सब।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: ऊपर जो पैदावार को जो अंश बना जाए वो सब जल जाए मिट्टी के ऊपर को,
0: और खेत की मिट्टी भी खराब हो जाओ
2: वो जो खराब
0: आकर हो जाओ जो खेत।
2: फर्क पड़े, फर्क पड़े।
0: हाँ, तो उसको कहें जो कैसे मान लो अपन पानी दिया तो फिर उमन रमक होना पानी आकरी हो जाओ जो जमीन।
2: फर्क पड़े जो पैदावार में
0: है ना। तो अब अपन उंदाला को टाइम छे, तो अपन उंदाला का टाइम की जो आपने जो की डांडोर छे वहां ने पाड़ो छे, वहां ने वहां की काई काई सुव्यवस्था करो छे?
2: तो अगले बार हरियो चारो बोनी पड़े छे।
0: हां,
2: फिर वही खिलाओ ना तो काई खाओ बेचारा।
0: अच्छा, भूसा
2: उनका कार खा ता ही चल। हां
0: हां, पानी की काई व्यवस्था?
2: पानी की ट्यूबवेल में पानी छे जो पानी पीता रहे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो जैसे आपने मन क्या कर लेके ठंडा पानी की जरूरत रहे, वहाँ का भी तो ठंडा पानी की जरूरत रहे?
2: हाँ, जो खेल वेल पर दे न तो फिर खड्डा भरिया रहे जो।
0: अच्छा अच्छा,
2: पीले से खड्डा में साफ पानी रहे।
0: अच्छा अच्छा, अरे वहाँ का कान का यार बीमारी हो जाओ तो?
2: तो डॉक्टर वॉक्टर से जो बुला लेता
0: का। गांव में पढ़ाई वढ़ाई की कैसी की व्यवस्था है?
2: बढ़िया व्यवस्था।
0: बढ़िया व्यवस्था?
2: बढ़िया व्यवस्था।
0: अच्छा, और गांव में कहीं कहीं सुविधा है? बढ़िया सुविधा है,
2: सब सुविधा है, रोड बन रहा है।
0: तो आपने मासु बातचीत करी के लेके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
2: राम राम।
0: भाई बनाओ, गांव में घूमता घूमता आपने कान एक युवा किसान साथी मिले छे, तो यहाँ शुक्र। राम राम। राम राम साहब।
3: राम राम साहब। राम राम।
0: काई नाम छे साहब आपको?
3: राजेंद्र।
0: काई करो जो आप?
3: वही खेती बाड़ी।
0: अच्छा, खेती बाड़ी को काम छे?
3: बिल्कुल।
0: अच्छा, और डांडोर?
3: डांडोर छे।
0: खेती बाड़ी में काई काई करो जो आप?
3: भाई खेती बाड़ी में यही जो अब गर्मिया छे तो गर्मिया में जो है थोड़ा ध्यान रखनी पड़े विशेष। अभी मैं कहे थोड़ा तो डांडोर के लिए भी ठंडा पानी की व्यवस्था, चारा की व्यवस्था करनी पड़े।
0: तो खेत की अपन गहरी जुताई करी न करी?
3: बिल्कुल करी ना साहब।
0: अच्छा अच्छा,
3: और विशेष घास जो है नाम जो राई भी लीजिए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब बढ़िया फसल ले भाग लेगा अपने कृषि वैज्ञानिक?
3: बिल्कुल बिल्कुल, लेनी पड़ेगी
0: है ना?
3: लेनी पड़ेगी।
0: अच्छा अच्छा, तो गहरी जुताई करवा सू मतलब खेत बढ़िया हो जाओ?
3: बिल्कुल बिल्कुल
0: बढ़िया हो जाओ।
3: बिल्कुल हो जाओ साहब।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, खेता में आग लगा इसे कतनो नुकसान हो?
3: इसे देखो, एक तो पर्यावरण को नुकसान है, दूसरो जना आपने डांडोर को चारों खत्म हो जाओ, और कहीं ना कहीं तो देखो नुकसान है, इसे फायदा का ही भी को ना, खेत भी खराब हो जो वहाँ की जो अंदर की वो पैदावार जो क्षमता है वो खत्म हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: धीरे धीरे।
0: और अपना जो मित्र कीट है वो भी मर जाओ?
3: वो भी मर जाओ बिल्कुल।
0: तो अगर अपने यहाँ को सही प्रबंधन कराए नोड़ा यहाँ को, आग न लगावा
3: बिल्कुल,
0: तो अपने खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी ज्यादा हो जाएगी?
3: बिल्कुल होगी, क्यों ना होगी भाई, गलत तो गलती है ना।
0: बिल्कुल साहब,
3: भाई अपने गलती कर रहे हैं ना आग लगा के, तो गलती परिणाम आओगा ना होगा तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखो पुराना जमाना में तो खेत खाली रह जाए तो डांडोर भी,
3: डांडोर भी बिल्कुल चरचा साहब।
0: अच्छा, तो आप अपन जैसे मान लो जानवर भी पालो छो, तो गर्मी में वहाँ की देखरेख किसे करोगे आप?
3: देखो वहाँ का पहले तो सबसे बड़ी बात है कि छाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
0: छपरा मतलब?
3: छपरा में छाव में जरूर रखनी पड़ेगा वो।
0: अच्छा,
3: अलावा वहाँ का जो चारा वारा हरा होनी चाहिए, खल बाट चूरी जो भी है ना अपनी क्षमता के हिसाब से, लेकिन वहाँ की विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी।
0: और पानी की?
3: पानी की तो देखो, एक ठंडो पानी और फिर समय समय

0: ऊपर वहाँ के ऊपर डाल दो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: टाइम से वो छे तो आपने जा
1: बिल्कुल देखो अपन कहे ना वो खेती बाड़ी का तो अपना अनबोलिया साथी छे
0: अनबोलिया साथी छे
1: तो आपनो बराबर साथ दे छे
0: बिल्कुल वो छे जब भी आपने जा मैंने की ना आपसे
1: एक दूसरा का पूरक छे
0: एक दूसरा का पूरक छे
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो जानो छो के जीव तो जीवियो छे
0: बिल्कुल
1: आपने ठंडा पानी की जरूरत छे
0: अच्छा
1: यहाँ कई कान का हारी बीमारी हो जाओ तो कहीं
0: देखो फिर वो पशु चिकित्सक ने दिखाऊं जा
1: अच्छा अच्छा
0: छोटी मोटी तो आप कर ला जा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि बरसात पाल रहे जाए तो थोड़ा बहुत नॉलेज सही
1: प्राथमिक उपचार तो करी
0: है ना लेकिन अब देखो डॉक्टर की सलाह तो लेनी पड़ेगी।
1: हाँ यह बात तो सच की। और ये टीकाकरण की व्यवस्था कहीं
0: टीकाकरण समय समय से जो जागरूक करे गाँव में आओ जे लोग
1: अच्छा वो डॉक्टर कंपाउंडर आ जाओ
0: आ जाओ जे और फिर उस हिसाब से जो कुछ आपने भी जागरूक रहनी पड़े
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन आपने भी ध्यान रखनी पड़ेगा।
1: अच्छा आपका गाँव में तो जन जी डांड और घर सारा देखा माना और गोबर की खाद खूब सारी देखी
0: बिल्कुल
1: तो ये खाद ना कहीं करो जो आप
0: अभी खाद ना तो साहब ये तो बेचना जा या उपयोग में ले ला जा
1: खेती
0: में उपयोग में ले ला जा
1: तो ये रसायन से तो बढ़िया जन
0: उसे लाख गुना अच्छा। ये खाद से अपन रोटियां पोर खा रहे जा तो इसे अच्छी का बात
1: जी फसल में गोबर की खाद दिया जा ना वो फसल की क्वालिटी भी बढ़िया
0: बिल्कुल बढ़िया। बस मैं तो यही कहूँ कि थोड़ा किसान भाई से सबसे ही थोड़ा ध्यान दे आपने गोबर खाद पर और जानवर पर विशेष ध्यान दे अब बाहर देखो गर्मी से है ना तो जैसा आप वैसा वो वहाँ को थोड़ा ख्याल रखे
1: बिल्कुल
0: और साफ सफाई को ख्याल रखे
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सारी बीमारियों से बचे
1: बिल्कुल
0: धूप में खड़वा से बचो हाल खेत्या में काम तो छे ही ना घर में मस्त रहो ठंडी छाछ पियो ठंडो पानी पियो नींबू पानी पियो
1: बिल्कुल बिल्कुल गर्मी में अपना स्वास्थ्य के ध्यान
0: स्वास्थ्य को ध्यान रखो
1: कान का यार बीमारी जाओ तो
0: डॉक्टर
1: नहीं
0: वो तो वाकई तुम्हारा पूरा गाँव ही सख्त के खिलाफ
1: जानते रही अच्छा अच्छा
0: सीधा डॉक्टर के पास जाओ वही इलाज करेगा
1: बिल्कुल साहब बिल्कुल। आपने मासु बातचीत करी कोटा आकाशवाणी से बातचीत करी एक लेके बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब
0: राम राम साहब राम राम।
1: भाई बनाओ जीवन जीबा के लेके रोटी कपड़ा और मकान आपनी मूल जरूरत छे। रोटी कपड़ा की जरूरत तो आदमी जिसा तिशा कर ली छे पण मकान बनावो घना कठिन को काम छे। ही लेके आपने केंद्र सरकार ने पात्र शहरी और ग्रामीण गरीब परिवार के लेके पक्का घर बनाबा सारू प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई छे जिसू आपना भाई बहन ही योजना सु जुड़ मकान बनाबा के लिए किस्ता में आर्थिक मदद ले सके छे। ये आर्थिक मदद आधार सु जुड़िया बैंक खाता में सीधी मिल जाओ छे। इके अलावा आवास के लेयर लेयर शौचालय बिजली और पानी जैसी सुविधा भी सरकार की आडी से दी जा रही छे। ही लेके भाई बनाओ आपन ने भी जागरूक और सरकार की ही योजना को फायदा लेनी चाहिए और दूसरा भाई बहन ने भी जागरूक करनी चाहिए। गाँव में घूमता घूमता टेम की तोली न पड़ी कखद आपनी चौपाल कार्यक्रम को टाइम पूरा हो गयो तो आज तो आपका रेडियो साथी प्रेम भाई के ताई दियो आ गया। फिर अगला शनिवार चालांगा दूसरा गांव में तो चाला जा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आज रात 9 बजे सुनिएगा हमारे केंद्र से देश भर में लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। सूचना समाप्त होती है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर।

माटी के सर सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, चलिए आपको सुनाते सबसे पहले बनारसी लाल की आवाज में ये राजस्थानी लोकगीत।

हमारा कुंज बिहारी। अभी आप सुन रहे थे गौरी शंकर की आवाज में ये राजस्थानी लोकगीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी सूचना, श्रोताओं आज रात 9 बजे सुनिएगा हमारे केंद्र से देश भर में लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो सुनना ना भूलिएगा हमारा ये साप्ताहिक पुनीत कार्यक्रम। सूचना समाप्त होती है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं इस समय आप आनंद ले रहे हैं माटी के स्वर कार्यक्रम का, और ये अगला स्वर है ओम प्रकाश मेहरा की आवाज में।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। इस समय श्रोता आप आनंद ले रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर का। और लीजिए ये अगला लोकगीत सुनिए और इसमें प्रमुख स्वर है चंचल काबरा का।

जेंटल काबरा की इस बेहद ही मीठी आवाज के साथ माटी के स्वर कार्यक्रम यहीं पर होता है समाप्त। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि आज रात 9 बजे सुनिएगा हमारे केंद्र से देश भर में लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म अलग अलग से किशोर कुमार की आवाज, गीत आनंद बख्शी का, संगीत आर डी बर्मन का।

एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म बेमिसाल से किशोर कुमार की आवाज, गीत आनंद बख्शी का, संगीत आर डी बर्मन का।

श्रीत 420 यह है फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुनने वाले हैं। लता मंगेशकर की आवाज है, साथ है मुकेश और मोहम्मद रफी। गीत लिखा शैलेंद्र ने, संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने।

और कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद। मुकेश की आवाज है, गीत आनंद बख्शी का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं।

श्रोताओ, आप इस समय आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का। और अगला गीत हमने लिया है फिल्म रहना है तेरे दिल में। इस फिल्म से गीत है समीर का, संगीत हैरिस जयराज का।

फिल्म में, फिल्म का नाम था ये और इसमें आवाज थी के की। इस बेहद ही खूबसूरत गीत के बाद आइए एक बार फिर से श्रोताओं आपको याद दिलाते हैं हम कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी के बारे में। आज रात 9 बजे सुनेंगे हमारे केंद्र से आप देश भर में लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए जब वी मेट फिल्म से उस्ताद राशिद खान की आवाज में ये गीत, लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया संदेश सांडियाल ने।

श्रोताओं, फिल्म राही के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत चित्रपट संगीत यहीं पर होता है समाप्त। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार संध्या का आज का अंक।

आपके साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार दे

0: देते हुए खारिज किया और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल

प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को राम नारायण मीणा का प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, आपने ट्यून किया है राजस्थान के कोटा शहर का वो रेडियो स्टेशन जिसने अपने फोन इन कार्यक्रमों के जरिए देश भर के रेडियो श्रोताओं में खासी जगह बनाई है। देश के मानचित्र पर और विदेश में तेजी से उभर रहे पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही प्यारे से शहर के इस रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपकी फोन कॉल्स और मजेदार गीतों का ये सुरीला सफर जिसका नाम है हेलो आकाशवाणी।

0: जी हेलो सर, नमस्कार।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
0: सर मैं रामबाबू मालवी बोल रहा था सर, कोलार रोड भोपाल से।
1: तो बताइए, हमारे कार्यक्रमों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आज?
0: नहीं सर, कार्यक्रम तो बढ़िया लगते हैं और आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं, बहुत दिनों के बाद लगाया मैंने तो फोन जी। और ये डॉक्टर साहब का जो प्रोग्राम आते हैं वो भी, और किसानों के बारे में आते हैं वो प्रोग्राम भी सुनते हैं सर, युवाने वगैरह भी जी सर।
1: तो क्या काम करते हैं आप राम बाबू जी?
0: अपने सर ये लॉन्ड्री का काम है,
1: अच्छा,
0: एक्सप्रेस का काम है, वो
1: अच्छा,
0: पे चलता रहता है शॉप पे, और प्रोग्राम भी सुनते हैं आपके और चलता रहता है काम, अच्छे मनोरंजन भी होते हैं और शिक्षा भी, सुरक्षा सब बात की मतलब सुविधा कोटा आकाशवाणी से मिलती रहती है, सुनते रहते हैं।
1: तो आज कौन सा गाना सुनेंगे बताइए
0: जी सर? आज रंग मूवी का तुझे देखे मेरी आंखें।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। कहाँ से कौन बोल रहे हैं?
1: बड़वा से बोल रहा हूँ, मंजूर अली।
0: अरे वाह मंजूर अली जी, क्या बात है, बहुत दिनों बाद में फोन आया आपका।
1: नहीं, करता रहता हूँ फोन तो।
0: अच्छा अच्छा करते हो। अच्छा। हाँ, मेरी आपसे काफी सालों बाद बात हुई, लेकिन
1: हाँ, बहुत दिन हो गए।
0: है ना। तो मंजूर अली जी, आप तो काफी पुराने श्रोता हैं हमारे, है ना,
1: हाँ,
0: और
1: बहुत
0: कई
1: पुराने।
0: कार्यक्रमों में आपने जो हमारे

0: आकाशवाणी ने किए कार्यक्रम, उनमें भी आपने भाग लिया, तो वो यादें आपको आती होंगी, कैसा लगता है उन बातों को याद करके?
1: हाँ तो याद तो आती है, लेकिन बदलाव भी तो जरूरी है, बदलाव हो रहे हैं कार्यक्रम में, पहले अलग प्रोग्राम थे अब अलग होने लगे, तो समय के साथ बदलाव भी जरूरी है, यादें तो आएगी, वो तो हमेशा रहेगी यादें तो।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: हाँ
0: तो आज कौन सा गाना सुनेंगे बताओ?
1: आज प्रेम रोग का सुना देना, बहुरे ने खिलाया फूल।

0: हेलो
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी शिवा लोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ सर।
0: तो विदिशा में किस जगह पर है आपका गांव या जहाँ आप रहते हैं?
1: सर जी मैं मेन जिले में रहता हूँ सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो विदिशा के बारे में बताइए, वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर कोई घूमने आते हैं तो वहाँ देखते हैं या देखना चाहिए?
1: सर जी देखिए मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ, यहाँ पे जो है आपने 200 रुपए का नोट देखा होगा।
0: अच्छा हाँ,
1: उसमें जो किला छपा है वो हमारे

0: ओडिशा के पास में ही रायसेन जिले में सांची है, उसका किला है सर।
1: सांची है ना
0: जी,
1: सांची का स्तूप जिसे कहते हैं।
0: जी जी सर।
1: तो वो आपके नजदीक ही है वो?
0: जी 9 किलोमीटर है, रायसेन जिले में लगता है।
1: अरे वाह।
0: और वो काफी अच्छा है और काफी सैलानी भी आते हैं, और यहाँ पे ऐतिहासिक में उदयगिरी भी है, यहाँ पे पहाड़ वगैरह गुफाएं वगैरह है ऐतिहासिक।
1: अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वाह
0: जी सर।
1: तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि सांची का स्तूप तो बहुत विश्व प्रसिद्ध धरोहर है ना?
0: जी सर बिल्कुल।
1: और काफी लोग उसे देखना चाहते हैं, तो ये अच्छा बताया कि वो विदिशा के नजदीक पड़ती है ना?
0: जी सर जी सर।
1: अच्छा, ये विदिशा और खंडवा के आसपास कितनी दूरी है?
0: सर ये तो बहुत दूर है, ये मतलब भोपाल और हमारा विदिशा 50 किलोमीटर की दूरी है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो खंडवा अलग निकल गया है ना?
0: खंडवा अलग है सर, वो वहाँ पे वो मालवा क्षेत्र के पास है वो।
1: हाँ, हम इसलिए पूछ रहे हैं खंडवा क्योंकि वो किशोर कुमार जी की जन्म स्थली है, तो खंडवा हमें हमेशा याद रहता है।
0: जी जी सर।
1: अच्छा अब बताओ कौन सा गाना सुनेंगे आज के प्रोग्राम में?
0: सर जी एक गाना है, ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सजाएं दे रही है मंजिल प्यार की।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ जी नमस्कार, आकाशवाणी कोटा।
0: हाँ नमस्ते, बहुत स्वागत आपका। बताइए कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नाथूलाल कुमावत, उम्र 80 साल, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा 80 साल के हैं सर आप?
1: हाँ 80 साल की उम्र है मेरी।
0: क्या बात है, लेकिन आवाज तो बहुत कड़क है अभी आपकी।
1: वो तो क्या है कि बागवानी करता हूँ मैं छत के ऊपर।
0: लेकिन बागवानी से आवाज का क्या संबंध है?
1: रोज मेहनत करता हूँ।
0: अच्छा
1: पसीना निकालता हूँ।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, तो स्वस्थ शरीर है इसलिए
0: स्वस्थ शरीर है इसलिए आवाज भी। क्या बात है, बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन दिया आपने। तो आप बगीचे में अभी बड़ी मुश्किल आ रही होगी क्योंकि बहुत सारे पौधे लू से झुलस जाते हैं।
1: उसके ऊपर छाया का थोड़ा बहुत

0: तो जालीदार करते हैं, उससे काम चला रखा है। पानी टैंकर से लेते हैं, छत अच्छा। के ऊपर है, छत के ऊपर 200-250 गमले लगा रखे हैं बड़े बड़े।
1: अच्छा ये बताइए सर कि अभी मतलब किन किन पौधों को ज्यादा छाया में रखने की जरूरत है, ऐसे कौन से पौधे हैं जो बहुत जल्दी यानी धूप और गर्म हवा सहन नहीं कर पाते हैं?
0: पहली बात तो जो उम्र में छोटे हैं वो।
1: अच्छा छोटे जो पौधे हैं।
0: दूसरी बात जैसे फूलों वाले हैं या जो छाया में रखने वाले हैं पहले से ही, जिन पौधों की दिनचर्या ही छाया में रखने की है तो उनको ज्यादा मुश्किल है धूप से।
1: इंडोर प्लांट जिनको कहते हैं, है ना?
0: हाँ जी जी, रेडियो रिपेयरिंग मिस्त्री था मैं पहले।
1: अच्छा वाह।
0: हाँ जी,
1: अरे क्या बात है, वाह।
0: और वो श्रीलंका वाले प्रोग्राम सुनता था, बिना का।
1: अच्छा बिना का गीतमाला।
0: हाँ वो सुनता था। कोटा स्टेशन को चालू ही रखता हूँ, बंद अच्छा, करता ही नहीं। अच्छा। खेती बाड़ी वाले प्रोग्राम सारे सुनता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी जितने आते हैं, आपसे बहुत सारा लाभ मिला है मेरे को स्वास्थ्य के मामले में। दिनचर्या जो वो आपके द्वारा सुनाई गई, डॉक्टरों द्वारा सुनाई गई, तो उससे मेरी दिनचर्या में अच्छा सुधार हुआ है।
1: अरे वाह, अब बताइए कौन सा गाना सुना दें आपकी पसंद का?
0: गाना तो राजा रंग का गाना सुनना चाहता हूँ मैं। वो अच्छी माँ, ओ माँ तू अच्छी है,
1: तू कितनी अच्छी है।
0: हाँ जी।

0: हेलो।
1: मैं राजू मेहर बोल रहा हूँ, गांव भिलवाड़ा से, जिला
0: हाँ राजू जी,
1: झालावाड़।
0: हाँ राजू जी कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं आपके?
1: सर मतलब दिन भर ही रेडियो ही चलता रहता है अपना।
0: अच्छा।
1: हाँ, और काम में, और सुबह उठते ही रेडियो चालू हो जाता है। सुबह शाम तक 8, 9, 10, 11 बजे तक रेडियो चलता है।
0: अच्छा।
1: मुझे बहुत शौक है, मैं बचपन से ही सुन रहा हूँ। हाँ,
0: तो किस तरह के कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं? गाने पसंद आते हैं या स्वास्थ्य की जानकारियों पर आधारित क्या आपको?
1: स्वास्थ्य की जानकारी के लिए भी आते हैं, जो अभी प्रोग्राम चलते हैं 8:15 से 9 बजे तक के, वो सभी प्रोग्राम
0: अच्छा,
1: सुनता हूँ मैं।
0: वाह वाह
1: बहुत
0: वाह।
1: अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बढ़िया जानकारी मिलती
0: मतलब काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं स्वास्थ्य की
1: है। हाँ,
0: जानकारी,
1: बहुत
0: है ना?
1: खूब बढ़िया प्रोग्राम पेश करते हैं सर आप। हाँ
0: आप बताइए कौन सा गाना आज के कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं?
1: सर, सुना देना काम चोर का, तुम संग प्रीत लगाई सजना।
0: वाह।

0: तो प्यारे श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। और बहुत सारे श्रोता ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इस कार्यक्रम में हम फोन कैसे करें, हम अपने मन की बात जो हम सोच रहे हैं इस प्रोग्राम को सुन सुन के वो कैसे कहें। तो वही हम समझ रहे हैं आपकी जिज्ञासा और आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, तो हम बता देते हैं अगर आप इस कार्यक्रम में हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको हमें आने वाले गुरुवार को फोन करना होगा दिन में 11 बजे से और 12 बजे के बीच। हमारा नंबर है 2941142294112। इस नंबर से पहले आपको एसटीडी कोड मिलाना होगा कोटा शहर का 0744। तो याद रखिएगा, आने वाले गुरुवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी बात रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो चलिए, इस सूचना के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ।
1: हेलो।
0: हाँ हाँ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: हाँ नमस्कार सर जी।
0: जी जी नमस्ते।
1: आकाशवाणी कोटा।
0: हाँ आकाशवाणी कोटा, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम से।
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम करार जिला सतारा से सताराम जाधव बोल रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, जिला सतारा से बोल रहे हैं।
1: जी जी।
0: तो सतारा की क्या खासियत है आपके जिले में, क्या सबसे अच्छी बात आप बताना चाहते हैं, बताइए।
1: सतारा में क्या कंजी कड़ा बहुत पसंद, बढ़िया बनाते हैं।
0: अच्छा, क्या बनाते हैं?
1: कंदी पेड़ा। पेड़ा?
0: अच्छा, पेड़ा बहुत अच्छा बनता है सतारा।
1: जी जी।
0: अच्छा, क्या खासियत है उस पेड़ा की, बताइए।
1: उसमें कुछ मिलावट नहीं रहती, सिर्फ इसका रहता है वो।
0: अच्छा,
1: खोया खोए का।
0: खोया का होता है वो पेड़ा, है ना?
1: जी।
0: तो इधर हमारी तरफ तो मथुरा के पेड़े पसंद है, आपको याद होगा, है ना? मथुरा के पेड़े, जब मथुरा जाते हैं तो वो ट्रेन में डिब्बे ले लेके आ जाते हैं मथुरा के पेड़े।
1: हाँ जी।
0: खिड़की
1: एक दिन आया था मथुरा को।
0: हाँ, खिड़की में से पहुँचा
1: देखने को आया था मैं, उस वक्त खरीद किया था वो पेड़ा।
0: अच्छा, तो आपने फिर दोनों की तुलना की, कौन सा पेड़ा अच्छा लगा आपको, सतारा का या मथुरा का?
1: मथुरा का अच्छा लगता है।
0: अच्छा, आप सतारा के आसपास और कौन कौन से जिले पड़ते हैं आपके?
1: सतारा के आसपास महाबलेश्वर है, पाचगढ़ है, ठंडिया भाई के ठिकाने है ना वो। बहुत लोग बाहर के आते हैं घूमने के लिए गर्मी में।
0: अच्छा, आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए।
1: जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हमारे गांव में दो नदी है, एक कृष्णा है एक कोयना है।
0: अच्छा, कृष्णा।
1: हमको पानी की कुछ कमी नहीं पड़ती सर जी।
0: अच्छा, कृष्णा नदी है आपके वहाँ पे?
1: जी जी।
0: अरे वाह, कृष्णा नदी तो बचपन में बहुत पढ़ा हमने, कृष्णा कावेरी, है ना?
1: जी।
0: अच्छा, तो वो नदी आपके यहाँ पर है?
1: जी है।
0: बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। तो बताओ अब कौन सा गाना आज आपको इस कार्यक्रम में सुनाए हम?
1: फिल्म नाम है अंदाज। अरिजीत के बोले जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: वाह, तो देखो बहुत अच्छा लगा, महाराष्ट्र के बहुत ही प्यारे से श्रोता का हमारा फोन हमारे कार्यक्रम में आया आपका, है ना
1: जी?
0: तो राजस्थान के केंद्र पे आपने फोन किया तो हमारी तो दोस्ती हो गई, महाराष्ट्र और राजस्थान की, है ना?
1: जी जी।
0: तो आप बहुत प्यारे आदमी हो, आप बहुत सुंदर, सबको हमारा राम राम कहना आपके मित्रों को, ठीक है ना?
1: राम राम।
0: हाँ, सबको राम राम बोलना जी हमारी ओर से।
1: कुछ मित्रों का नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ, बताओ बताओ।
1: सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: थैंक यू।
1: हमारे मित्र गौतम राय बोले जी, लोकेंद्र वर्मा जी, सुनील झा जी, दिलीप फौजा जी, गंगाधर सावनकर जी, धीरज भाई रबारी जी,
0: के
1: एस आई राजसोके जी, विठ्ठल पवार जी, किरण शिंदे जी, विजय पाटील सारकर।

0: विजन जी, आपके टेलर जी का, उत्तम कोकाटे जी, विकास चिल्ली जी, श्रीकांत भंडारी जी और रमेश जाधव जी, हम सब एक एक सुनना चाहते हैं। हमारा एक ग्रुप है, इतने कार्यक्रम नहीं सुना तो एक दूसरे का रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, हम थोड़ा कार्यक्रम सुनते हैं हम।
1: तो चलिए आपके सभी मित्रों को आपकी तरफ से ये गाना सुना देते हैं।

0: हेलो, राम राम।
1: हाँ राम राम, नमस्कार।
0: यहाँ से बोल रहे साहब, धनपुरा गांव से, दिल्ली के पास,
1: अच्छा, धनपुरा से बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका?
0: बाबूलाल गुजर।
1: हाँ, और बाबूलाल जी क्या कर रहे हो ऐसी गर्मियों में?
0: बढ़िया ही सर, का नेमड़ी की छाया में सोचा जो।
1: अच्छा, लिमड़ी की छाया में सो रहे जो।
0: हाँ,
1: हेलो,
0: फोन कट गया, बाल क्यों पहली मारो।
1: हाँ यो फोन कट गयो, फिर दोबारा मल गयो या बड़ी बात है ना?
0: हाँ, अच्छा दीवार मल गया साहब।
1: आ तो ता करिया चाक, मतलब लीमड़ी की छाया में सो रिया जो है ना?
0: हाँ, नेवड़ी खा बिंडा तोड़ी जी, नेवड़ी खा हम आराम करिए तोड़। हाँ,
1: अच्छा, बिंडिया बारा की होगी।
0: बिंडा बारह के साथ
1: अच्छा, तो और कहीं कहीं बारा की जो?
0: टमाटर से, भिंडी से, थोड़ी सूट भाव मली से, साले बकरियां के, गाय के, हरियां के, थोड़ी के जा रहा है रहो।
1: हाँ, तो गर्मी में अगर आपने पानी को साधन हो तो ये बढ़िया चाहिए, बिंडिया बिंडिया और ये सब।

0: आपण कर सका जा ना
1: मोटर से साम मोटर से इंजन से कोट
0: तो आप बेगा साहब बताओ आप तो गीत कैसे सुनेगा
1: पर सुना दो मनो दिन में काजल लगाया दिन में रात हो गई
0: अच्छा अच्छा अच्छा मतलब अशा बोलो कि तन काजल लगायो दिन में रात होगी
1: काजल मन या नारी
0: अच्छा
1: हां
0: है ना तो यो गीत सुनावा जा अभी भाई आप भी सुनोगे जिस किशा मां हिंदी गताई हाड़ू ती में बना सका जा तनक काजल लगायो दिन में रात होगी
1: दिन में रात होगी।

0: हेलो।
1: नमस्ते सर जी।
0: हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
0: हाँ जी सत्येंद्र कुमार जी, हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि आपके क्षेत्र में काफी आंधी और तूफान आए हैं, बहुत नुकसान हुआ है, तो वास्तव में आप बताइए आपके आसपास क्या स्थितियाँ हैं?
1: हमारे आसपास ये समाचार हमने भी सुना और सुन के हतप्रभ रह गए और आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ। लेकिन जिस इलाके से हम बात कर रहे हैं आपसे,
0: जालौन से,
1: इस क्षेत्र से, हाँ जालौन से, तो यहाँ से ऐसा दूर दूर तक देखने में नहीं लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, आंधी तूफान ये हुआ है। तो हमारा जिला और ये बिल्कुल सामान्य रहा। और
0: प्रयागराज, बदायूं और इन इलाकों में काफी नुकसान हुआ है,
1: जो हमारा जो पूर्वांचल का हिस्सा पड़ गया।
0: जी जी जी जी,
1: इस तरफ नुकसान ज्यादा हो गया है। और ये बात है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनको हम और आप दुख में बस सहन करने के अलावा और कुछ नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा, और बहुत सावधानी हमें रखनी चाहिए ऐसी आंधी के समय, पुराने पेड़ों के नीचे आसपास वहां से थोड़ा बचना चाहिए हमें। और आजकल जो टेंट लगाते हैं उसमें लोहे की बल्लियां और ये सारा इनका उपयोग होता है, ऐसे में बहुत सावधानी की जरूरत है।
1: तो इसमें जब आंधी तूफान आता है और जब ये गिरने की संभावना बन जाती है तो वाकई जनहानि भी हो

0: सकती है या हानि नहीं होगी तो वो परेशानी में आ सकती है।
1: जी जी जी जी।
0: आज हमने फिल्म अपना बना लो, अपने अपने मियाँ पे सबको बड़ा नाज है, पूछ लो किसी से, ये खुल्लम खुल्ला राज है।
1: बहुत बरसों बाद में किसी श्रोता ने इस गाने की पसंद की।
0: हम ऐसे ही गाने सुनने की खोजने की कोशिश करते हैं। हमने भी इस गाने को, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कभी मैंने आकाशवाणी पे किसी पे सुना है। आशा जी की आवाज जी तो वाकई बिल्कुल लाजवाब हो गया।
1: मतलब ये गाना उस कैटेगरी का है जैसे वो एक और गाना है, सुन सुन दीदी तेरे लिए एक लड़का आया, ऐसा
0: रोमांटिक है, मनोरंजन है।
1: हाँ बिल्कुल, पारिवारिक और
0: पारिवारिक
1: बिल्कुल ऐसा गाना। तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो जी नमस्कार।
0: हाँ नमस्ते, स्वागत आपका।
1: जी सर जी, मैं रमेश साहब बोल रहा हूँ सर जी।
0: अच्छा रमेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर जी मैं बिहार बांका जिला गांव झिकुलिया और इस वक्त जिला फरीदाबाद बल्लभगढ़ से बोल रहा हूँ सर जी।
0: अच्छा अच्छा, मूल रूप से बिहार के रहने वाले?
1: जी सर जी, जी बिहार बांका जिला का।
0: बहुत अच्छा, तो आप बांका जिले के बारे में कुछ बताइए श्रोताओं को कि वहाँ की क्या चीजें प्रसिद्ध हैं और किन चीजों को लेकर आपको ऐसे गर्व की अनुभूति होती है कि यार मेरे जिले में ये है, बताएं।
1: वहाँ तो सर ये घूमने लायक सर, बांका जिले में मेरा ये गांव का बगल में काली मंदिर है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो वहाँ घूमने लायक सर बहुत अच्छा जगह, फेमस जगह, और एक दुर्गा मंदिर है सर।
0: अच्छा, लोग आते हैं देश भर से वहाँ पे?
1: हाँ जी।
0: अच्छा अब ये बताइए कि इस समय आपके यहाँ पर क्या क्या फसलें होती हैं वहाँ पर?
1: इस समय तो सर फसल तो सारा कट चुका है सर जी, अब इस समय सब्जी उब्जी लगा है सर जी, यही सब लगा है सर।
0: छोटी मोटी कर लेते हैं थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह।
1: हाँ जी सर, जी सर। हाँ
0: बाकी सब खेत ऐसे ही पड़े हैं अभी, है ना?
1: हाँ जी सर, खेत तो अभी ऐसे पड़े हैं सर, सूखा हुआ है सर। और सर ये समय अभी मूंग लगा हुआ है सर।
0: हाँ मूंग की जायद, मूंग की फसल करते हैं लोग।
1: हाँ मूंग लगा हुआ है सर जी।
0: बहुत ही बढ़िया, क्या काम करते हैं आप?
1: सर जी हम तो यहाँ बाहर अभी प्रदेश आए हैं, तो सर यहाँ कंपनी में काम करने की तलाश में आए हैं सर जी, और आपका अभी थोड़ा बहुत खारिज सुन लेते हैं और आज फोन लगा दिए।
0: किसी कंपनी में काम, ठेकेदार के पास में आए होंगे?
1: हाँ जी जी, ठेकेदार की ओर तरफ से काम करते हैं और ये बात है सर।
0: चलो अब आप बताओ कौन सा गाना सुना दें आपको आज?
1: आज सर जी मेरा फोन लगा है सर जी, आज मेरे को

0: गाना सुना दीजिए सर जी, नदिया पार का गाना। गाने का बोल है सर जी, कोनी दिशा में लेके चला रे बटैया। यही गाना सुनेंगे सर जी। और कोटा में फोन किए तो आज मेरा फोन लग गया सर जी, ये पूरे देश हेलो फरमाइश ग्रुप का ये मैं पूरा गाना सुनाने चाहता हूँ सर जी। एक गौतम जी हमारा है, उसको गाना सुनाना चाहता हूँ। एक हमारा उज्जैन का लोकेंद्र वर्मा सर जी है, वो सबको भी सुनाना चाहता हूँ सर जी, और आपको भी पूरा स्वतः को सुनाने चाहते हैं सर जी गाना।
1: अरे वाह वाह, मुझे सुना दिया आपने तो। ये गाना मेरा भी बहुत पसंद का गाना है
0: जी सर जी। जी
1: है ना, वो बैलगाड़ी लेके चलते हैं ना।
0: हाँ जी सर जी, बस वही चीज हमको अच्छा लगता है सर जी।
1: तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम अपने गाँव में पहुँच गए, आज से 40 साल पुराने गाँव में पहुँच गए ऐसा लगता है।
0: हाँ सर जी,
1: है ना। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते।
1: मेरा नाम है जी जगदीश राय गर्ग। सर जी, आज मैं इधर हिमाचल प्रदेश में आया हुआ हूँ जी।
0: अच्छा, उधर आ गए आप।
1: इधर मेरा बेटा है जी, उनका आंखों का हॉस्पिटल है।
0: अच्छा,
1: तो पालमपुर से मैं बोल रहा हूँ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, जहाँ बड़ा खुशगवार मौसम है, जहाँ बेटा और बहू दोनों आई सर्जन है, उनका अच्छा। आंखों का अपना हॉस्पिटल है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो मैं इनके पास भी आ जाता हूँ, कभी पंजाब चला जाता हूँ।
0: वहाँ पर कितने दिन हो गए आपको?
1: मेरे को जहाँ 15-18 दिन हो गए हैं सर, अभी कुछ दिन और रुकूंगा।
0: हाँ हाँ, ये जो जो जो अभी जो लू का मौसम चल रहा है ना, अभी अपने पंजाब राजस्थान उत्तरी भारत में पूरा है ना।
1: हाँ जी, हाँ
0: तो
1: जी,
0: थोड़ा
1: जी।
0: इसको निकलने दीजिए आप है ना।
1: सही बात है सर, उधर तो बहुत गर्मी होती है। तो इससे अभी उधर जन्मे पले बड़े हैं, तो उधर की गर्मी भी हम झेल लेते हैं। उम्र का वो पड़ाव आ गया है जहाँ आनंद लेने का समय भी है।
0: अच्छा, अब बताओ, आप तो बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो आज कौन सा गाना सोच कर बैठे हैं सुनाने के लिए हमें?
1: बिल्कुल सर, आज मेरे दिमाग में आया रफी साहब जी का गाया गीत फिल्म अनजाना का,
0: वाह,
1: तो उसको मैं गुनगुना के बताऊंगा
0: जी।

ओ यारो मेरा नाम अनजाना वे, मैं राही अनजान राहों का। ओ यारो

0: ओ यारो मेरा नाम अनजाना।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है रफी साहब के, बहुत दीवाने हैं आप तो। और
0: बिल्कुल सर, उनको मैं पूजता हूँ।
1: हाँ, तो मैं यही कह रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी सिंगर बनना चाह रहे होंगे, लेकिन परिस्थितियां हमारे जीवन में बहुत कुछ, हम जो चाहते हैं वो बन नहीं पाते,
0: नहीं हो पाती
1: है ना। तो इसीलिए मैंने एक जगह पर मेरे अपने एक दो पंक्तियां हैं मेरी दोहे की, कि जीवन भर हावी रहे पेट और परिवार, जीवन भर हावी रहे पेट और परिवार,
0: परिवार
1: वरना कितने लोग थे शिखरों के हकदार।
0: सही बात, बहुत बहुत गहरी बात बोल दी आपने।
1: तो यही गाना, मंजाना का गाना आप सुनते हैं रफी साहब की आवाज में, है ना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका,
1: बहुत धन्यवाद आपका।

तो भाई श्रोताओं, आप घड़ी देख ही रहे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। लेकिन इतना जरूर बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पर अगले गुरुवार को दिन में 11 बजे से और 12 बजे तक कॉल कर सकते हैं। नंबर है 2941142-2941142। इससे पहले कोटा शहर का एसटीडी कोड मिलाएं 0744। और चलते चलते आपको ये भी याद दिलाते चलें कि भाई जिन श्रोताओं की फोन कॉल्स आज के प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, वे हमें अब अगले 2 महीने बाद ही कॉल करें। इस कार्यक्रम में निर्देशन तेजराम मीणा का। और अब आज के इस प्रोग्राम से अपने रेडियो साथी राम नारायण मीणा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई सेवा के कार्यक्रम।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की महफिल सजेगी, हम साथ साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, मेरी बातों के संग महसूस करेंगे प्यार का एहसास। रेशमी चुनर से ढका तेरा चांद सा चेहरा, न जाने कब से तेरे दीदार की ख्वाहिश लिए बैठा हूँ। काश हवाओं का एक झोंका एक पल को चुनर हटा दे, तो जरा मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए।

अंतराल के बाद छाया गीत का सफर आपके संग सभी का स्वागत है। तुम्हारा साथ गर जरा सा मिल जाता तो तमाम शामें हसीन हो जाती, न कटती रातें तन्हाइयों में, चांद को यूं निहारते हुए बातों ही बातों में गुजर जाता वक्त और रात का मधोश आलम।

जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे

0: हटा दो।
1: एक हसीन मुलाकात के लिए जरा पैगाम भेज दूं, उम्मीद है बहुत तेरे आने की। यूं मेरे खत को किताबों में न रख देना, जरा उसमें लिखे जज्बातों को दिल से महसूस कर लेना। यकीनन लबों पे मुस्कुराहट तैर जाएगी और मुझे भी दिल में जगह मिल जाएगी।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल नादान, बड़ा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी

0: जारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said